जब उसका कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था, तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा ही फरेब है, और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े भारी होते हैं।

0: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: अर्रहमान,
0: वो जो निहायत मेहरबान है।
1: अल्लमल कुरआन,
0: उसी ने कुरान की तालीम फरमाई है।
1: अर्रहमान,
0: वो जो निहायत मेहरबान है।

0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होती हैं। और अनाज जिसके साथ भुस होता है और खुशबूदार फूल।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं,

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

0: सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। आज जुमातुल मुबारक है, ज़िकात की 20 और मई की 8 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और कतर ने खित्ते में देरपा अमन यकीनी बनाने की जारी कोशिशों की सहूलतकारी के लिए अपने भरपूर अज़्म का इरादा किया है। नायब वज़ीर आज़म और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने टेलीफोन पर खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। सदर और वज़ीर आज़म ने इंसानी हमदर्दी के चैलेंजेस से निमटने और कमज़ोर तबकात की मुआवनत के लिए हुकूमत का अज़्म दोहराया है। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तवानाई के शोबे में तज़वीराती शराकतदारी को मज़ीद वसअत देने का ख्वाहां है। ज़राई तरक्याती बैंक और अक़वामे मुत्तहिदा के खुराक व ज़राअत के इदारे ने पाकिस्तान के ज़राई शोबे में पायदार तरक्की के फ़रोग़ के लिए तआवुन के मौक़े तलाश करने पर इत्तेफ़ाक़ किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला मैच आज ढाका में खेला जाएगा। खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी का टेलीफोन मौसूल हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू के दौरान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए जारी कोशिशों को आगे बढ़ाने के अज़्म का इरादा किया गया। कतर के वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। उन्होंने वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि कतर मशरक़ वुस्ता के अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की क़यादत में जारी सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर करीबी राबते और तआवुन बरकरार रखने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर राबता किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की हालिया सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची ने इसहाक़ डार को अपने हालिया दौरे चीन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर होने वाली मुशावरत से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कब्ज़े में लिए गए जहाज़ों से ईरानी शहरियों की वतन वापसी में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया और इस सिलसिले में पाकिस्तान के मुसलसल सिफारती और इंसानी हमदर्दी पर मबनी हिमायत को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंसानी हमदर्दी के चैलेंजेस से निमटने और कमज़ोर तबकात की मुआवनत जारी रखने के हुकूमती अज़्म का इरादा किया है। आज आलमी यौम रेड क्रॉस और हिलाल अहमर के मौके पर अपने अलग अलग पैगाम में उन्होंने पाकिस्तान हिलाल अहमर सोसाइटी के रजाकारों, अमले और शराकतदारों को इंसानियत के लिए उनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये दिन उस अहम किरदार की याद दहानी कराता है जो इंसानी हमदर्दी के कारकुन, सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने, हंगामी हालात में रद्द अमल देने और ज़रूरतमंद अफराद की मदद करने में अदा करते हैं। उन्होंने तमाम मुतालिका फरीकों पर जोर दिया कि वह एक महफूज, सेहतमंद और ज्यादा जामे पाकिस्तान के लिए इंसानियत, यकजहती और अवामी खिदमत के अज़्म की तजदीद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान हिलाल अहमर सोसाइटी की कुदरती आफात में इमदादी सरगर्मियों, खून की फराहमी, सेहत की सहूलियात और कम्युनिटी तक रसाई के शोबों में खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस इदारे की खिदमात को कदर की निगाह से देखती है और मुस्तकबिल में इसके साथ तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तवानाई के शोबे में अपनी तज़वीराती शराकतदारी को मजीद वसअत देने का ख्वाहां है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवानाई के शोबे में तआवुन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। अली परवेज मलिक ने पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में खसूसी तरजीह देने पर सऊदी अरब का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि हुकूमत मुल्क की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए इकदामात कर रही है और इस सिलसिले में सऊदी तआवुन को नहायत अहमियत देती है। सऊदी सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान को तवानाई तहफ़ के चैलेंजेस से निमटने के लिए सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کے وزیر مصدق ملک نے کہا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف حقائق اور شواہد کی بنیاد پر بیانیے کی جنگ میں بھارت کو شکست دی بلکہ مارکہ حق میں بھی اپنی برتری ثابت کی۔ اسلام آباد میں مارکہ حق کے حوالے سے منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعہ ایک پہلے سے تیار کی گئی سازش تھی جس کا مقصد پاکستان کو نشانہ بنانا اور جھوٹے بیانیے کے ذریعے اسے بدنام کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے اندرونی مسائل کا الزام پاکستان پر عائد کرنے کی روش رکھتا ہے اور اسی تناظر میں اس نے سرحد پار بلا اشتعال حملے کیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in.

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
2: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 Radio Pakistan, कौम की आवाज।
3: 101 FM,
4: आप सुन रहे हैं FM 101, अब बल बल्ले चाबो शाबा।

0: Righto.
1: This is FM 101. This is FM 101. This is FM 101.

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: दिस इज FM 101।
2: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: सुनते रहिए FM 101।

से महके मिले दर्द बहुत कभी तू भी मिल दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल आज फिर आई ना तू इंतजार रहा मुस्तकिल तवील है गम की शाम कहानी मोहब्बत की मुख्तसर नजरसानी करो जरा सी।

संभल के यारा तू नजर मिलाना जालिम दुनिया है लोग लेते लूट ना जाना कहीं दूर प्यार दी गल्ला

0: This is FM 101.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ़ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: This is FM 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: दिस इज FM 101।
7: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: दिस इज FM 101।
7: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुनते रहिए FM 101 101।

के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म और उनके कतर के हम मंसब ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। ईरान ने जब्त शुदा बहरी जहाजों से ईरानी शहरियों की वतन वापसी में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान की सिफारती और इंसानी हमदर्दी पर मबनी मुआवनत को सराहा है। जनूब मशरकी एशियाई ममालिक के रहनुमा आज फिलिपाइन में जमा हो रहे हैं ताकि मशरक वुस्ता के बहरान के असरात के हवाले से एक मुश्तरक लाहे अमल पर गौर किया जा सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट का खेल ढाका में जारी है।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: दिस इज FM 101।
6: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने सेहत की सहूलतों की मौसर फराहमी यकीनी बनाने की गर्ज से इंसानी हमदर्दी की तंजीमों के साथ शराकतदारी बढ़ाने के लिए हुकूमत के अज़्म का अयादा किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सिंगापुर के समंदरी हदूद में अमरीकी हुकाम की जानिब से कब्जे में लिए गए बहरी जहाज़ों में सवार पाकिस्तानी और ईरानी मलाहों की वापसी के लिए सिंगापुर हुकूमत से तआवुन की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान ने कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम के लिए जम्मू कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात के पुरमन हल की ज़रूरत है। और सऊदी हुकूमत ने मनासिक हज के दौरान आज़मीन की सहूलत के लिए उर्दू समेत 11 ज़बानों में हेल्पलाइन 1966 कायम की है। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सेहत की सहूलतों की बरवक्त और मौसर फराहमी यकीनी बनाने की गर्ज से इंसानी हमदर्दी की तंजीमों के साथ शराकतदारी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: दिस इज FM 101।
2: मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
6: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: This is FM 101.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
6: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
8: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने सेहत की सहूलतों की मौसर फराहमी यकीनी बनाने की गर्ज़ से इंसानी हमदर्दी की तंजीमों के साथ शराकत दारी बढ़ाने के लिए हुकूमत के अज़्म का अदा किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सिंगापुर के समंदरी हदूद में अमरीकी हुकाम की जानिब से कब्जे में लिए गए बहरी जहाजों में सवार पाकिस्तानी और ईरानी मलाहों की वापसी के लिए सिंगापुर हुकूमत से तआवुन की दरख्वास्त की है। हुकूमत सिंध में किंजर झील पर तैरते हुए शमसी तवानाई के मंसूबे के साथ काबिल तजदीद तवानाई को फरोग देने के लिए एक अहम कदम उठा रही है। और अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब ने कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम के लिए जम्मू कश्मीर समेत तमाम तनाज़ियात के पुरअमन हल की जरूरत है।

0: Islamabad.
1: This is FM 101.
2: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
6: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: सुनते रहिए FM 101 101।

0: था। मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: दिस इज FM 101.1।

0: This is FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: This is FM 101.
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुनते रहिए FM 101.

इस कौम दा इक्को ही नारा, जान दे के भी अपना मुल्क बचावांगे, असी फौलादी दीवार बन के वखावांगे।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: और ईरानी मल्लाहों की वतन वापसी के लिए तआवुन की दरख्वास्त की है। वजीर इत्तलात ने कहा है कि पूरी कौम ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और मालकाए हक के दौरान मुसल्ला अफवाज के साथ मुत्तहिद खड़ी है। हुकूमत ने काबिले तजदीद तवानाई को फरोग देने के लिए किंझर झील पर तैरता हुआ शमसी तवानाई का मंसूबा लगाने का फैसला किया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: सुनते रहिए FM 101.
2: This is FM 101.
4: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया रहमान, रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। और जिस तरह से रेडियो पाकिस्तान की रवायत रही कि वो हर अहम खास दिन पर उसकी अहमियत को जानते हुए उसके हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स करता है, और ये भी मारकाए हक के हवाले से, उस फतह मुबीन के हवाले से ये प्रोग्राम जो तरतीब दिया जा रहा है, उसी हवाले से मैं कहूँगी कि जंजीरे अलम हम तोड़ेंगे, सब टूटे रिश्ते जोड़ेंगे, दिल में जज्बे तामीरी हैं, हम तेगे बुरा शब्बीरी हैं, हम जुल्म और सितम के दुश्मन हैं, पुरअमन जहाँ के जामिन हैं, ख्वाबीदा नहीं बेदार हैं हम, खालिद की जवान ललकार हैं हम। फतेह मुबीन हम सबको मुबारक हो।

0: जब कौम एक हो जाए तो कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। हौसले, बहादुरी और कामयाबी की ये दास्तां मार्काए हक पाकिस्तान की शानदार फतह।
1: पाकिस्तान
2: जिंदाबाद।
3: दिस इज FM 101।
4: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज़ पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: गेट रेडी फॉर नॉन स्टॉप हिट्स, back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: हक की सदा बुलंद हो तो ये वक्त रुक नहीं सकता, सच की ताकत के आगे कोई झुक नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम सामीन रेडियो पाकिस्तान FM 101 चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा और आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके सदर में, जहां ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है मगर दिलों में एक एहसास, एक याद, एक अहद ताज़ा हो रहा है। सामीन, मार्का हक यानी ऑपरेशन बुनियानु महसूस को एक साल मुकम्मल होने को है। वो लम्हा जब पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने दिफा को यकीनी बनाया बल्कि दुनिया को ये बावर कराया कि ये कौम अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सरजमीन और अपने वकार पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करती। ये सिर्फ एक अस्करी कामयाबी नहीं थी बल्कि एक नजरिए की जीत थी, हक, सच और खुददारी की जीत। और आज भी जब दुनिया मुख्तलिफ कशीदगियों से गुजर रही है, पाकिस्तान की पहचान आज भी यही है, हम का दाई मगर दिफा में नाकाबिले तस्खीर। सामीन, लाहौर के इलाके सदर में मैं मौजूद हूं और इस वक्त यहां पर ट्रैफिक का शोर, फैमिलीज की मौजूदगी, बच्चों की हंसी एक भरपूर जिंदगी का मंजर पेश कर रहे हैं। यही वो मामूल की जिंदगी है जो एक महफूज और पुरअमन मुआशरे की अकासी करती है। मार्का हक ऑपरेशन बुनियादुल महसूस को तकरीबन एक साल मुकम्मल होने को है, इस हवाले से हम आज आवाम में मौजूद हैं, उनसे उनकी राय, उनके जज्बात, उनके ख्यालात जान रहे हैं और उनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
2: वालेकुम सलाम।
1: सर आपका नाम क्या है?
2: अदनान।
1: अदनान सर क्या कहते हैं आप?
2: मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ।
1: सो क्या कहना चाहेंगे?
2: सबसे पहले तो पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कि जो पाकिस्तान ने हमेशा मोहब्बत का, प्यार का, खलूस का और भाईचारे का दर्स दिया है और इसी तरह अगर कोई दुश्मन को भी ये आंखों में आंखें डाल के ये पैगाम दिया है कि अगर कोई हमारी तरफ बुरी आंख से देखेगा तो इंशाल्लाह ताला हम उनकी आंखें भी नोच लेंगे और उनको जिंदा गाड़ भी देंगे। पाकिस्तान ने ये भी बताया मार्का हक के अंदर के जो कोई दुश्मन होगा हमारी तरफ देखेगा इंशाल्लाह ताला वो निस्तो नबूद कर दिया जाएगा। सेकेंड चीज़ जो है ना कि पाकिस्तान अभी जो रिसेंटली सूरत हाल चल रही है ईरान अमरीका कशीदगी के हवाले से, उसमें पाकिस्तान ने अपने वाजिया मौक़ दिया है कि हम अमन का पैगाम पहुँचाने के लिए आपके साथ, अमेरिका के साथ और ईरान के साथ, दोनों के साथ हम एक सुलह करवाने के लिए अमन की कोशिश करते हैं ताकि पूरी दुनिया को ये मैसेज आए कि पाकिस्तान एक अमन का पैगाम देने के लिए आया है और इंशाअल्लाह ताला तमाम ममालिक को लेके इसमें लेके चलेगा।
1: अस्सलाम वालेकुम सर।
3: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात।
1: सर आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम जी हाजी मोहम्मद अहमद मिनहास। मैं मुस्तफा भाई क्या कहना है, बात ये है कि जो हमने ऑपरेशन बुनियादुल महसूस जो लॉन्च किया था ना वो हमने इंडिया की जो दरअंदाजी थी पाकिस्तान में उसके ऑपरेशन सिंदूर उसने उसका नाम रखा था, उसके जवाब में हमने ऑपरेशन बुनियादुल महसूस जो लॉन्च किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बड़ी इज्जतों से नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्राउड है अपनी आर्मी पे कि उन्होंने उनके सात राफेल जो है ना जिस पे उनको बड़ा मान था वो हमने गिराए अल्हम्दुलिल्लाह और हमारा ये कामयाब ऑपरेशन जो है ना आज तक जो एक साल हो गया है वो इंडिया जो है इंशाल्लाह एक साल क्या वो पूरी उम्र इस जख्म को चाटता भी रहेगा ना, वो जख्म जो ना ख़त्म नहीं हो गए जो हमने उनको जख्म दिए हैं।
1: आजकल खिते की जो कशीदा सूरत हाल है, ईरान और अमेरिका के तनाज़ियात के हवाले से पाकिस्तान सालसी का किरदार जो है वो अदा कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे?
3: अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिवली ये हमारा किरदार है और इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं कि इंडिया को जो मिर्चें लगी हुई हैं इसके ऊपर भी कि पाकिस्तान को अल्लाह ने इससे दी और ये हम अपनी आर्मी पर, अपनी हुकूमत पर जितना भी प्राउड करें वो काम है कि अल्हम्दुलिल्लाह खिते के ऊपर हमने जिस तरह अपना कंट्रोल रखा और जो जंग ने बंद करवाई, ये इसमें मैं ये समझता हूँ कि 110% नहीं 110% पाकिस्तान के आवाम का, पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का पूरा किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, वो चाहता है कि खित्ते में अमन सलामती रहे और इसमें पाकिस्तान का भरपूर किरदार है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत से नवाजा इस किरदार के हवाले से।
1: بالکل جناب، محبت امن ہے اور امن کا ہے نام پاکستان۔ آج کی نوجوان نسل کو کوئی پیغام دے دیں۔
3: میں آج کی نوجوان نسل کو یہ پیغام دوں گا کہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر رہیں۔
4: جی ہاں،
3: کسی بھی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پاکستان کے انگیز نہ کریں، پاکستان کے نیگیٹیولی جو نا وہ نہ کریں، پاکستان کے حق میں جو بات ہو سکتی ہے وہ کریں آپ۔
1: جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا آپ دونوں بھائی مل کے میرے ساتھ نعرہ لگا دیں، پاکستان
3: ہمیشہ زندہ باد۔
1: زندہ باد۔ جی سامعین، تاریخ گواہ ہے کہ قومیں صرف طاقت سے نہیں بلکہ اصولوں اور نظریات سے زندہ رہتی ہیں۔ مارکہ حق اسی نظریے کی ایک جھلک تھا، جہاں پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ وہ نہ صرف اپنی سرحدوں کا محافظ ہے بلکہ امن کا علم بردار بھی ہے۔ آج جب خطے میں کشیدگی ہو یا عالمی سطح پر تنازعات جنم لے لیں، پاکستان ہمیشہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر مذاکرات، توازن اور قیام امن کی بات کرتا ہے۔ طاقت اور تحمل کا حسین امتزاج، یہی پاکستان کی اصل پہچان ہے۔ تو سامعین، لاہور کے علاقہ صدر سے آج کی ہماری آواز بھی یہی ہے کہ پاکستان ایک نظریہ ہے، ایک عزم ہے اور ایک ذمہ داری بھی۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر اپنی خود مختاری اور وقار پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد مصطفیٰ اور اس پروگرام کی پروڈیوسر ہے خدیجہ مراد۔ کل پھر ایک نئے مقام، ایک نئے جذبے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے پاکستان پائندہ باد۔

0: This is FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुनते रहिए FM 101।
7: मार्का हक सिर्फ जंग नहीं, एक पैगाम था, एक ऐलान था, दिफा का, कौम के वक्कार का, पाकिस्तान का। हम तैयार हैं, हर दम तैयार
8: हैं, हम तैयार हैं।
6: सुनते रहिए FM 101।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर उस्मा आशिक खान, आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल और बहुत ही अहमियत का हामिल हमारी कौम के लिए, हमारी यूथ के लिए और यंग जनरेशन के लिए। मैं आपको ज़ाती तौर पर बताऊँ कि ये एक बड़ा ही मुख्तलिफ एक्सपीरियंस और तजर्बा रहा कि जैसे ही हमने ये वाक़या लास्ट ईयर हुआ तो मुझे लगा जैसे कौम एक यकजान हो गई है, एक जगह इकट्ठी हो गई है, जो बिखरे बिखरे कई दफ़ा हम महसूस करते हैं कि हम एक मुख्तलिफ महाज पे हैं, वो सब एक महाज पे इकट्ठे होते हुए मुझे नजर आए। और यूथ का जब जहाँ तक ताल्लुक है उसमें जो जोश, उसमें जो वतन की मोहब्बत और उसमें जो एक यूनिटी थी वो एक वाजिया तौर पर नजर आई। और पाक फौज के लिए मोहब्बत, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत, वो बहुत एक नुमाया तौर पे मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें ज़रूरत भी है जिसकी, एक जगह पे इकट्ठे होने की कौम को। और हमारी जो यूथ है उसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत पॉजिटिविटी है। मैं ज़ाती तौर पे एक उस्ताद होने के नाते मैं देखती हूँ कि उसमें बहुत पोटेंशियल है, उसमें बहुत पॉजिटिविटी है, उसको राइट डायरेक्शन पे चैनलाइज करने की ज़रूरत है। और इस तरह के वाक़यात कौम के लिए एक इम्तिहान था, कौम के लिए एक आजमाइश थी जिस पे हमारी पाक फौज ने आगे बढ़ चढ़ के हमारे मुल्क की हिफाजत में जो है वो कसर नहीं छोड़ी। और हमारे जो सिपाही थे, हमारे फौजी जो थे, उन्होंने जो है एक बहादुरी का मुजाहरा किया। तो हमारी कौम, हमारी यूथ, हमारे यंग जनरेशन हमारी पाक फौज के साथ, हमारे मुल्क के साथ उन्होंने जाहिर किया कि उनमें कितनी एक ताकत है और वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ किस तरह से आगे बढ़ के अपने कौम के साथ जुड़ सकते हैं और इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो देखने को मिली।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान कब्जे में लिए गए जहाजों से 11 पाकिस्तानी अमले की जल्द वापसी के लिए अमरीका से राबते में है। वजीर इत्तलात ने कहा है कि मार्के हक के दौरान भारतीय ज़राए अबलाग के बेबुनियाद दावों की नफी करने पर पाकिस्तानी ज़राए अबलाग ने आलमी सतह पर पजीराई हासिल की है। सऊदी अरब ने आजमीन हज की सहूलत के लिए उर्दू समेत 11 जुबानों में एक हेल्पलाइन 1966 कायम की है। और ढाका में पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 301 रन बनाए।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.

पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। मुझे आरजे अली रजा कहते हैं। मेरी आपकी मुलाकात रहती है हर जुमे की शाम 5 से 7 बजे। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। वेल, आज 8 मई 2026 है और आज का प्रोग्राम इस हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है कि आज हम मार्क हक ऑपरेशन अल बनियानुल मरसूस के हवाले से खसूसी तौर पर बात कर रहे हैं। इस ऑपरेशन को मुकम्मल हुए 1 साल होने को है, 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब सफाक दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान की तरफ हमला किया और पाकिस्तानी सरजमीन पर ड्रोन बरसाए और समझा कि पाकिस्तान की अफवाज और आवाम को दबाव में ले आएगा, उस वक्त अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई करते हुए दुश्मन भारत के नापाक अजाइम को मिट्टी में मिला दिया और अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की क्यादत में ऑपरेशन अल बुनियानुल मरसूस का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान एयरफोर्स के बहादुर जवानों ने JF-17 थंडर और J-10C तैयारों पर उड़ान भरी और भारतीय एयरबेसिस पर कामयाब जवाबी कार्रवाई की, जिनमें पठानकोट, आदमपुर और उधमपुर के एरियाज शामिल हैं। आइए हम अपने पाक फौज के जवानों को, हम अपनी फौजी और अस्करी क्यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं और एक खूबसूरत सा मिली नगमा, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: I love FM 101.

पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम जब भी ब्रेक के बाद वापिस आएंगे तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएंगे। सामीन, आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, 101L लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम, अपना पैगाम लिखिएगा और भेज दीजिएगा 4471 पर। facebook.com/fm101 लाहौर का पेज हाजिर खिदमत है। आ जाइए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। 04-2111-0101 हमसे रابطے का नंबर है। रابطہ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्रोग्राम में लाइव कॉल्स को 6 बजे के बाद शामिल किया जाएगा।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: मैं समझता हूँ कि ये जो इवेंट है हमारी कौम को जगाया गया है और इसमें पूरी कौम का और अफवाज पाकिस्तान का जो रोल है इतना रिमार्केबल है कि इसको सिर्फ हमारी कौम ने नहीं सराहा, पूरी दुनिया ने सराहा। मैं पिछले दिनों सोमालिया गया और बल्कि इधर भी कई एम्बेसडर भी हमारे पास आए हैं, उन्होंने कहा कि चार घंटों में जो आपने वॉर की फेट चेंज की है और सारी दुनिया को ये पता चल गया है कि पाकिस्तानी फौज जो है वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी कंट्री के लिए लॉयल है और वो हर मुश्किल वक्त में वॉर की फेट चेंज की है और सारी दुनिया को ये पता चल गया है कि पाकिस्तानी फौज जो है वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी कंट्री

0: चार घंटों में इंडिया का हमने क्या हिस्सा महसूस किया।
1: यूथ का जो बता रहा था, जिस तरह सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को जवाब दिया, ऐसे जवाब दिया बल्कि शिकस्त से दो चार किया, इसे सबसे देखिए।
0: देखिए जी, सोशल मीडिया आजकल चल ही रहा है यूथ से, और उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। हमारा यूथ जो है वो इतना उसमें टैलेंट है, और वो हर चीज़ को एनालाइज भी करते हैं, डायग्नोज भी करते हैं, और उसका रिबटल भी देते हैं। तो उन्होंने इतनी अच्छी रिस्पांस दी, यानी जो उनके मीडिया से चीज़ें आ रही थी उनको निगेट भी किया और बल्कि प्रीडोमिनेट हुए। तो इसलिए मैं समझता हूँ उनका ये हक बनता था, उनकी ऑब्लिगेशन थी कि वो हमारे फौज के जो मार्का हक था उसको सपोर्ट करते और उसको अक्लेम करते, और उन्होंने किया।

जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाक फौज, पाइंदाबाद। सामीन एक दफा फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप सुने एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ये आवाज है आरजे अली रजा की। आज हम खसूसी सेगमेंट है हमारे पास मार्क हक के हवाले से, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो सामीन, इस कार्रवाई ने वाजह कर दिया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा, और इस पूरे मरहले में सबसे नुमाया पहलू कौमी इत्तेहाद था। लसानी, इलाकाई और सकाफती तकसीम से बालातर होकर पूरी कौम एक आवाज़ बनी और ये पैगाम दिया कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान एक मजबूत और मुत्तहिद रियास

0: और जैसे कि मैं बात कर रहा था एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर की जो नशरियात थी, बल्कि हमारे पूरे रेडियो पाकिस्तान की जो नशरियात थी वो 48 घंटे तक जारी रही और पाक फौज के जवानों का हौसला खूब बुलंद किया। मिली नगमे यहाँ से गाए भी गए और मिली नगमे सुनाए भी गए। पाक फौज के जवानों का जोश और वलवला बढ़ाया गया। हमारे पास एक सॉन्ग है जो हम स्पेशली डेडिकेट करना चाह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के बहादुर निडर खूबसूरत जवानों के लिए। राहत फतेह अली खान की आवाज है।
1: Gentlemen, at 600 hours tomorrow, a joint operation will be conducted by Pakistan Air Force and Pakistan Army. A package comprising of F-16s, Mirages and JF-17 will strike the high-value target and foreign terrorist. A team of Pakistan Army's Special Services Group will be paradropped to laze the target. Area eyes and falcos will be our eyes in the skies. Everyone must ensure that there should be no

0: no collateral damage. Keeping the traditions of zero failure, we'll achieve the objective, inshallah.
1: Inshallah.
0: And good luck.
1: ये वो मैसेज था जो शाहीनों को दिया गया, जो बहादुर जवानों को दिया गया। ये गाना पाकिस्तान एयरफोर्स के नाम, पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों के नाम।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया रहमान, रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। और जिस तरह से रेडियो पाकिस्तान की रवायत रही कि वो हर अहम खास दिन पर उसकी अहमियत को जानते हुए उसके हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स करता है, और ये भी मार्का हक के हवाले से, उस फतेह मुबीन के हवाले से ये प्रोग्राम जो तरतीब दिया जा रहा है, उसी हवाले से मैं कहूँगी कि जंजीर अलम हम तोड़ेंगे, सब टूटे रिश्ते जोड़ेंगे, दिल में जज्बे तामीरी हैं, हम तेगे बुरा शब्बीरी हैं, हम जुल्म और सितम के दुश्मन हैं, पुर अमन जहां के जामिन हैं, ख्वाबीदा नहीं बेदार हैं हम, खालिद की जवां ललकार हैं हम। फतेह मुबीन हम सबको मुबारक हो।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: I love FM 100.

All right, जी सामीन, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ये आवाज़ है आरजे अली रज़ा की। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फन ऑन 101 हर जुमे की शाम 5 से 7। प्रोग्राम में आप शामिल हो रहे हैं facebook.com/FM101 लाहौर, 04211100101, और अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, 101 लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम, अपना पैगाम लिखिएगा, भेज दीजिएगा 4447।

इससे पहले आप हमारा हसूसी सेगमेंट सुन रहे थे मार के हक के हवाले से, जिसमें हमने अपने पाक फौज के जवानों को हराज तहसीन पेश किया, सल्यूट पेश किया। ज़िंदगी में हम बहुत सारे फ़ैसले करते हैं और ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले ऐसे भी करते हैं जो उस वक्त तो हमें बहुत आम से लग रहे होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो फ़ैसले हमारी ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। कभी एक शहर बदलने का फ़ैसला, कभी किसी रिश्ते को कबूल करने का फ़ैसला, कभी किसी रिश्ते को छोड़ने का फ़ैसला, कभी अपने कैरियर को चेंज करने का फ़ैसला, कभी कोई बिज़नेस करने का फ़ैसला, और कभी भी कुछ नया करने का फैसला। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे फैसलों के हवाले से, वो फैसला जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। आप बताएंगे मुझे वो कौन सा आपकी जिंदगी का फैसला था जो आपने टाइम पे फैसला लिया और आपकी जिंदगी का रुख बदल गया। ज़िंदगी में हम कोई भी फ़ैसला करते हैं ना, वो हमारे लिए एक नई राह खोल देता है। कुछ फ़ैसले हमें कामयाबी देते हैं, कुछ फ़ैसले हमें सबक देते हैं। बहुत सारी दोस्तियां हम करते हैं अपनी ज़िंदगी में और हम अक्सर कहते हुए सुनते हैं कि यार इसके साथ दोस्ती तो कर लिया है लेकिन लग पता गया है, इसकी दोस्ती ने एक सबक दे दिया है कि आइंदा किसी पर मैंने जल्दी यकीन नहीं करना।

0: अच्छा, कभी कभी हम बहुत सोच के फैसले करते हैं, यार मुझे सोचने दो, मुझे सोच विचार करने दो, मुझे मशवरा लेने दो, मुझे मशवरा करने दो, लेकिन कभी कभी हम अचानक से फैसला कर देते हैं, कुछ नहीं सोचते, बस एब्रप्टली हम फैसला कर देते हैं कि यार बस मैंने ये कह दिया तो कह दिया। और अक्सर ऐसे होता है हमारा जो ऐसा फैसला होता है ना जो हम अचानक से कर देते हैं, वो बहुत अच्छा बहुत बेहतर साबित होता है। सो इस हवाले से हम बात करेंगे कि वो फैसला जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। आप हमें मैसेज कर सकते हैं 4471 पे, facebook.com/FM101 लाहौर के पेज पे हमें मैसेजेस आ भी रहे हैं और हम कुछ मैसेजेस को शामिल भी करते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाते हैं। हमदुल्ला मलाखेल सुन रहे हैं जी। हमदुल्ला मलाखेल कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमदुल्ला मलाखेल फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। हमदुल्ला मलाखेल कहते हैं जी, खुदा के फैसले आवाज़ नहीं करते मगर जब असर दिखाते हैं तो बड़े बड़ों के गुरूर ज़मीन चूम लेते हैं। अच्छा जी, वाह, सही बात की वैसे आपने। मलक वसीम अवान सुन रहे हैं जी। मलक वसीम अवान क्या कहते हैं, कहते हैं जी माशाल्लाह बहुत उम्दा प्रोग्राम। मलक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी की तरफ से आपको और आपकी टीम को और आपके सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये थैंक यू सो मच जी मलक वसीम, बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। मलिक मोहम्मद आदिल सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग आरजे अली एंड FM101 टीम, थैंक यू सो मच। नज़ीर खोसो हैं जी सोहबतपुर बलोचिस्तान से, थैंक यू सो मच। स्नैन सुन रहे हैं लाहौर से, थैंक यू सो मच। मज़र सुन रहे हैं लाहौर से, अली भाई मैं आपको सुन रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच मज़र। शाजिया हमें सुन रही हैं लाहौर से, थैंक यू सो मच शाजिया। शानजे नूर सुन रही हैं, पोस्ट को लाइक किया, थैंक यू सो मच शानजे। आइए जी गाना सुनते हैं और इस गाने को एंजॉय करते हैं। अब्दुल्ला सिद्दीकी की आवाज़ है, मुझे अब्दुल्ला सिद्दीकी की आवाज़ बहुत पसंद है, ना जाने क्यों, और साथ उनका दे रहे हैं आतिफ असलम। आतिफ असलम की तो क्या ही बात, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। 101 के साथ साथ रहिएगा, मुझे आज अली रजा कहते हैं, बड़े प्यार और बड़े मान से कहते हैं।
1: Back, I, blue, smile, hyper, tactile, you could say a single word.

ओके जी सामीन, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ये आवाज़ है आज अली की और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप फन ऑन 101। आपसे सवाल पूछा है कि वो फैसला जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी, वो कौन सा फैसला था जिसने आपकी ज़िंदगी बदल के रख दी।

हमें मैसेजेस आ रहे हैं 4471 पे भी मैसेजेस आ रहे हैं और facebook.com/FM101 लाहौर के पेज पे मैसेजेस आ रहे हैं। पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं किस किस ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तमाम खूबसूरत समातों का, तमाम सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया। आप 101 सुन रहे हैं, मेरे साथ साथ मौजूद हैं। हमें मैसेज भेजा है जी कमल नाज ने, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से सुन रही हैं। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा अंदाज़ है आपका, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। शमसी रेडियो लिसनर क्लब वालों की तरफ से तमाम लिसनर्स को और FM 101 की टीम को सलाम भेजा है जी, और सबको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ भेजी है कमल नाज ने। कमल नाज, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमें फातिमा सुन रही हैं लाहौर से, भाई मैं आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ और मार्क हक के हवाले से सेगमेंट बहुत मज़े का था। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ताहिर सुन रहे हैं, अली भाई मैं भी आपके साथ हूँ, मेरी हाजिरी लगा लें। लगा ली ताहिर। नज़ीर खुसू सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शहजाद रूफ सागर सुन रहे हैं ठोकर नियाज बेग लाहौर से, कहते हैं अली भाई नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। एम रजा चौधरी आ चुके हैं, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आयानू कह रहे हैं जी, जी आयानू जी, आपको भी जी आयानू। हमें साइमा सुन रही हैं गुजरांवाला से, भाई मैं आज आपको सुन रही हूँ, प्रोग्राम अच्छा है, थैंक यू सो मच। गुजरांवाला का मौसम कैसा है? वेल, लाहौर में तो गर्मी है लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं है कि सिग्नल पे अगर रुकना पड़े, अगर आप बाइक पे हों और सिग्नल पे रुकना पड़े तो आपको बहुत सारी गर्मी लग रही हो, आपका दिल चाह रहा हो जल्दी से सिग्नल खुल जाए और मैं भागूं। वेल, सिग्नल से याद आया, ट्रैफिक के जितने कवानीन हैं उनकी आपने पासदारी करनी है और सिग्नल पे लाजमी रुकना है। हेलमेट के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना अगर आप बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें।

0: Alright listeners, welcome back once again. आप सुने FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर की आवाज़ है, आरजे अली रजा की। आप सुने प्रोग्राम फन ऑन 101। हम कर रहे हैं बहुत सारा फन। आप क्या कर रहे हैं? आप ड्राइव कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, छुट्टी हो गई है, क्या सीन है? वल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और ये साथ रहने वाला है ठीक 7 बजे तक। 7 बजे तक बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारी बातें करने को रह गई हैं। और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करना है 04-2111-0101 हमारे पास ये रابطے का नंबर है। आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। वेल, बात हम ये कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं पता है आपको हम क्या बात कर रहे हैं? पता है हम ये बात कर रहे हैं कि वो फैसला जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी है, जिसने आपकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। और ऐसे फैसले हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल के रख देते हैं। और बहुत सारे फैसले बहुत मुश्किल होते हैं और उन फैसलों को लेना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। यानी कि जब हम किसी रिश्ते को छोड़ रहे होते हैं, किसी भी ऐसी वजह से किसी दोस्त से दूर जा रहे होते हैं, तो वो एक बड़ा तकलीफ दे लम्हा होता है। या हम कोई शहर छोड़ रहे होते हैं। वेल, मैं लाहौर के बगैर नहीं रह सकता और लाहौर मेरे बगैर नहीं रह सकता ऐसा मेरा मानना है। वेल, जब मैं लाहौर से बाहर जाता हूँ तो मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है यार। मेरा दिल करता है लाहौर के पास वापस आ जाऊँ, लाहौर के बगैर दिल नहीं लगता। लाहौर के साथ दिल लगी है, लाहौर के साथ मोहब्बत है, मैं अपना शहर नहीं छोड़ सकता। वेल, अक्सर मैं जब इस्लामाबाद जाता हूँ, 2-4-5 दिन रहता हूँ ना उधर, तो बिल्कुल ऐसे दिल करता है कि लाहौर उड़ के वापस चला जाऊँ। और ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी बहुत हाली हाली सी है। और सबसे अहम जो चीज़ है वो है जी लाहौर के खाबे। कहीं भी जाएं, किसी भी रास्ते में जाएं, किसी भी गली में जाएं, बस दिल करता है यार ऐ चख लीए, ऐ खा लीए, ऐ कर लीए, वो कर लीए। यानी कि जो भूख है ना वो लग जाती है और फिर लग पता जाता है। ज़हर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप किसी और के बगैर नहीं रह सकते ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। राइट अवे जी, इस वाले से हम बातें करते रहेंगे और बातों का सिलसिला जारी सारी रखेंगे। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 04-2111-0101 पे। और हम पहली कॉल क्यों ना ले ही लें। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: कौन है जी?
1: वापडा कॉलोनी गुड्डू से मोहम्मद हनीफ शाह।
0: मुझे लगा शायद वापडा कॉलोनी ने कॉल कर दी है
1: होता है, चलता है, दुनिया है।
0: दुनिया है। क्या हाल है? ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप सुनाएं।
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वो कौन सा फैसला था जिसने आपकी जिंदगी बदल के रख दी और आप बदल ही गए?
1: बस फैसले तो काफी थे, और नहीं कर सकता मतलब कैसा फैसला था?
0: मतलब कॉल काट दूं आपकी?
1: नहीं, कॉल नहीं काट देना।
0: अच्छा ठीक है,
1: चल। ऐसा फैसला था कि मैं अपनी दुकान हमने बंद की थी ना,
0: ठीक है,
1: तो मैं वहाँ पे लोहा उतारने गया था। अचानक मुझे पता था कि इसकी छत बिल्कुल क्रैक है, लेकिन फिर भी मैं चला गया।
0: अच्छा,
1: तो अंदर जाकर गिरा।
0: ओहो, तो ये फैसला जो है, इसने आपकी इस फैसले ने आपकी जिंदगी कैसे बदल के रख दी? आप आसमान से जमीन पे आ गए? अच्छा। फिर आपने आवाजें कैसे लगाई थी? कोई एक आधी आवाज लगा के दिखाई ना हमें, कैसे कहा था? बचाओ।
1: नहीं, ऐसे नहीं, एक दोस्त गुजर रहा था, फिर दरवाजा खटकाया।
0: अच्छा,
1: उसने कहा अंदर क्या हो, जिन आ गए हैं क्या?
0: फिर वो आपको बचाने आया और वो भी आगे फंस गया?
1: नहीं, फिर दोनों निकल गए थे।
0: अच्छा, चले, शुक्र है आप निकल गए थे, वरना आप निकलते ना तो हमें कॉल कैसे करते आप?
1: यही बात है।
0: चले ठीक है, चले। मैं उम्मीद करता हूँ ये आखिरी मर्तबा नहीं होगा
1: इंशाल्लाह। बाकी साजदा और तमाम सुनने वालों को सलाम।
0: थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। जीते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने खर्चे पे। अल्लाह हाफिज। 04211100101 हमसे रابطے का नंबर है, कॉल मिला रहे हैं तो हम भी उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, क्या हाल है अली भाई?
0: मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है?
2: मैं भी ठीक ठाक।
0: तो नाम तो बताओ अपना।
2: जीवन जबर प्यार से कहते हैं साजिदा जी।
0: अच्छा, बहुत प्यार से साजिदा कहते हैं, ठीक है। साजिदा मुझे ये बताएं, वो कौन सा फैसला था जिसने आपकी जिंदगी बदल के रख दी?
2: फैसले तो बहुत ज्यादा, लेकिन अगर फैसले में हमारे कोई ऐसे प्यारा रिश्ता जो जुदा होता है या हम छोड़ते हैं ना, उससे ज्यादा तकलीफ होती है।
0: अच्छा।
2: अगर हमें उसकी एक बुराई कोई होती है जिस वजह से हम छोड़े होते हैं, तो उसकी अच्छाइयाँ भी याद आती है फिर।
0: अपनी नहीं तो याद आती बुराइयाँ?
2: वो तो फिर उसे पता हो ना।
0: सही सही, ठीक है।
2: फिर वो याद इतनी आती, यादें उस जन की हम ना छोड़ भी नहीं सकते तो रख भी नहीं सकते, मजबूर होते हैं।
0: अच्छा,
2: तो
0: साजिदा, अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसे होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो कोई भी फैसला खुद से नहीं कर पा रहे होते, और हर फैसला वो किसी से पूछ रहे होते हैं, किसी से वो डिक्टेशन ले रहे होते हैं, यार मैनू है दस ए होया तो ए की करा। आप तो नहीं ऐसे करती, खुद से फैसले कर लेती
2: हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं ना ज्यादातर खुद करती हूं फैसला।
0: खुद करती हैं, चलें ये तो अच्छी बात है,
2: क्योंकि अगर मैं किसी से करवाती हूँ ना, किसी का मशवरा भी ले लेती हूँ, लेकिन मुझे जो वो लगता है बेहतर, जो मैं अच्छा, मेरे लिए बेहतर है, तो मैं वो करती हूँ।
0: वाह वाह वाह, क्या क्या बात है, आप जीत गई हैं एक मोटर बाइक। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
2: और है ना, मैंने थोड़े से सलाम देने और एक गाना भी लगा दे।
0: गाना लगा देते हैं, गाने ही लगा रहे हैं हम
2: जी। वो गाना भी लगाना है?
0: कौन सा, कवालियां लगा रहे हैं?
2: नहीं वो तो ठीक है, मैंने थोड़े से सलाम भी कहने हैं। चीको को सलाम लिखो, रिमशा का सुन रही है, शुजादरी लाडला, एहसन खान और शमीम आपी, अनिला जी को,
0: ठीक
2: है, वो अपनी श्रीनगर वाले है ना, तारिक भाई, उनको भी सलाम।
0: चले चले, पहुंच गए।
2: रिजवाना को भी,
0: रिजवाना को भी कह देते हैं जी। रिजवाना कौन से दूर बैठी है?
2: परी को भी,
0: फरी को भी कह देते हैं, और को परी को भी कह दो, कोई परियों की रानी को भी कह दो, कोई राजे को भी कह दो, कोई राजकुमार को भी कह दो, कोई रहता
2: जी जानता कि मेरी और आपकी आवाज आ रही। सबको
0: सबको सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये थी हमारे साथ साजिदा, और थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। 04211100101 हमसे रابطے का नंबर है, और हम कॉल्स ले रहे हैं आपकी, आपसे बातें कर रहे हैं, और हमें मैसेज किसने भेजा है? मैसेज आया है मैसेज आया है, हमें मैसेज भेजा है शाबान ने। भाई मैं आपको सुन रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। एम रजा चौधरी हैं, बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारे मैसेजेस के साथ, हम भी लाहौर के बगैर नहीं रह सकते, कहनी कवल नाज। और मुझे खुशी है शमसी लिसनर ग्रुप को ज्वाइन करने पर, मुबारका जी मुबारका। कमल नाज कहती हैं, आरजे साहब जिंदगी में बहुत अच्छे फैसले किए हैं जो अच्छे साबित हुए हैं, जिनमें एक फैसला ये भी है कि मैंने शमसी लिसनर ग्रुप को ज्वाइन किया। सब लोग अच्छे इंसान हैं। मुझे लगा आप कहेंगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा फैसला किया है कि मैंने आरजे अली को सुनना शुरू कर दिया है। ये क्या आपने कह दिया? चलें ठीक है ठीक है ठीक है, खुश रहें खुश रहें। एम रजा चौधरी हैं, थैंक यू सो मच कॉल मैसेज करने के लिए, और कॉल देखते हैं किसकी आ रही है। अस्सलामुअलैकुम।
3: वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं आपका क्या हाल है?
3: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआ से। इतने दिनों बाद मैंने आपकी आवाज़ सुनी है, या तो आप छुट्टियों पे थे या तो फिर शायद मैं नहीं सुन पाई।
0: नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल छुट्टी पे नहीं था, मैं तो रेगुलर रोज आ रहा हूँ।
3: नहीं जुम्मे जुम्मे वाले दिन आपका शो,
0: मैं डेली करता हूँ शो अब तो।
3: पक्की बात है? मैं डेली आता हूँ
0: बिल्कुल। अच्छा अपना नाम बताएं लिसनर्स को।
3: जी मैं लाहौर से रिमशा बात कर रही
0: हूँ। लाहौर से रिमशा बात कर रही हैं। रिमशा, वो फैसला जिसने आपकी जिंदगी बदल के रख दी।
3: भाई फैसले तो इंसान लेने पड़ते हैं जब इंसान के ऊपर कोई वक्त आता है। मेरे बाबा की डेथ के बाद मैंने फैसला ये लिया कि मैंने अपनी ख्वाहिशें, जिद्दें, میں ضد بہت زیادہ کرتی تھی, میں نے ضد کم کر دی, خواہشیں میں بہت زیادہ میری ہوتی تھی وہ بھی میں نے بالکل کم کر دی.
0: اچھا.
3: اور میں اپنی جو باتیں تھیں جو انسان آج کل کے دور میں انسان دیکھتا ہے کہ اگر کسی سے بات شیئر کرتا ہے تو وہ بات پھیلتی پھیلتی اتنی بڑی اس بات کا پنگل بنا کے رکھ دیتے ہیں لوگ. تو اپنی بات کو میں باتوں کو بھی شیئر اب کسی سے نہیں کرتی.
0: اچھا.
3: اپنی باتوں کو جو ہے دل میں دبا کے رکھتی ہوں.
0: اچھا.
3: اتنی مضبوط بن گئی ہوں کہ کسی کے سامنے روتی نہیں ہوں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر رونا بھی آئے تو اپنے آنسو کو ایسے چھپا لیتی ہوں کہ کسی کو ظاہر نہیں ہوتا.
0: اچھا, آنسو کہاں پہ چھپاتی ہیں؟ مجھے بھی وہ جگہ بتائیں نا, میں بھی اپنے آنسو وہاں چھپا لیتی ہوں.
3: لیکن بھائی میں نا ایسی مضبوط بن چکی ہوں کہ اگر مجھے آنکھوں میں پانی بھی آ جائے نا تو میں کسی کے سامنے نہیں روتی, چھپ کے روتی ہوں.
0: چھپ کے رو لیتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا,
3: کیونکہ اگر ہم کسی کے سامنے رو بھی لیتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں وہ جب تک پوچھ نہ لے پوری پوری تفصیل اس کو تو سکون ہی نہیں ملتا.
0: یہ بھی بات ہے. اچھا, آپ کا بھائی اب تو نہیں آپ کو تنگ کرتا؟
3: بھائی آپ نہ پوچھیں, اس کا
0: زیادہ تنگ کرتا ہے,
3: بہت ہی زیادہ تنگ کرتا ہے.
0: اچھا, تو کوئی ایک فیصلہ لیں نا اس کے لیے بھی, کوئی ایک فیصلہ لیں تاکہ وہ آپ کو تنگ نہ کرے.
3: اس کے لیے فیصلہ کیا لینے, اب اس کے لیے پہلے کتنے فیصلے لیے تھے, اس نے انکار کیا, اب وہ خود کہتا ہے کہ میری کرواؤ تو اب اس کا کوئی پوچھتا نہیں ہے.
0: اچھا, چلیں چلیں, ہم بھی ہم تو پھر اس کے لیے دعائیں ہی کر سکتے ہیں.
3: ہاں, دعائیں کریں کہ وہ
0: سدھر جائے اور انسان بن جائے, مگر انسان نہیں نا بنتا. بن جائے گا, بن جائے گا. نہیں, بہت ساری دعائیں رمشا کے بھائی کے لیے, رمشا کے لیے بھی کہ رمشا روئے نہ زیادہ.
3: مگر اگر ایک بات میں یہی بولوں گی کہ جس طرح کا میرا بھائی ہے نا, اللہ کسی کا ایسا بھائی نہ دے بس.
0: ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے. چلیں, تھینک یو سو مچ آپ کا کال کرنے کے لیے.
3: اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا.
0: مجھے کوئی اچھی نہیں لگی,
3: میں بھی دعا سلام دے سکتی ہوں.
0: دے دیں, دے دیں, سلام بھی دے دیں.
3: دے دوں. اچھا, رضا بھائی, شہزاد انکل, برفی بڑے انکل, ماریا پیا, نیلا پی, ساجدہ, سلیخا اور سبھی سننے والی سماعتوں کو میرا سلام. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.
0: اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ جی, رمشا جی ہمارے ساتھ کال کر رہی تھی, اور تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کے. ویل جی, مجھے سن رہی ہیں آر جے روبینہ وجاہت, ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور کی زبردست آر جے ہیں, ہماری سینئر آر جے ہیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ, اور جو آپ نے تعریفیں کی ہیں, جو آپ نے پروگرام کو پسند کیا ہے, دعائیں دی ہیں, بہت شکریہ روبینہ, بہت شکریہ آپ کا. اسٹے بلیسڈ, ہنستی رہیں, مسکراتی رہیں, ایف ایم 101 پہ پروگرام کرتی رہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی گانا چلا دوں, کوئی گانا چلا دوں. کون سا گانا چلا دوں؟ اچھا, تھوڑی دیر میں گانا بھی چلاتے ہیں. اور میسیج ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ جی فیضان نے میسیج بھیجا ہے. علی بھائی, میں آپ کو سن رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں. تھینک یو سو مچ فیضان, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. السلام علیکم 101 کے سبھی سننے والوں کو, میری طرف سے ہنستا مسکراتا ہوں.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں نے کال لے, میں بالکل ٹھیک ہوں, میں نے کال لینی نہیں تھی, بس ایسے ہی میرے ہاتھ چلے گئے, بٹن دب گیا اور کال میں نے اٹھا لی. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
4: اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, الحمدللہ.
0: زبردست زبردست. وہ کون سا فیصلہ تھا جس نے آپ کی زندگی بدل کے رکھ دی؟
4: دیکھو علی بھائی, میں نا گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اچانک.
0: اچھا, ٹھیک ہے.
4: تو میرا بیٹا آیا باہر سے, تو کہتا امی جی آپ نا جلدی سے تیاری کرو. میں نے کہا کہاں کی تیاری کروں, کیا کروں میں؟ کہتا امی جی آپ کا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کہاں پڑا ہے؟ میں نے کہا یہ پڑا میرے پاس ہے. کہتے آپ عمرے کی تیاری کرو.
0: واہ واہ واہ واہ, کیا بات.
4: یقین کرو, یقین کرو علی بھائی, کہ میں ایک دم سے میرے نا جیسے انسان کو ہوش و حواش, میں حیران اور پریشان ہوئی کہ دیکھو ایک دم سے.
0: بالکل بالکل, ایک دم سے جب پتا چلے نا تو واقعی بندہ بہت سرپرائز ہو جاتا ہے.
4: ہاں جی. تو پھر میں نے کہا مذاق کر رہے ہو؟ کہتے نہیں مذاق نہیں ہے, بالکل آپ تیاری کرو جلدی سے, تھوڑے دن کے بعد جانا ہے اپنے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے. اور اللہ کا شکر الحمدللہ, پھر ہم لوگ گئے, میں اور میرے ساتھ دو اور بھی گئے, بیٹیاں میری دو گئی, سمیرا اور حمیرا بھی گئی.
0: زبردست.
4: تو پھر اللہ کے گھر سے ہم لوگ عمرہ کر کے ادھر میں 28 دن رہ کے.
0: زبردست, بہت اچھی بہت اچھی بات.
4: تو یہ میرے لیے وہ, میں حیران ہو گئی تھی, میں نے کہا یہ تو مذاق کر رہا ہے لڑکا. کہتا مذاق نہیں ہے,
0: مذاق نہیں.
4: تو میں کہتی وہ لمحہ, وہ ٹائم میرے لیے بس آپ کچھ نہ پوچھیے.
0: बिल्कुल ठीक है,
4: ये अल्लाह ताला हर मुसलमान के नसीब
0: सबको लेके जाए, सबको लेके
4: अपने घर की ज़ियारत अल्लाह ताला दिखाए।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल
4: तो
0: ठीक है,
4: बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। करे अब अच्छा आप जुम्मे को करते हैं बस?
0: जी जी मैं जुम्मे को ही करता हूँ, एक ही करता हूँ, एक ही करता हूँ।
4: तो एक से ज्यादा क्यों नहीं करते आप?
0: एक से ज्यादा क्यों नहीं करता?
4: हाँ जी
0: इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, कोई और देगा। मैं क्यों दसा?
4: नहीं मेरी बात सुने, एक हमारे अबरार नदीम सर भी सुन रहे हैं, आपकी पूरी टीम भी सुन रही है।
0: अबरार नदीम सर सुन रहे हैं आपको पता है?
4: जी जी मैं वही तो मैं कह रही हूँ कि वो सुन रहे हैं आपके, और नैनिन जो है वो भी आप सब सुन रहे हैं। अब आपको
0: थैंक यू सो मच,
4: आपको एक नहीं कम से कम दो शो तो होने चाहिए।
0: थैंक यू सो मच,
4: मुझे पता है वो कभी भी मेरी बात नहीं टालेंगे, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे इंसान है, जितनी भी उनकी तारीफ की जाए।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
4: और जैसा कि वो दिन मनाया जा रहा है हमारा पहला सालगिरह,
0: जी जी जी जी बिल्कुल मार के हक,
4: वो सब पाकिस्तानी और सब फौजी भाइयों के लिए, आर्मी वालों को, पाकिस्तान
0: जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। राइट अवे ये हमारे साथ थी शमीम आपी लाहौर से, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। अभी हमने जाना है जी कमर्शियल ब्रेक की जानी, उसके बाद एक गाना है, गाना सुनिएगा, एंजॉय करेंगे मैं और आप मिल मिल के, और आपने कहीं जाना, स्टे देयर स्टिक हेयर और सुनते रहिए एफएम 101, ये है जी हमारा प्रोमो।
5: शुक्रिया आपने एफएम 101 ट्यून किया।
6: मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
7: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
6: आपा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
8: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
9: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
8: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
10: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
11: Love FM 101.

मुंडे मार दे मेरे थे पूरे लोर दे। एंजॉय कर रहे हैं ना गाना। तेरे वर्गे नु पुछदा भी कौन है। ये गाना तमाम लाहौरीज के नाम। लाहौरीज आजो मैदान में, कहाँ हूँ आप? आज एक लड़का मुझे बहुत खुश लग रहा है। जब से मैं उसको देख रहा हूँ हंसी जा रही। ये लड़के गाना तुम्हारे नाम भी है।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
2: देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती।

0: पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
1: Smile and dial 111 111 FM.

0: ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर, ये आवाज़ है आरजी अली की और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फन ऑन 101 हर जुमे की शाम 5 से 7 वहाँ पर मैं साथ साथ 04-2111-000-101 हमसे रबते का नंबर है जी। और आज हम बात कर रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी का कौन सा फैसला था जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। अक्सर हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं और बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो ये डिमांड करते हैं कि इस कंफर्ट जोन से निकला जाए, तो जब तक हम वो आसानी को नहीं छोड़ते, वो कंफर्ट जोन को छोड़ने का फैसला नहीं करते, तब तक तरक्की शुरू नहीं होती। और जब हम ये फैसला कर लेते हैं तो तरक्की के मराहिल शुरू हो जाते हैं। यानी कि हम घर में आराम से बैठे हैं और कह रहे हैं कि फलां काम हो जाए, या किसी को कह रहे हैं यार ये काम कर दो, इससे बेहतर है कि वो काम खुद कर लिया जाए, एक कंफर्ट जोन से निकला जाए और मेहनत की जाए। ये तो वही बात होगी ना कि बिजनेस छोटे भाई ने करना है और मेहनत जो है वो बड़ा भाई कर रहा है, तगो दो जो है वो बड़ा भाई कर रहा है, बिजनेस छोटे भाई ने करना है। तो इस हवाले से हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। 04-2111-000-101 हमें कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन है मेरे साथ?
1: मैं चीकू बात कर रहा हूँ।
0: आप चीकू बात कर रहे हैं, आप इतनी स्लो क्यों बोल रहे हैं? आपको पता नहीं आरजे अली का शो है? इतने सुकून से सुकून वाला शो तो है नहीं ये।
1: I'm feeling sad bro.
0: Why you are sad? कौन चढ़ गया तुहानू? केरा फैसला कर लिया?
1: हम मोहब्बत के रोगी हैं, हर किसी की समझ में नहीं आते।
0: अच्छा, मेरी मैं समझना भी नहीं चाहता भाई, मैं बिल्कुल नहीं समझना चाहता।
1: कैसे हो आप, ठीक-ठाक हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूं, आप बताओ क्या हाल है?
1: जबरदस्त फिट पाल।
0: अब भाई हो ना अपने रोग से बाहर,
1: देख लो।
0: चले जबरदस्त हो गया। मुझे बताएं कि मुझे ये बताओ कि वो कौन सा फैसला गलती से आपने कर लिया जिसने आपकी गलती से
1: में मैंने एक फैसला किया था 2021 में।
0: ओके
1: 2025 के लास्ट में आई फील के मैंने बहुत जल्दी कर ली और गलत फैसला कर लिया।
0: अच्छा, 5 साल बाद पता चला?
1: नहीं होना चाहिए।
0: अच्छा, वो फैसले के बारे में कुछ हम अगर जानना चाहें तो हमें बताना चाहेंगे
1: या बैड एक्सपीरियंस,
0: या उसको राज रखना चाहेंगे?
1: एक्सपीरियंस बैड।
0: एक्सपीरियंस बैड हुआ आपका?
1: कि हर इंसान जो है ना वो जिंदगी में साथ चलने के काबिल नहीं होता।
0: तो भाई ऐसे एक्सपीरियंस नहीं ना करते, या इस तरह की आग में हाथ नहीं डालते।
1: बस क्या करे, जब छलांग लगाई समंदर में तो तब समझ आई है समंदर नहीं सी है ते गंदा नाला सी।
0: चलें कोई बात नहीं, सब अच्छा होने को है। और मुझे ये बताओ कि लाहौर का मौसम के हवाले से क्या कहोगे आप?
1: लाहौर का मौसम यार काफी गर्म है।
0: ठीक है,
1: रात को तो बहुत मजे का था और हवा चल रही थी और अभी जो है ना क्या कहते हैं मैं छत पे था तो हवा है हल्की सी, लेकिन जो है ना गर्मी ज्यादा है।
0: हवा है, गर्मी ज्यादा है, लेकिन उस तरह से गर्मी नहीं अभी आई। वैसे ये बात
1: उस तरह से नहीं आई, लेकिन जब पीक टाइम होता है ना गर्मी का तो फिर लग पता जाता है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने
1: का। थैंक यू माय डियर पप्पू।
0: थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ले जी, हमारे साथ मौजूद थे चीकू दा मीकू, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। अभी हमारे पास कमर्शियल ब्रेक है।

0: तो उसकी जानी बढ़ना है, उसके बाद हमने एक फरमाइश भी प्ले करनी है और फरमाइश बहुत ही ज़बरदस्त सी है, बहुत ही खास फरमाइश है। थैंक यू सो मच फरमाइश करने के लिए। और हमें आरजे रुबीना वजाहत ने फरमाइश की, उनकी फरमाइश पे एक गाना चलाएंगे और अभी हमें बढ़ना है टुवर्ड्स दी कमर्शियल ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM 101।
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
2: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: मैंने सुना है खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
4: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
3: आपा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
5: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मंसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
6: खानदानी मंसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
5: सोच को आजाद करो, खानदानी मंसूबा बंदी को आम करो।
7: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
1: Smile and dial 111-111-FM.
0: आइए जी सुनते हैं ताहिर अब्बास की आवाज, आरजे रुबीना वजाहत की फरमाइश पे। मैडम ये गाना आपके नाम।

0: smile and dial 111-000-101 FM.
1: All right, you listeners, smile and dial 111-000-101 FM. कमल नाज कहती हैं जी हाँ जी, ये भी अच्छा फैसला है कि आपको सुनना शुरू किया, अब कोशिश करूंगी कि मुसलसल सुनूंगी। ये तो बहुत अच्छा फैसला हो गया। मैं कहता हूँ ज़िंदगी में मौका और धोखा हर बंदे को मिलता है, हम लोग सीखते क्या हैं ये हम पे डिपेंड करता है। अमृता चौधरी कह रहे हैं, और अमृता चौधरी ने हमें ऑफर कॉल भी की, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। कहते हैं जी बहुत सारे फैसले ज़िंदगी में किए, लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी किए जिसमें कुछ मुझे कम मिल रहा था और मैंने फिर दूसरों का साथ दिया कि यार कोई बात नहीं, मैंने रिश्ते बचा लिए, मैंने जगह को, मैंने उस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं दी, लेकिन मैंने अपने रिश्ते बचा लिए। अरे वाह क्या बात है अमरजा। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम 101 रेडियो पाकिस्तान से आपको वेलकम, खुश आमदीद जी आयन। कैसे हैं अली भाई आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमें हमारा सुन रही हैं, कॉल कर रही हैं, हमसे बात कर रही हैं।
2: जी बहुत शुक्रिया पहचानने के लिए।
1: चले आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। मुझे ये बताएं हमारा कि कोई ऐसा फैसला आपकी ज़िंदगी का जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया।
2: ज़िंदगी को बदला नहीं है लेकिन ये जरूर सिखा गया है वो फैसला कि किसी पे एतबार नहीं करना, किसी पे इतना मर्जी कोई कस्में खाए।
1: अच्छा, मर्जी कोई लगता है हमारा आपके भी कोई पैसे लेके भाग गया।
2: ऐसे नहीं, एतबार लेके
1: भाग गया। हाय हाय हाय हाय, ठीक है सही है।
2: हम लोग बहुत मान से बहुत इज्जत देते हैं, हम कोई एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो, बहन भाइयों का हो, या वट एवर कोई भी, तो वो आपको धोखा देना फिर बड़ा तकलीफ।
1: हाँ वो तो एक बड़ी बड़ी गलत बात है, वाकई गलत बात है। ठीक है हमारा। और प्रोग्राम सुन रही हैं आप, एंजॉय कर रही हैं आज का प्रोग्राम?
2: हाँ जी बहुत मजा आया, बहुत मजा। जो पहला सेगमेंट था अपना, आपने जो पाक आर्मी को
1: ट्रिब्यूट पेश किया, हमने राजे तहसीन पेश किया,
2: बिल्कुल वो जो आपने नगमे प्ले किए बहुत अच्छे थे, बहुत जज्बा।
1: थैंक यू सो मच जी।
2: और रबीना भी सुन रही हैं, उनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज, अस्सलाम वालेकुम, और आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। एम रज़ा कहते हैं जी अली भाई आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, और जो आपके उस्ताद हैं ना वो भी मेरे उस्ताद हैं, आरजे गुलाम अली जवेद साहब, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। उस्ताद मोहतरम को अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे, शादो आबाद रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, 101 के साथ रखे, हमारे साथ रखे। रमज़ान गुजर सुन रहे हैं, गुड इवनिंग 101, आदाब अर्ज़ करते हैं स्वीट आरजे अली रज़ा। अच्छा जी, और कहते हैं जी प्लीज़ मेरे भी ब्यूटीफुल शो में प्रेजेंट लगा दें। लग गई जी, प्रेजेंट लग गई आपकी। जैन अली सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम आरजे। वालेकुम अस्सलाम जैन, थैंक यू सो मच, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, की हाल है जनाब?
1: ओ मैं क्या ठीक हाँ, तुसी सुनाओ की हाल है जनाब?
3: आज कुछ बेहतर हो गया, थोड़ी बात सुनी है तो हुण थोड़ी तबीयत सेट हो गई है।
1: चलो ऐ ते चंगी गल है, मैं तुहानू दवाई दित्ती जेरी ओ काम कर गई अपना।
3: नहीं तुसी आप जी डिसिप्लिन दा काम कर दित्ता
1: ही। ओही ना, मैं अपनी ही गल कर रहा।
3: और की हाल चाल?
1: बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कोई फैसला जिंदगी का ऐसा जिसने आपकी जिंदगी का रुख बदल के रख दिया।
3: देखो जी जिंदगी का रुख जेड़ा ना वो नसीबा ना ही बदलिया जाता है, फैसले करना तो असं जो मर्जी करते फिरीए, लेकिन होना उ जो मेरे रब न मंजूर हों।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है।
3: असं तो बस सोच ही सकने इंज नहीं है। वेखो ना मैं रक्षा चलाना हाँ, तो मेरा फैसला ही कि हूं मैं रक्षा चला जहाज चला ला पवान, पर कम कि होया जी?
1: अच्छा कम नहीं होया ता
3: मतलब
1: ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਖ ਲੋ ਨਾ, ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਖ ਲੋ, ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗਾ।
3: ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਇਆ ਫਲਾਣੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲਾਇਆ
1: ਤੇ ਲਾ ਨਾ
3: ਬਹੁਤ
1: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ।
3: ਥੈਂਕ
1: ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਲਾ ریاض بٹی شادرہ سے سن رہے ہیں اور آگے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی میں آپ کو سن رہا ہوں، ریاض بٹی، عاجز ارمان بھی سن رہے ہیں، رمضان گجر کو بھی سلام بھیجا ہے جی، چودھری الطاف حسین کو بھی سلام بھیج دیا ہے اور کہہ رہے ہیں جی بیوٹیفل شو، تھینک یو سو مچ ریاض بٹی صاحب، آپ کی محبتوں کا، رفاقتوں کا، جفاقتوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں۔ آرج زینب ارشد نے پوسٹ کو لائک کیا ہے اور میرا خیال ہے سن بھی رہی ہیں، تھینک یو سو مچ آرج زینب ارشد، بہت شکریہ آپ کا، آپ سن رہی ہیں، میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ راوی دے کنڈے وس دے تے گنے دی رو نالو میٹھے، ایسے ہی کچھ ہے نا۔ تھینک یو سو مچ آرج زینب۔ عبد الغفور سن رہے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ طیب عثمان رندھاوا بھی آ چکے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور یہ جو ہماری جو برادری ہے نا، آر جے برادری مجھے سن رہی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا، رفاقتوں کا، چفاقتوں کا، شفاقتوں کا، سب سب چیزوں کا شکریہ۔ میں تو دے نہیں دے سکتا۔ السلام علیکم۔
4: وعلیکم السلام جسے بھائی، کیا حال ہے
1: جی؟ کی نال ہے آج؟
4: میں نے کہا سر کیا حال ہے؟
1: ہاں میں ٹھیک ہوں، پہلے مجھے لگا آپ نے کہا مدثر بھائی کیا حال ہے۔
4: نہیں سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کہا بھائی روز شو کر رہے ہیں نا، اس لیے میں نے کہا شاید پتا نہیں سنتا کہ نہیں۔
1: اچھا صحیح صحیح صحیح صحیح، کیا حال ہے آپ کا؟
4: جی شکر الحمدللہ رب
1: العالمین۔ نام نہیں بتایا آپ نے
4: سر۔ میں لاہور سے ساتھ باغ سے محمد نویز بات کر رہا ہوں۔
1: جی محمد نویز صاحب، کیا کرتے ہیں آپ؟
4: سر جی میں تو فی الحال اس وقت پارک میں بیٹھ کے سنگنگ کر رہا ہوں، تو گھنٹے سے کال ملا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے کہا
1: پارک میں بیٹھ کے سنگنگ کر رہے ہیں؟
4: یس سر۔
1: اچھا سنگنگ بھی کرتے ہیں؟
4: ہاں بس شوق ہے تھوڑا تھوڑا سا سر۔
1: اچھا پارک میں ہی جا کے کیوں کر رہے ہیں سنگنگ؟ دیکھنا یار عوام بھاگ کے پارک سے باہر نہ چلی جائے بھائی۔
4: نہیں
1: یار ہماری میں نے تو کہا ہی نہیں بری آواز ہے یار، میں نے تو کہا ہی نہیں آپ کی بری آواز۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کوئی فیصلہ جس نے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا؟
4: سر فیصلہ تو بس یہی ہے زندگی میں اچھا تو نہیں، لیکن ایک بار ایسا ہوا غلطی ہوئی زندگی میں، آخری بار پہلی بار میری آئی کا آپریشن کروایا تھا لیکن وہ غلط ہو گیا، بس تو وہی غلطی ہوئی ہے بس زندگی میں پہلی اور آخری۔
1: اچھا
4: اب نظر بالکل ختم ہو گیا۔
1: او ہو یار بہت ساری دعائیں میری آپ کے لیے، بہت ساری دعائیں۔
4: اور جہاں جہاں تک میری اور آپ کی آواز آ رہی ہے سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام اور سب کو دعا کی اپیل کرتا ہوں۔
1: وعلیکم السلام جی، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، تھینک یو سو مچ نوید، بہت شکریہ۔
4: سر یہ میرا دوست بھی پاس بیٹھا، اس سے بات کریں۔
1: دوست سے بھی کرا دیں بات؟
4: یہ لے بات کریں۔
5: السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام جی، نوید کے دوست، کیسے ہو آپ؟
5: شکر اللہ کا۔
1: نام؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، نام بتائیں اپنا۔
5: نام عمر دراز۔
1: عمر دراز، اللہ آپ کی عمر سچ میں دراز کرے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی زندگی میں فیصلہ لیا ہے کبھی؟
5: کس چیز کا؟
1: کوئی فیصلہ لیا ہو جس نے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہو؟
5: میں یہ بھی تک دیکھتا ہوں آپ
1: نے کوئی فیصلہ نہیں لیا؟ چلو پھر کوئی فیصلہ لے لو۔ کوئی فیصلہ لے لیں، ٹھیک ہے؟ کچھ زندگی میں کچھ اچھا کرنے کا فیصلہ لے لیں، ٹھیک ہے عمر؟ تھینک یو سو مچ عمر، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آئندہ بھی کال کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اوکے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
6: ہیلو۔
1: وعلیکم السلام جی، کون؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وائٹ کلر کے ہیں؟
6: میں
1: وائٹ
6: نہیں، وائٹ
1: وائٹ
3: अवॉइड
1: अवॉइड कलर के हैं। अच्छा कलर तो आपने बता दिया, अब मुझे ये बताएं कि कितना वाइट कलर है आपका?
3: मेरा वाइट सारा ही वाइट।
1: सारा ही वाइट है, अच्छा ब्लैक कुछ भी नहीं है?
3: नहीं नहीं ब्लैक मेरी आंखें हैं।
1: आपकी आंखें ब्लैक हैं, चलें शुक्र है कुछ तो ब्लैक निकला। मुझे ये बताएं
3: तो वो होती ब्लैक है।
1: अच्छा ये जो ब्लैक आंखें हैं आपकी, ये फैसला आपका तो नहीं होगा ना?
3: ये तो अल्लाह का फैसला है जिसने अता की है।
1: ये तो अल्लाह का फैसला है। मुझे ये बताएं फिर आपने कोई फैसला किया हो जिसने आपकी जिंदगी को बदल के रख दिया हो, कोई है फैसला?
3: फैसला तो नहीं तो फालसा हो गया, फालसे का जूस बना के पिया
1: है। फालसे का जूस अगर आपने पिया है तो अकेले अकेले क्यों पिया यार, मुझे भी पिलाना था।
3: मोस्ट वेलकम सर, 1 2 3 4 5 6 जितने गिलास।
1: नहीं 6 तो बहुत कम है यार, मैं 10 12 पीता हूँ।
3: 12 14 100
1: 100 कुछ ज्यादा ही हो गया, 100 से कम
3: ज्यादा हो गया।
1: हाँ ज्यादा हो गया।
3: तो बहरहाल ये जो फैसले होते हैं ना,
1: बहरहाल अपना नाम भी तो बता दो यार, ये भी तो कोई ये भी फैसला कर लो, नाम बताने का भी फैसला कर लो, आज ही करना है।
3: नाम बताने के लिए फैसलाबाद जाना पड़ना है।
1: फैसलाबाद जाना पड़ेगा, ये शहजाद के रिक्शे पे चले जाना फिर, ठीक है?
3: नहीं वो जहाज ही गया, अगर जहाज जितने मजे डिग पेगा तो फिर फायदा
1: नहीं। नहीं मैंने उसको कह दिया आपसे किराया भी नहीं लेगा और आराम से चले जाना उसके रिक्शे।
3: उन्हें कहना है पूरा डबल ट्रिपल किराया दो, मेरे रिक्शे तो एसी लगा है। अच्छा एसी टाइम रखा।
1: अच्छा चले एसी टाइम है, अपना नाम बताओ आप।
3: जी मैं मुझे प्यार से और गुस्से से और जेलस हो गए मोहम्मद उस्मान मुगल कहते हैं।
1: उस्मान मुगल कहते हैं जा, मैं नहीं कहता
3: इसलिए तो आप जेलस हो रहे हैं।
1: हंस पड़े हो ना, हंस पड़े हो ना यार, हंसा दिया मैंने तुम्हें फिर है बिलाहिर।
3: थैंक यू। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर एक खासियत है कि मैं जितना मर्जी सीरियस हूँ लेकिन मैं जल्दी हंस पड़ता हूँ।
1: नहीं नहीं देख ले, हमने आपको हंसाया भाई, आप हंसने वाले नहीं थे।
3: ये जो वर्ल्ड कप जो रक्षे के ऊपर जो मैंने रख के लेके जाना था वो आपके नाम,
1: वो आपका हुआ,
3: वो रक्षे ही आपका हुआ।
1: ठीक है, थैंक यू सो मच उस्मान मुगल कॉल करने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके।
3: जी जजाकअल्लाह,
1: थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आज हमने आपसे पूछा कि आपकी ज़िंदगी कोई ऐसा फ़ैसला जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया हो, तो अक्सर हम किसी दोस्त को बड़ी देर बाद मिलते हैं और वो मिलने के लिए ना कोई एक बंदा फ़ैसला लेता है, एक बंदे को स्टेप लेना पड़ता है कि यार आज मैंने अपने इस पुराने दोस्त को मिलना है। और वो स्टेप जब आप ले लेते हैं ना तो फिर अगले बंदे के दिल में भी आता है कि यार हाँ हूँ ऐ मैनू इन्ने साल बाद मिल रहा थे, मैं भी इनू मिल लवा। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम, शुक्र है अल्लाह का आपने मेरी कॉल उठाई है।
1: मैंने कब उठाई है
6: कॉल पिक की? आपने की है तो बात हो रही है।
1: इतनी आपकी भारी कॉल थी भाई, मेरे से नहीं उठाई गई, मैंने 5 बंदे बुलाए भाई से, उन्होंने आके उठा के रखा हुआ है। बोले
6: चलो इसीलिए इतना टाइम लगा, तीसरी चौथी दफा मिली है तो आपने पिक किया। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है।
1: मोहम्मद इदरीस है,
6: आपका
1: नाम किसने रखा? नाम किसने रखा था आपका?
6: ये नहीं मैंने आज तक नहीं
1: पूछा।
6: मेरे मुझे उम्मीद है कि मेरे पापा ने रखा।
1: चले माशाल्लाह जबरदस्त। मुझे ये बताएं आपकी जिंदगी को ऐसा फैसला जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया।
6: मैंने जो फैसला किया ना ये असम सुनने का,
1: ठीक है,
6: कोई 7-8 महीने पहले किया, 7-8 महीने हो गए,
1: ठीक है,
6: इसने मुझे टोटली बदल दिया।
1: जबरदस्त यार, मैं यही ये इस जवाब को सुनने के लिए ना, इस जवाब को सुनने के लिए मैंने आपकी कॉल उठाई है। आपको पता है
6: आपको मैं सही कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा
1: यार। मैं भी
6: अक्सर एंट्री लगी होती है और बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, मुझे नजर नहीं आता बिल्कुल,
1: ठीक है,
6: नजर नहीं आता।
1: आपको मैं हकीकत में बात बताऊं, मेरी बात सुनिए, आपको मैं हकीकत में एक बात बताऊं कि मैं वाकई मुझे खुशी हुई है कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये बात कौन सा बंदा कहे, क्योंकि जब हम FM सुनते हैं ना, जब हम FM 101 को सुनते हैं और FM 101 के तमाम आरजेस को सुनते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आ जाता है।
6: मैं ये तो बात
1: ये मेरा दावा
6: बस एक बात की मुझे समझ नहीं आई।
1: जी जी
6: के जो ये रेगुलर लिसनर है ना जिनकी कॉलें मिलती हैं,
1: ठीक है,
6: मेरी 3-4 दफा कॉल मिलती है फिर जाकर पिक करती हूँ।
1: ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है।
6: ऐसा
1: हम
6: पता नहीं, मुझे
1: ओ
6: इसकी समझ नहीं
1: भाई,
6: आता।
1: जब हम कॉल्स किया करते थे ना तो
6: बड़ी
1: आरजे
6: मेहनत कर,
1: आरजे कॉल उठाते ही नहीं थे यार। जब हम कॉल किया करते तो उस वक्त तो
6: अच्छा
1: बहुत सारी कॉल्स होती थी, अभी भी कॉल्स होती हैं, लेकिन उस टाइम पे तो मैं कहता हूँ मेरे तो हाथ थक जाते थे। मैं तो अपने हाथ दबाने लग जाता था, मेरी उंगलियाँ थक जाती थी, मेरा अंगूठा दब जाता था, और फिर मैं रोने लग जाता था कि यार मेरी कॉल क्यों नहीं मिल रही। सच्ची कह रहा हूँ, आपकी तो फिर भी तीसरी दफ़ा में मिल गई है।
6: तो तीसरी बार मिली है
1: चले
6: तो आपने उठाई है,
1: चले। थैंक यू सो मच,
6: ये
1: बहुत
6: मैं
1: शुक्रिया,
6: शुक्रिया कर रहा हूँ।
1: बहुत
6: बहुत
1: शुक्रिया।
6: अच्छा, एक पैगाम और पाक आर्मी के लिए।
1: जी जरूर,
6: तो पाक आर्मी को मेरा सलूट है।
1: बिल्कुल,
6: तो एक मिसाल है ना, कहते हैं कि तगड़ा वेख के डरो ना ते मारे हुए वेख के लड़ो ना। इन्होंने समझा कि भी लड़ते नहीं किस तरह, मारे ने इंडिया वाले ने सही समझ के हमला किया पाकिस्तान से। उन्होंने नहीं पता सी के
1: हमने दुश्मन को नाको चने चुबवा दिए और उसके गरूर को,
6: दुश्मन यही समझता
1: उसके
6: कि ये
1: हाँ,
6: यही समझता
1: वो यही
6: कि
1: समझता
6: कुछ
1: था
6: नहीं कर सकते,
1: और हमने उसके
6: ये
1: गरूर को
6: छोटा सा
1: हाथ में
6: बंदा
1: मिला
6: है इन्होंने
1: दिया।
6: क्या करता है
1: बिल्कुल ऐसे ही है,
6: उसको जब उसको ये नहीं पता था कि आगे शेर बैठे हैं।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कहा
6: आपने। तो जब शेर दौड़ता है ना तो वो फिर अपने शिकार को कभी दिखा ली जाना।
1: बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आज की आखिरी कॉल लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को खत्म करते हैं, घर को जाते हैं, रोटी खाते हैं, सो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
7: अनिला बात कर रही हूँ।
1: जी अनिला बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? लाहौर से बात कर रही हैं?
7: मुंह
1: से तो नहीं कह रही होंगी?
7: मुंह से ही कह रही कि आपने फौरन लाहौर पकड़ लिया। मैंने कहा वो लोरी है ऐसी।
1: हां असली लोरी हुंदे आ, ओए
7: लोरी लोरी
1: आई लोरी ने आ, सानू पढ़ के वहां असली भजने बड़ी तेज आ
7: लाल लोरे।
1: हां लोर लोरे। अच्छा मुझे ये बताएं कि प्रोग्राम सुने आपने आज का?
7: हाँ अच्छा, प्रोग्राम अच्छी गुफ्तगू हो रही है।
1: चलो थैंक यू
7: सो
1: मच।
7: और टॉपिक तो ये कहूँगी कि मजे का टॉपिक भी है, इसमें लोग मजे मजे का भी बता सकते हैं और सीरियसली भी जा सकते हैं।
1: बिल्कुल ऐसी है।
7: तो मैं कहूँगी अक्सर मजे की बात, अक्सर मैं सोचती हूँ शादी के जहां ही पर के बहुत इकट्ठा फैसला किया।
1: पहले बंदा कहता है मैं लड्डू खाना है, मैं लड्डू खाना है, फिर बंदा कहता मैं क्यों खादा
7: मैं क्यों खादा, फिर नाल जानू मशवरे यार देख ला सोच समझ के खाई वैसे ना ही खाई।
1: ये तो सारी मजाक की बातें हैं, लेकिन ये जो जो एक ये जरूरी भी है और ये जो है ना हमारे लिए भी जरूरी है, और ये एक बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी चीज है। ये रिश्ता बहुत अच्छा, ये रिश्ता बहुत
7: बेशक नहीं सुन्नत, और ये करना भी जरूरी है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
7: जहाँ जेंट्स के लिए लेडीज के लिए भी, अकेले रहना तो बहुत मुश्किल है।
1: बिल्कुल ऐसे ही है।
7: तो अच्छा अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा और बेहतरीन करे।
1: आपने ये फैसला कर लिया हुआ?
7: आंटी
1: हाय अच्छा
7: सही तो क्या
1: तो जली तो पछता रहे हो?
7: आहो नहीं वैसे बिल्कुल नहीं पछता रही, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह
1: बाद में सब यही कहते हैं।
7: नहीं नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए, सबकी बेटियों के
1: आमीन आमीन आमीन, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं सबके लिए,
7: और सब मर्द हजरात के भी अल्लाह ताला अच्छे नसीब करे।
1: आमीन आमीन।
7: दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि मार्का हक, ओहो दरअसल बात यह है कि जब किसी बड़ी चट्टान के साथ कोई चीज टकराती है तो फिर क्या होता है?
1: फिर वो डूब जाती है, फिर वो टूट जाती है
7: ना,
1: बिखर जाती है।
7: तो पाकिस्तान ये फौज, पाकिस्तान वो बड़ी चट्टान है जिसके साथ उन्होंने गलती से टक्कर मार ली थी, बात चुना था लब्या कुछ नहीं था।
1: बिल्कुल
7: है। शायद कोई नसीहत हो जाए।
1: हो गई होगी नसीहत तो बहुत अच्छी तरह।
7: बिल्कुल वो तो बड़ा अच्छा अच्छा तरीके से, अच्छे अच्छे तरीके से नसीहत मिली होगी।
1: बिल्कुल ऐसे ही है। अनिला टाइम बहुत काम है, मुकाबला बहुत सकता है। थैंक यू सो मच।
7: तो जाते जाते ट्रिब्यूट के लिए कुछ बोल दो।
1: मैं बोल दे, मैं गाना भी चलाता हूँ एक मिली नगमा।
7: अच्छा

0: सारी दुनिया ही ये जाने।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
0: अल्लाह
1: हाफिज, अल्लाह हाफिज। राइट अवे जी लिसनर्स, ये था आज का प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। आरजे अली रजा साइनिंग आउट, सेइंग बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज। और छोड़े जा रहा हूँ आपको इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ़ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
5: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
6: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: मार्का हक सिर्फ जंग नहीं, एक पैगाम था, एक ऐलान था, दिफा का, कौम के वक्कार का, पाकिस्तान का। हम तैयार हैं, हर दम तैयार।

0: जब कौम एक हो जाए तो कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती।
1: इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम
0: हौसले, बहादुरी और कामयाबी की ये दास्तां मार्काए हक,
2: मार्काए हक के लिए तैयार है
0: पाकिस्तान की शानदार फतह।
3: पाकिस्तान जिंदाबाद।

इस कौम दा इक्को ही नारा, जान दे के भी अपना मुल्क बचावांगे, असी फौलादी दीवार बन के वखावांगे। तो

हक की सदा बुलंद हो तो ये वक्त रुक नहीं सकता, सच की ताकत के आगे कोई झुक नहीं सकता। अस्सलामुअलैकुम सामीन रेडियो पाकिस्तान FM 101 चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा और आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके सदर में, जहां ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है मगर दिलों में एक एहसास, एक याद, एक अहद ताज़ा हो रहा है। सामीन मार्का हक यानी ऑपरेशन बुनियानु महसूस को एक साल मुकम्मल होने को है, वो लम्हा जब पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने दिफा को यकीनी बनाया बल्कि दुनिया को ये बावर कराया कि ये कौम अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सरजमीन और अपने वक़ार पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करती। ये सिर्फ एक अस्कर

0: शहर में मैं मौजूद हूँ और इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक का शोर, फैमिलीज की मौजूदगी, बच्चों की हंसी एक भरपूर जिंदगी का मंजर पेश कर रहे हैं। यही वो मामूल की जिंदगी है जो एक महफूज और पुरअमन मुआशरे की अकासी करती है। मार का हक ऑपरेशन बुनियादुल महसूस को तकरीबन एक साल मुकम्मल होने को है। इस हवाले से हम आज आवाम में मौजूद हैं, उनसे उनकी राय, उनके जज्बात, उनके ख्यालात जान रहे हैं और उनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
1: वालेकुम सलाम।
0: सर आपका नाम क्या है?
1: अदनान।
0: अदनान सर क्या करते हैं आप?
1: मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ।
0: सो क्या कहना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कि जो पाकिस्तान ने हमेशा मोहब्बत का, प्यार का, खलूस का और भाईचारे का दर्स दिया है और इसी तरह अगर कोई दुश्मन को भी ये आंखों में आंखें डाल के ये पैगाम दिया है कि अगर कोई हमारी तरफ बुरी आंख से देखेगा तो इंशाल्लाह ताला हम उनकी आंखें भी नोच लेंगे, उनको ज़िंदा गाड़ भी देंगे। पाकिस्तान ने ये भी बताया मार्का हक के अंदर के जो कोई दुश्मन होगा हमारी तरफ देखेगा इंशाल्लाह ताला वो निस्तो नबूद कर दिया जाएगा। सेकेंड चीज़ जो है ना कि पाकिस्तान अभी जो रिसेंटली सूरत हाल चल रही है ईरान अमरीका कशीदगी के हवाले से, उसमें पाकिस्तान ने अपने वाजिया मौक़ दिया है कि हम अमन का पैगाम पहुँचाने के लिए आपके साथ, अमेरिका के साथ और ईरान के साथ, दोनों के साथ हम एक सुलह करवाने के लिए अमन की कोशिश करते हैं ताकि पूरी दुनिया को ये मैसेज आए कि पाकिस्तान एक अमन का पैगाम देने के लिए आया है और इंशाअल्लाह ताला तमाम ममालिक को लेके इसमें लेके चलेगा।
0: अस्सलाम वालेकुम सर।
2: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात।
0: सर आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम जी हाजी मोहम्मद अहमद मिनहास। मैं मुस्तफा भाई क्या कहना है, बात ये है कि जो हमने ऑपरेशन बुनियादुल महसूस जो लॉन्च किया था ना जी, वो हमने इंडिया की जो नज़रअंदाजी थी पाकिस्तान में उसके ऑपरेशन संदूर उसने उसका नाम रखा था, उसके जवाब में हमने ऑपरेशन बुनियादुल महसूस जो लॉन्च किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बड़ी इज्जतों से नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्राउड है अपने आर्मी पे कि उन्होंने उनके साथ राफेल जो है ना जिस पे उनको बड़ा मान था वो हमने गिराए अल्हम्दुलिल्लाह और हमारा ये कामयाब ऑपरेशन जो है ना आज तक जो एक साल हो गया है वो इंडिया जो है इंशाल्लाह एक साल क्या वो पूरी उम्र इस जख्म को चाटता भी रहेगा ना, वो जख्म जो ना ख़त्म नहीं होगे जो हमने उनको ज़ख्म दिए हैं।
0: आजकल खिते की जो कशीदा सूरत हाल है, ईरान और अमेरिका के तनाज़ियात के हवाले से पाकिस्तान सालसी का किरदार जो है वो अदा कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिवली ये हमारा किरदार है और इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया को जो मिर्चें लगी हुई हैं इसके ऊपर भी कि पाकिस्तान को अल्लाह ने इससे दी और ये हम अपनी आर्मी पे, अपनी हुकूमत पे जितना भी प्राउड करें वो काम है कि अल्हम्दुलिल्लाह खिते के ऊपर हमने जिस तरह अपना कंट्रोल रखा और जो जंग ने बंद करवाई, ये इसमें मैं ये समझता हूँ कि 110% पाकिस्तान के आवाम का, पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का पूरा किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, वो चाहता है कि खित्ते में अमन सलामती रहे और इसमें पाकिस्तान का भरपूर किरदार है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत से नवाजा इस किरदार के हवाले से।
0: बिल्कुल जनाब, मोहब्बत अमन है और अमन का है नाम पाकिस्तान। आज की नौजवान नस्ल को कोई पैगाम दे दें।
2: मैं आज की नौजवान नस्ल को ये पैगाम दूंगा कि अपने मुल्क के साथ सिंसियर रहें
0: जी हाँ।
2: किसी भी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंगेज ना करें, पाकिस्तान के नेगेटिवली जो ना वो ना करें, पाकिस्तान के हक में जो बात हो सकती है वो करें आप।
0: जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आप दोनों भाई मिलके मेरे साथ नारा लगा दें, पाकिस्तान
2: हमेशा जिंदाबाद।
0: जी सामीन, तारीख गवाह है कि कौमें सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि असूलों और नज़रियात से जिंदा रहती हैं। मार्का हक इसी नज़रिए की एक झलक था जहां पाकिस्तान ने ये साबित किया कि वो ना सिर्फ अपनी सरहदों का मुहाफिज है बल्कि अमन का अलमबरदार भी है। आज जब खित्ते में कशीदगी हो या आलमी सतह पर तनाज़ा जन्म ले लें, पाकिस्तान हमेशा एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर मुजाकरात, तवाजन और क़याम अमन की बात करता है। ताकत और तहमुल का हसीन इम्तिजाज, यही पाकिस्तान की असल पहचान है। तो सामीन, लाहौर के इलाका सदर से आज की हमारी आवाज़ भी यही है कि पाकिस्तान एक नज़रिया है, एक अज़्म है और एक जिम्मेदारी भी। हम अमन चाहते हैं मगर अपनी खुद मुख्तारी और वक़ार पर कभी समझौता नहीं करते। मैं हूँ आपका मेज़

मेजबान मोहम्मद मुस्तफा और इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर है खदीजा मुराद। कल फिर एक नए मकाम, एक नए जज्बे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान पाइंदाबाद।

0: जब कौम एक हो जाए तो कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती।
1: इस परचम के साए तले हम एक हैं हम।
0: हौसले, बहादुरी और कामयाबी की ये दास्तां मार्काए हक,
2: मार्काए हक के लिए तैयार है
0: पाकिस्तान की शानदार फतह।
3: पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुनते रहिए FM 101।
7: मार्का हक सिर्फ जंग नहीं, एक पैगाम था, एक ऐलान था, दिफा का, कौम के वक्कार का, पाकिस्तान का। हम तैयार हैं, हर दम तैयार,
8: हम तैयार हैं, हम तैयार हैं।
6: सुनते रहिए FM 101।

मुख्यमंत्री विदेश के करीब 2 मिलियन भेज रहे हैं।

वेल जनाब, अगर मौसम के हवाले से थोड़ी सी बात की जाए तो मई 2026 में मौसम, मौजूदा मौसम और आने वाले मौसम की सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के बेशतर मैदानी इलाकों में जैसे कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म और खुश्क है। महकमा मौसमियात ने 11 मई तक मुल्क के कई हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर का अलर्ट जारी किया है। और दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो लाहौर समेत वस्ती पंजाब और सिंध में दिन का दर्जा हरारत ज़्यादा रहने का इम्कान है। बिल्कुल अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इसके अलावा बलाई इलाकों में बारिश जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हवाओं के सिलसिले और उसके साथ साथ गरज चमक तेज़ हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान है। सो के पी के वालों, इसके अलावा मई, जून और जुलाई 2026 में मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत मुतवक्के है, जिसका मतलब है कि शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। मई के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गिरज चमक और आंधी और कहीं कहीं झालावारी का भी इम्कान है। अच्छा, सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत काफ़ी हद तक बढ़ सकता है, सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बलूचिस्तान और सिंध के रिहायशी अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दोपहर के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें। दिन के वक्त सुबह 11 से लेकर शाम 4 बजे तक आपने घर से बाहर नहीं निकलना। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो आप निकल सकते हैं। पानी और ठंडे मशरूब का आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि गर्मी जो होती है ना, गर्मी से इंसान को अपने आप को बचाना है। हम सर्दियों में तो ख़ुद को बहुत ज़्यादा ढांप के रखते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखते हैं, लेकिन गर्मियों में हम अपना ख्याल नहीं रखते उस तरह से। सो हमें अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और हम अपना ख्याल रखेंगे तो यूँ समझें कि हम अपने प्यारों का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं बहुत सारे लोगों की। सो जब हम अपना ख्याल रख रहे होते हैं, हम बहुत सारे लोगों का ख्याल रख रहे होते हैं। वल जनाब, इसके अलावा एक और ख़ास बात जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और हमारा एक खसूसी सेगमेंट भी होगा उस हवाले से, और जितने भी 1-1 के आरजेज हैं, सब जो भी आ रहा है आप से यहाँ पे बात करने के लिए, शो करने के लिए, तो वो ये बात ज़रूर ऐड कर रहा है साथ साथ, कोर्स करने में चाहिए, हमारे मुल्क की बात है, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी ये बात ऐड करता है, और हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें प्राउड है, फ़ख्र है इस बात पर कि हम पाकिस्तानी हैं, सच्चे पाकिस्तानी हैं। मई का महीना बहुत ख़ास है पाकिस्तानियों के लिए और हमेशा ख़ास रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि पिछले साल इन दिनों हमने अपने बदतरीन दुश्मन को बदतरीन शिकस्त से दोचार किया था, और शिकस्त देकर हमने ये दुनिया को बताया था कि कोई भी एम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे मुल्क की तरफ मैली आँख से देखेगा तो हम उसकी आँखें निकाल देंगे, उसकी आँखें नोच लेंगे। बिल्कुल, और इसमें अहम किरदार अदा किया हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब, इसके अलावा अस्करी की आदत ने हमारी बहुत ही अच्छे से मुल्क की सरहदों की हिफाजत की है, मुल्क का दिफा किया है, जिसने जहाँ जहाँ पे जिस तरह से मुल्क की हिफाजत की है, सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ मैं 101 लाहौर की सारी टीम की तरफ से, उनको सलाम अकीदत। और जिन जिन सिपाहियों ने, जिन जिन लोगों ने वतनी अजीज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, उन सबको सलाम, उनकी रूहों को सलाम, उनकी नस्लों को सलाम, क्योंकि ये मुल्क मेरा, आपका है, सबका है, हमारा है। जब मुल्क हमारा है तो फिर इस पे मर मिटने में क्या मसला है, अगर कोई शहीद हो गया तो फिर वो अमर हो गया। बिल्कुल, इसी हवाले से मैं एक तराना शामिल करूँगा, तराने के बाद हम वापस आएंगे और अपने प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ भी करेंगे। आगाज़ तो हो चुका है भाई, मौसम के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया। इस वक्त अगर आप ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें, और ट्रैफिक रूल्स को आपने फॉलो करना है, ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट आपने नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप एक अच्छे शहरी हैं। एक अच्छे शहरी का यही तरीका होता है कि वो अपने मुल्क के बनाए हुए कानून को फॉलो करता है।
جناب عاطف اسلم. عاطف اسلم کیا بات ہے یار, عاطف اسلم کی خوبصورت سی آواز میں یہ ملی نغمہ آپ لوگوں کی سماعتوں تک میں پہنچا رہا ہوں 101 لاہور کے توسط سے. مجھے کہتے ہیں آر جے سید ہزار, شاہ میں کہتے ہیں 101 لاہور, سنیے اور سردنیے, کہیں جانے کا نہیں, سنتے رہنا ایف ایم 101 لاہور, میرے ساتھ ساتھ رہنا. ٹاپک بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے, لیکن اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے, ہمارا ملک, ہمارے ملک کی آرمی فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب اور ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب, سب کو سلام عقیدت, خراج تحسین پیش کر, اور یہ ترانہ, یہ ملی نغمہ, ان سب سماعتوں کے نام جو میرے ملک سے محبت کرتے ہیں.

ऑफ कोर्स जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और इस वक्त जो जो भी हमारे साथ मौजूद है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया यार, आप लोगों से मैंने सोर्सेस शेयर ही नहीं किए। चलें जी, हमसे रابطے के तीन सोर्सेज हैं। सबसे पहला आपने हमें कॉल करनी है 042-111-0011। मैसेज कर सकते हैं अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में, आइए 11 लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पता लिखिए, खूबसूरत सा पैगाम लिख कर भेज दीजिए 44711 पर। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जी, बिल्कुल, अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो आप फेसबुक पे जाइए, 11 लाहौर सर्च कीजिए, आपको पोस्ट अवेजा मिल जाएगी पेज पे, वहां जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं। और कमेंट्स आपने ये करने हैं, पाकिस्तान हमेशा जिंदा। इस वक्त मेरी आवाज जिन जिन समाजों तक पहुंच रही है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाते जाएं, लिखते भी जाएं साथ साथ। यार अपने बच्चों को ना पाकिस्तान से मोहब्बत सिखाओ, पाकिस्तान की मोहब्बत उनके दिल में डालो, उनके दिमाग में डालो, उनकी रूह में बसाओ, उनके खून में रच बस जाए, इतनी मोहब्बत हो पाकिस्तान से। अपने मुल्क से मोहब्बत हो यार, अपने मुल्क से मोहब्बत, इससे बड़ा इनाम ही क्या हो सकता है, मुझे ये बताओ। वेल, इसके अलावा DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक फिजाई और बहरिया के अफसरान के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह के फजल से मुसल्ला अफवाज कौम की उमंगों पर पूरी उतरी है, मारके हक में अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को मल्टी डोमेन वार में शिकस्त दी, ये वो हकीकत है जिसे भारतीय बच्चे भी जानते हैं, मगर वहाँ की क़यादत तस्लीम करने से कतराती है। तर्जमान पाक फ़ौज ने वाज़े किया कि भारत ने मक्कारी से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का बयानिया बनाने की कोशिश की, मगर दुनिया अब भारत की मनगढ़ंत बातों पर कान धरने को तैयार नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि पहलगाम वाक़े को 1 साल गुजरने के बावजूद भारत सबूत पेश करने में नाकाम रहा है, भारत बताए कि उसने किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी भारत के ईमा पर हो रही है। DGISPR ने जोर देकर कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बल्कि एक बैन अलाक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है, जिसका फ़ैसला वहाँ की आवाम ने हक़ की खुद इरादियत के ज़रिए करना है। भारत को नसीहत है कि वो सच बोलना सीखे, भारतीय सियासतदानों का लहजा सियासतदानों से ज़्यादा झंझुओं जैसा है, अगर वो यही ज़ुबान इस्तेमाल करना चाहते हैं तो याद रखें हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं, बिल्कुल हम तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं, अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार हैं और अपनी आर्मी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी आर्मी के साथ साथ खड़े हैं और अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम अपनी आर्मी के साथ मिलकर लड़ेंगे, हम अपनी आर्मी के शाना बशाना लड़ेंगे, फिर वो बाहर के दुश्मन हो या अंदर के दुश्मन हो, सबसे लड़ेंगे, अपने मुल्क के लिए कुछ भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।

वेलकम बैक लिसनर्स, होप सो कि आप वहीं पे होंगे जहाँ पे मैं छोड़ के गया था. एक सेंसिटिव टॉपिक था, एक सेंसिटिव सेगमेंट था, क्योंकि ये बात हमारे मुल्क की थी और जब मुल्क की बात आती है तो फिर हमें सेंसिटिव होना पड़ता है. अपने मुल्क के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, इंसान हसास होना चाहिए अपने मुल्क के लिए. और अब वापस आ चुके हैं टॉपिक में, आप लोगों से शेयर करता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स भी मैं शामिल करता हूँ प्रोग्राम में, आप लोगों की कॉल्स भी लूँगा. लेकिन कॉल्स चलें ले लेता हूँ. क्या बात है, क्या बात है मोहसिन, ले लेते हैं कॉल. लेकिन 5 मिनट आप वेट करें, मैं पहले कमेंट शामिल करूँ, फिर उसके बाद आप लोगों की कॉल्स भी लेता हूँ. सबर कर लें, सबर कर लें, रुक रहा है, इतनी भी क्या जल्दी है मड़ा. हाँ जी, डिड यू सी, इज देयर फॉर यू. मेरा और आपके साथ होगा 10 बजे तक. सामने लगी वाल पे टाइम हुआ जाता है 8:35. अभी तो बहुत टाइम है मड़ा, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है हमने तुमको, बहुत सारा बातें कर रहे हैं हमने बातें. ऐसा होता है. ऐसे बीच में एक खूबसूरत ट्रैक मुझे नज़र आया, मैंने कहा क्यों ना इसको शामिल कर लिया जाए, प्रोग्राम की जीनत बनाते हैं ट्रैक को, साथ साथ आप लोगों के कमेंट भी शामिल करता हूँ. एंड ओके जी, ऐसा नौकर जनाब दे, पक्की गल है, नौकर हो तुसी, इंज ना करो, तुसी तो सरदार हो, नौकर ना बड़ो, नौकर कह के अपनी कीमत कम तो ना करो. सही सही बात, अल्लाह दी कसम.

अलीशा उजैरी ने हमारे साथ हैं, लिखती हैं कि जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता क्या है, जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तो लगा। अच्छा जी, ऐसा है क्या? पक्की बात है? मुकर तो नहीं जाएंगे आप? लोग बहुत जल्दी मुकर जाते हैं। कमलनाथ हमारे साथ हैं, अल्लाह इंसान को दुख देकर आजमाते हैं, अगर इंसान उस दुख में सब्र और तहमुल से काम ले तो फिर अल्लाह इंसान को बहुत अच्छे से नवाजता है। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। बस ये है कि दुख की उन घड़ियों में अल्लाह को नहीं भूलना, अल्लाह के साथ कनेक्शन आपने ज़रूर रखा। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, उनको जब बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं तो वो फिर बेजार होने लगते हैं, तो ऐसा नहीं किया करें, मायूसी को करें, सब ठीक हो जाएगा। दुखों के बाद की जो खुशी है ना, वो अल्लाह को पता है, आपको नहीं पता। मैं जनाब मोहम्मद जुबैर हमारे साथ हैं, आपको लास्ट बार कमेंट किए थे, अच्छा आपने पढ़े नहीं थे। यार मैं पढ़ता रहता हूँ, किसने कहा? मैं कमेंट पढ़ता हूँ और मेरी बड़ी अच्छी आदत है कि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। ये बात मशहूर है कि उज़ैर जो है ना बहुत ज़्यादा कमेंट पढ़ता है, तो ऐसी बात तो नहीं करें। खैर अब आपका कमेंट शामिल कर लिया है मैं, नहीं क्या याद करेंगे आप मोहम्मद ज़ुबैर। स्वीट कुड़ी लिखती हैं, आ जाएं सर कश्मीर, मोस्ट वेलकम। चलें ठीक है फिर आ जाते हैं, पक्की बात है ना। मोहम्मद जुबैर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। वालेकुम अस्सलाम। सैयद उमैर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, लिखते हैं कि ये बात सच है कि हमें याद करने की फुर्सत नहीं मिलती, मगर जब याद करते हैं ज़माना भूल जाते हैं, क्या बात है। कमल नाज हमारे साथ हैं, आपको और सब लिसनर को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ, थैंक यू सो मच। अलीशा उजैरीन लिखती हैं कि दिल को भा रही है आपकी आवाज़ जनाब, बस दुआ करें सबको भा जाए। कमलनाथ लिखती हैं, अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा सरबुलंद रखे, आमीन सुमा आमीन। सैयद उमैर लिखते हैं, भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यार, आप बताओ कैसे हो। कमलनाथ की तरफ से तमाम लिसनर को, खामोश लिसनर को, अच्छा शमसी लिसनर क्लब वालों को की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया जी, कैसे हैं आप आर्डियो ज़ैर शाह? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कमल, कमल बड़ा प्यारा नाम है, कमल क्या मीनिंग है कमल के? मुबारक नाज, थैंक यू सो मच।

इमेजिन आप होता है ऐसा है कि जब आप पे कोई तकलीफ़ आती है, कोई मुसीबत आती है, तो अल्लाह मियाँ वो आपको तकलीफ़ देकर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत नवाजना चाहते हैं, तो वो आपको आजमाते हैं, आपका सब्र आजमाते हैं। आपको कुछ भी देने से पहले एक इम्तिहान होता है, एक टेस्ट होता है। देखिए, आप कोई डिग्री मिलती है ना, तो जब आप डिग्री लेते हैं, मतलब आप कोई कोर्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपको डिग्री लेने से पहले एक इम्तिहान से गुजारा जाता है। इम्तिहान आप देते हैं, आप 2-3 घंटे लिखते हैं, आप ताबे होते हैं किसी के, आपने उनके मुताबिक ही चलना है, और कुछ अरसा तक आप उनके मुताबिक ही चलते हैं। जैसे एक प्रोसेस होता है स्टडी का, बहुत कुछ आप इन्वेस्ट भी करते हैं, पैसे भी लगाते हैं, आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, आप सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं आप, ठीक हो गया। तो उसके बाद वो आपको डिग्री देते हैं। तो निज़ाम दुनिया का इस तरह ही चल रहा है, जब कुछ दिया जाता है आपको, तो उससे पहले आपको आजमाया जाता है, आपको थोड़ी कुछ प्रोसेस होते हैं उनसे गुजारा जाता है, आपको मजबूत किया जाता है उस चीज़ के, आपको उस चीज़ के काबिल बनाया जाता है, तब जाके आपको कुछ दिया जाता है। ऐसे थोड़ी ना कुछ भी मिल जाता है।

0: अच्छा मुझे कुछ दोस्त मैसेजेस कर रहे हैं कि अच्छा ठीक हो गया, चलें मैं कॉल ले लूँ। 04-2111-0011। अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारे साथ है? हेलो, ये क्या बात हुई, ऐसा भी होता है? अच्छा कुछ दोस्त मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि हम ना कॉल करना चाह रहे हैं आपको, तो कॉल का नंबर है 04-2111-0111, 04-2111-0111, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कौन है हमारे साथ? 04-2111-0011। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: जी सर, मैं बदीन से बशीर अहमद पठान बात कर रहा हूँ।
0: बशीर अहमद पठान बात कर रहे हैं आप जी? पठान साहब क्या कहना चाहेंगे आप?
1: असल माशाल्लाह प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा है और सुन रहे हैं बिल्कुल साफ नजरा जा रही है बदीन के काम की।
0: समझ नहीं आई क्या कहा आपने?
1: सर आपकी जो 101 की नसीहत है ना, ये मैं सुन रहा हूँ बहुत साफ क्लियर आ रही है।
0: ओके थैंक यू सो मच यार, फाइनली नसीहत जो है वो ठीक हो गया, ठीक हो गई मतलब अच्छी बात है ये तो।
1: जी बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया सर शामिल हुए हम, आपने कॉल उठाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।
0: खुश रहें जी, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपको शो अच्छा लग रहा है? लें जी ये चले गए, ऐसे थोड़ी ना होता है।

0: सो ये बात है, अगर कभी कोई तकलीफ़ आप पे आती है, कोई मुसीबत आती है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, अल्लाह पे भरोसा रखना है, इंशाल्लाह वक्त अच्छा भी आएगा। गम ना कर, फिक्र ना कर, टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ साथ सब ठीक होता है, एकदम से कुछ भी ठीक नहीं होता। कुछ भी जब आपको दिया जाता है, उससे पहले प्रोसेस होते हैं थोड़े से, वो उनसे गुजारा जाता है। और अगर आप अजीम इंसान बनना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, तो बड़े लोगों की जर्नी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें। बड़े लोगों ने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की, तो बड़ा बनने के लिए फिर अंगारों से गुजरना पड़ेगा। इस घंटे की आखिरी कॉल लेने लगा हूँ मैं, 04-2111-0011। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हमारे साथ हैं?
1: माय नेम इज आफिया खान।
0: योर नेम इज
1: क्या?
0: क्या नाम बताया आपने? ये क्या बात हुई? नहीं मतलब ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन करता है यार, ऐसे नहीं किया ग्रो, घबरा जाते हैं आप लोग।

वेलकम बैक लिसनर्स, होप सो कि आप वहीं पे होंगे जहाँ पे मैं छोड़ के गया था। मुझे कहते हैं डीजे उसी, मेरे शो का नाम है द इवनिंग गुरु, मेरा आपके साथ होता है एवरी फ्राइडे 8 to 10। इसी बीच में हम करते हैं ढेर सारी बातें प्यारी प्यारी मीठी मीठी, एज लाइक यू एज लाइक मी, ऑफ कोर्स। वेल जनाब, आप लोगों की कॉल्स भी आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सबर कर ले, रुक जाए, मैं लेता हूँ कॉल्स, 30 के बाद आप लोगों की कॉल्स लेना स्टार्ट करूंगा। एंड आप लोगों के कमेंट्स भी ढेर सारे आए हुए हैं, कुछ न्यू लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं, उनके कमेंट्स, आप लोगों के कमेंट्स शामिल करता हूँ मैं, प्रोग्राम की जीनत बनाता हूँ। मुझे कहते हैं आज से मुझसे रबते के 3 नंबर, 3 सोर्सेज, एक ये कि आपने जाना है अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में, 1-1 लिखना है, 1-1 लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम लिखा है, पता लिखना है, खूबसूरत सा पैगाम लिख कर भेज देना है 4471 पर, आपका पैगाम मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं उसको शामिल कर लूंगा अपने प्रोग्राम में। दूसरा तरीका यह है कि आपने कॉल करनी है 04211100111 और जो कि कॉल्स आ भी रही हैं। तीसरा तरीका यह है कि आपने 11 के ऑफिशियल पेज पे जाना है, 11 लाहौर लिखना है, सॉरी अपने फेसबुक पे जाना है, 11 लाहौर लिखना है, आपको पोस्ट अवेजा मिल जाएगी पेज पे, वहां जाके आप कमेंट कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। आप लोगों के कमेंट शामिल करने लगा हूं मैं,

वाल जनाब, कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, कमेंट्स में शामिल करने लगा हूँ। अनमोल मानो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, थैंक यू सो मच अनमोल। लिखती हैं कि जल्दी से आ जाए, आई एम वेटिंग। जी मैं आ चुका हूँ। लिखती हैं लव यू। पक्की बात है, इतने सारे दिल आपने भेजे हैं, थैंक यू सो मच। अब मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अलीशा उजैरियन लिखती हैं, दम तोड़ जाती है हर शिकायत लबों पर आकर जब वो मासूमियत से कहते हैं मैंने क्या किया। ओह माय गॉड, ऐसा है यार। मानूर बलोचिज़ादी लिखती हैं कि अपनी जवानी के धोखे में हर गिज़मत आना के अनकरीब ये तुमसे छीन ली जाएगी। बिनते सदीक हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच जी। इन्होंने भी हमें फूल भेजे हैं, थैंक यू सो मच। मुबारका नाज लिखती हैं, वो मेरी रूह की चाहत में यूं उतर आया जैसे बारिश किसी वीरान घर में उतरती है, अब उसके बाद किसी और को सोचूं भी तो क्यों, वो मेरी सोच के हर रास्ते पर ठहरता है। थैंक यू सो मच। बिनते सिद्दीक ने एक खूबसूरत सी गज़ल लिखी है, भेजी है हमें। कांटों पे चल के देख लिया कुछ नहीं हुआ, रास्ता बदल के देख लिया कुछ नहीं हुआ, कहते थे सब जरा सा तो दिल को संभालिए, दिल ने संभल के देख लिया कुछ नहीं हुआ, धड़का लगा हुआ था रकीबान खास का, सबको कुचल के देख लिया कुछ नहीं हुआ। और एक फूल जो बुना था कभी जीनत चमन, अच्छा एक फूल जो बना था कभी जीनत चमन, उसको मसल के देख लिया कुछ जब नहीं हुआ, उसने कहा सूरत शमा जला करो, ताउम्र जल के देख लिया कुछ नहीं हुआ। शायद इस तरह ही समंदर से जा मिलूं, अश्कों में ढल के देख लिया कुछ नहीं हुआ। बिंत सिद्दीक, अस्सलाम वालेकुम आरजे उज़ैर शाह, ब्लेसिंग यू, थैंक यू सो मच। मिशाल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। कैसे हो आरजे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मिशाल, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच। स्वीट कुड़ी ने खूबसूरत सी गज़ल भेजी है हमें। अच्छा मैं ना इतनी लंबी लंबी गज़लें अगर रीड करने लग जाऊंगा तो मेरे शो का टाइम निकल जाएगा। आखिर पे मैं इंशाल्लाह अपनी पसंदीदा एक गज़ल शामिल करूंगा प्रोग्राम में, अब सब लिसनर के नाम करूंगा मैं। थैंक यू सो मच अनमोल मानू, थैंक यू सो मच। मैं जना अब आप लोगों की कॉल्स मैं लेने लगा हूँ, और रबते का नंबर 04221111 आप कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनमोल मानू, थैंक यू सो मच। मैं जना अब आप लोगों की कॉल्स मैं लेने लगा हूँ, और रबते का नंबर 04221111 आप कॉल कर

0: और उसके बाद अल्लाह ने आपके लिए ऐसे रास्ते खोले हो, आपको वो मिला हो जो आपने कभी सोचा ना हो। 04211100011। अस्सलामुअलैकुम।
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बुझो तो जाने,
0: ये अब नहीं हो सकता, ये शो जो है ना बूझो तो जाने वाला है, नहीं वो अलग से एक शो रखेंगे इंशाल्लाह मोहसिन के साथ मिलकर।
1: अच्छा अच्छा
0: जी जी,
1: अच्छा, और
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सर आप अपना तारुफ करा दें और जो टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: मैं पहले तारुफ करवा दूं कि टॉपिक के बारे में?
0: जी सर जरूर, व्हाई नॉट।
1: अच्छा, मुझे कहते हैं वजाहत नवाज।
0: वजाहत नवाज सियालकोट से? ओह माय गॉड, यस। कैसे वजाहत?
1: अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। आप सुनाएं।
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सर कैसे याद कर लिया आपने हम गरीबों को?
1: नहीं नहीं, आपकी याद आती रहती है।
0: अच्छा, कितनी मेरी कितनी याद आती है आपको?
1: आपकी यहाँ से लेके लाहौर तक याद आती है।
0: अच्छा, इतनी लंबी याद आती है, इतनी लंबी? अच्छा, सिर्फ मेरी याद आती है या बाकी सबकी आती है?
1: बाकी भी आती है लेकिन आपकी भी आती है।
0: अच्छा, मेरी ज्यादा आती है ना? अरे आपने सुना नहीं पहले?
1: मैंने जस्ट ट्यूनिंग किया और मैं कॉल मिलाने की कोशिश पे था कि शायद कॉल मिल
0: जाए। ओके, अच्छा टॉपिक ये है कि ऐसा होता है कभी कभी वजाहत के ज़िंदगी में ना हमें बहुत तकलीफ़ें, बहुत दर्द मिलने लग जाते हैं। ऐसा होता है जिस शख्स को हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं या जिस चीज़ जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है वो हमसे खो जाती है, हमसे बिछड़ जाती है, तो हम ना एकदम से खामोश हो जाते हैं। हम समझते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो उसके बाद अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोलता है, ऐसे रास्ते खोलता है कि इंसान हैरान रह जाता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है?
1: वो कहते हैं कि मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये है कि आसानी कहीं साथ साथ ही होती है, परेशानी के साथ उसको तलाश करना पड़ता है।
0: बहुत खूबसूरत बात
1: है। हम बेसिकली ना परेशानी में इतना गुम हो जाते हैं कि हमें आसानी नजर ही नहीं आती।
0: एग्जैक्टली ऐसा ही है।
1: उसके साथ आसानी क्या है, कौन सी आसानी हमारी परेशानी के साथ जुड़ी हुई है जो हमें नजर नहीं आ रही? तो बेसिकली ये है कि सोचने का जाविया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और हमें इस चीज को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि परेशानी के बाद आसानी, लेकिन नहीं है, साथ आसानी होती है। परेशानी आती है तो अपने साथ आसानी भी लेके आती है।
0: बहुत खूबसूरत बात।
1: आसानी को तलाश नहीं करते हम, परेशानी में ही गुम हो जाते हैं।
0: तो
1: और इतनी परेशानी होती नहीं कि इतने परेशान हम हो जाते
0: हैं। ऐसा ही है सर।
1: तो जिंदगी में मैं एक बात मैंने ही सीखी है, जो वो यही है कि जब तक कोई प्रॉब्लम आ ना जाए ना, तब तक परेशान नहीं होना चाहिए।
0: बहुत खूबसूरत बात।
1: पता क्या है, हम ना हमें नजर आ रही होती है परेशानी है, लेकिन परेशानी आई नहीं होती। हम पहले ही परेशान हो जाते हैं, हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं, अपसेट कर लेते हैं, उदास कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, खामोश हो जाते हैं। ठीक है, और क्या पता वो परेशानी या प्रॉब्लम ना आ जाए, टल जाए। ठीक है, और ये है कि कुदरत पर बिलीव होना चाहिए कि परेशानियां जो हैं वो आती हैं तो उनका हल भी होता है, मामला टल भी जाते हैं मुझे
0: यहाँ से सियालकोट से आगे तक अच्छा लगा है। सियालकोट से आगे कौन सा शहर है? लाहौर से ना आगे, सियालकोट से आगे तक अच्छा लगा है।
1: सियालकोट के आगे बॉर्डर है बस,
0: बस मुझे बॉर्डर तक अच्छा लगा है मुझे।
1: खुश रहे यार, खुश रहे, बड़ा अच्छा लगा है प्रोग्राम करने।
0: थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सर।
1: कीप इट अप, कीप इट अप। Not this shawty, baby girl,
0: I'm a guest, I'm a guest. Danda palse, welcome. Bhai jana, mujhe kehte hain aaj se Dusar Shah. We keeping you warm. Come on, hey buddy. Kitar tum yara? Nahi aate tum humko. Lift nahi karata? Kyun nahi karata? Lift karaya karo na humko yara. Bahut acha insaan hai. Kuch bhi nahi kehti. आप लोगों के कमेंट शामिल करने लगा हूँ। मानवान लाहौर के बहुत सारे लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मानवान मॉल बहुत सारे कमेंट कर रही हैं और इसके अलावा आयशा उजैरियन भी बहुत खूबसूरत सी बातें लिख रही है। سید عمیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یار میری پوسٹوں پہ نا آج سارے دکھی شاعر آ گئے ہیں, اللہ خیر کرے یار. اتنے دکھ مطلب سیریسلی. اچھا مانو انمول لکھتے ہیں لو یو نہیں بہت سارا لو یو. تھینک یو سو مچ یار, بہت شکریہ آپ سب کا.

0: इंजॉय करें इस ट्रैक को, मानो अनमोल। वैसे आपकी जो पिंड है, आपका जो गांव है, वहां पर तो बड़े बड़े गड्ढे हैं।
1: मर के भी मैं ढोला ना तेरा सान करा तेरे पिंड दिया कच्चिया सड़का तू मैं मोटर वे।
0: सही बात है।
1: करा
0: चलें जी, खुश रहें। ट्रैक एंजॉय करें। ट्रैक के बाद मैं आप लोगों की कॉल्स लूंगा, ऑफ कोर्स लूंगा, क्यों नहीं लूंगा। और हाँ, मैं कोई नहीं कुर्बान करने वाला।

हाँ जी, हम तुम्हारी राह देखेंगे, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। जनाब आज का टॉपिक ये था कि ऐसा होता है कभी कभी आप पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, बहुत ज़्यादा मुसाइब, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ एकदम से आपके ऊपर नाजिल हो जाती हैं। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना आपने। और अच्छा यार, बहुत सारे कमेंट मैसेजेस आए हुए हैं 4471 पे, तो ये भी शामिल कर लेते हैं साथ साथ, और टॉपिक के हवाले से भी मज़ीद बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और अब हमने अपने प्रोग्राम का अख्ताम करना है। ज़ारा फ्राम लाहौर, शाह जी कमाल करते हैं आप, पाकिस्तान हमेशा जिंदा। अरे यार शाह जी, थैंक यू सो मच। ज़ारा फ्राम लाहौर, गुड शो, गुड आरजे, वेरी नाइस वॉइस, थैंक यू सो मच। अच्छा एक मुझे मैसेज आया, लिखती हैं शाह जी वेरी नाइस, लेकिन अपना नाम, अच्छा जी ठीक हो गया, ओके।

0: अच्छा, मुझे ना मैसेज किया है एक लड़की ने, लिखा है कि आपने मेरा नाम गलत प्रोनाउंस किया है, मंताशा नहीं मंतशा है। ओके, आपका नाम है मंतशा, ठीक हो गया। मानो अनमोल लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। लें जी, अब नाराज नहीं होना मुझसे कोई भी।
1: ओ, ये हवाएं तेरे बिन परेशान है, ये घटाएं।
0: मानो अनमोल लिखती है, हाय मैं मर गई, कच्ची सड़क क्यों पक्की की, नाम कर देते आज दूर कौन सा जा रहा है।
1: तेरे बिन परेशान है, ये घटाएं तेरे बिन हैरान है, कर रही है।
0: मोहम्मद हफीज उर रहमान बखर हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच जी। जो जो भी हमारे साथ मौजूद है, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने 4471 पे मैसेज किए, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
1: पहाड़ों की कसम तुम चले आओ,
0: थैंक यू सो मच। जारा
1: की कसम
0: 0422111000।

0: हाँ बिल्कुल ऐसा ही
1: है। हो गए
0: अख्तिताम की घड़ियां अन पहुंची हैं, हमें जाना है। ये माइक छोड़, ये माइक मैं हवाले करूंगा आरजे फरहान खान के,
1: तुम चल
0: जो कि अभी लोगों को ज्वाइन कर 10 से 12। मुझे कहते हैं आरजे सैयद उजैर, और जाते जाते एक खूबसूरत सी गजल आप सब समातों के नाम
1: करूंगा।
0: वो लोग जो कि मुझे सुनते हैं, वो लोग जो कि मुझे मैसेज करते हैं, वो लोग जो मुझे कमेंट करते हैं, वो लोग जो मुझे पसंद करते हैं, वो लोग जो अपना कीमती टाइम निकाल के मुझे सुनते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आप सब की समातों की नगर एक खूबसूरत सी गजल जाते जाते, और ट्रैक भी एक हसीन सा ट्रैक भी हम लगाएंगे साथ साथ। तो वेल जरूर लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, आज लगाना चाहिए है ना। आप कैसे
1: ਬੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਤਫਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ
0: आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं, आओ कि तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं, आओ कि छोटी बहर में लिखी लंबी गजल सुनाऊं मैं, और वो जो तुमसे वाबस्ता थे जज्बे आज बयां कर दूं, आओ तुम्हें लफ्जों में बुनकर शेर कोई कह जाऊं मैं। प्यार मोहब्बत इश्क जुनून सब नाम तुम्हारे ही तो हैं, प्यार मोहब्बत इश्क जुनून सब नाम तुम्हारे ही तो हैं, आओ कि इन उनवान पर लिख कर फिल्म कोई बनाऊं मैं। बिन बरसे जो गुजर गए अब की बार दिसंबर में, आओ कि वो बादल आसमान पर फिर से मोड़ खिलाऊं मैं। इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं,

इश्क में हुई जफाओं का हिसाब कैसे लेते हैं, आओ मोहब्बत जमा करके फिर जर्ब लगाऊं मैं, और पिछले पहर में रात को मेरी तलब तुम नशा तुम, पिछले पहर में रात को मेरी तलब तुम नशा तुम, आओ तुम्हें सिगरेट में भर के धुएं में उड़ाऊं मैं, किसी पे मर के जीते रहना इसी का नाम मोहब्बत है, आओ के मुझ में जिंदा है वो तुमको भी मिलवाऊं मैं, जज्बों की तिजारत पर सब दाद वसूल तो करते हैं, जज्बों की तिजारत पर सब दाद वसूल तो करते हैं, आओ के अपना किस्सा कह के महफिल लूट के लाऊं मैं, आओ के तुम्हें प्यार में लिखा पहला सबक पढ़ाऊं मैं, आओ के छोटी बहर में लिखी लंबी गजल सुनाऊं मैं। वेल जनाब, इसी बीच स्टूडियो रूम में दाखिल हो चुके हैं आर फरहान खान, जान तो प्यार जो शो करेंगे 10 से 12 अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज आप लोगों को सुनाएंगे, धीमे लहजे में बात करने वाले आर फरहान खान। मैं ते लख इल्जाम पे आमन तेरे, बिल्कुल मेरे सामने बराजमान है चेयर पर, तो प्यारी केड़ी शह है, बड़ी खूबसूरत इन्होंने केप पहनी हुई है, केप पे बड़े ही जली हुरूफ में लिखा हुआ है पाकिस्तान, राशे संगत, क्या बात है, क्या बात है फरहान, दे तल्ले जे तू आखे ता ठोला, और दूसरी साइड पे मोहसिन मोबाइल में मसरूफ है, बहुत ही जरूरी पैगाम पढ़ रहे हैं। मैं जनाब दुआ में याद रखिए, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए मुझ बंदा ना चीज को अपनी दुआ में जरूर याद रखिए, मुझे कहते हैं आरजे सैयद उज़ैर शाह, सांसों ने वफा की जिंदगी रही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे 8 से 10, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान, और ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सबके नाम।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान सिंगापुर की समंदरी हदूद के करीब कब्जे में लिए गए जहाजों से 11 पाकिस्तानी मलाहों की जल्द अज जल्द वापसी के लिए अमरीका से राबते में है। वजीर इत्तलात ने कहा है कि मारका हक के दौरान भारतीय ज़राए इब्लाग के बेबुनियाद दावों के मुकाबले में पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग के जिम्मेदाराना किरदार की बदौलत उन्हें आलमी सतह पर पजीराई हासिल हुई है। वजारत दाखिला ने मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानी शहरियों के किसी मखसूस मसले की या शहरियत की बुनियाद पर मुल्क बदरी की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया है। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने अम दस्तों पर हमलों के जिम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा किया है। और अब खबरें तफसील के साथ।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: be back after the short commercial break.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: Station for Civilization 101 Hits FM.
7: I love FM.
8: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुबह 8 बजे जो सियालकोट स्टेशन से हुई, तो वो अल्लाह का करम था कि वो एज़ाज़ मुझे हासिल हुआ कि सैयद शबाब हैदर के साथ वो हमने शो ऑन एयर किया। तो इट वाज अ वंडरफुल टाइम। सियालकोट बड़ा खूबसूरत शहर है, बड़े खूबसूरत लोग हैं, आप लोगों की हमेशा मोहब्बत रहती है सियालकोट वालों की। एक कॉलर है, लेट्स सी हु इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप?
1: ठीक है,
0: मैं मज़े में हूँ अल्लाह का शुक्र। हवा चल रही है,
1: पूरी ललकार जिसको देखा गया हर दौर में खरकार के साथ, नाम इस्लाम का लेता है बड़े प्यार के साथ, वक्त के मराहब और नाजर से जाकर कह दो राबता अपना भी है हैदर करार के साथ, जुलम पे जुलम तो करते हो मगर याद रहे इंकलाबात है मजलूम की जलगार के साथ, अपनी मजलूम तमन्नाओं पे ये रोएंगे कब तक सिंधु, अपनी मजलूम तमन्नाओं पे रोएंगे कब तक ये हिंदू, जरूरत पड़ी तो हम फिर जंग करेंगे, अपना नारा है हैदरी या अली, मुसलमान का नारा यही है, पाक आर्मी के लिए बहुत सारी दुआएं हैं।
0: थैंक यू सो मच।
1: महफूज है, मजबूत जिंदगी दे।
0: आमीन। थैंक यू सो मच।
1: अल्लाह ताला तरक्की दे।
0: फीमानुल्लाह। जनाब हमारे कॉलर से हमारे साथ हैं, वैसे मुस्कुराते हुए आप लोग ने अपनी पोइट्री का इख्तिताम किया है, लेकिन मैं समझ गए मुस्कुराने की क्या बात थी। अस्सलाम वालेकुम।
2: बिस्मिल्लाह करा, की हाल है जनाब? ठीक ठाक हो?
0: बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद साहब तुसी सुनाओ?
2: माशाल्लाह, ताडिया दुआवां बड़ी खुशी हुंदी है जदों तुसी पहचान लैंदे हो ना। माशाल्लाह सानू भी पता लगता है कोई साडी भी पहचान करन वाले जिहड़े।
0: नहीं नहीं, तुसी पहचान वाले हो जी, बिल्कुल।
2: बड़ी मेहरबानी जी। वेखो मैं जदों भी आना ना कोई नवी गल बना के आना।
0: अज की नवी गल बनाई है?
2: अज जेड़ी अज तुहानू गल जेड़ी बनाई है तुसी हसोगे भी।
0: अच्छा
2: हां जी, देखो जी पहले नंबर ते साडे बड़ा खुशी वाला दिन ने जेड़ा असी फते होए आ। माशाल्लाह अल्लाह ताला सब दी जिंदगी तंदुरुस्ती रखे। इसे तरह जो पुराना वक्त सी ना, हुकम ते कमांडरां नूं फौज दिती गई कि जाके जंग लड़ो। हां जी, ते उन्हां नूं भी दिती गई ते उन्हां नूं भी दुश्मनां नूं भी दिती गई। जिसले जंग लड़ के वापस आए, उन्हें पूछा आप कितनी फौज लगे थे? उन्हें कहा जी 20,000 फौज लगया था। अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल सही सलामत आए और दुश्मन का मुकाबला करके आए। उन्हें कहा जिंदाबाद शाबाशी। अब दूसरी तरफ से पूछा गया भाई तुम बताओ तुम कितनी फौज लगे थे? वो कहन लगा जी जेडी मैं 10,000 फौज लग गया हाँ मरवाया ते 5,000 का क्वार्टर ले आया। देखो इन्हें ये नहीं पता असि बच्चे बच्चे साडी च जज्बात ने, बच्चे बच्चे वतन वास्ते कुर्बानी वास्ते तैयार हाँ।
0: हाँ जी,
2: साडे ते इक नहीं इक ते नहीं गल हुंदी, अल्लाह दी मेहरबानी ना साडे छोटे छोटे बच्चे। मैं ना प्रोग्राम च मौला जट दे डायलॉग बोलदा रहा, इसलिए जंग माशाल्लाह को लगे ना जंग लगी जलो, ते मेरा बेटा कहंदा अब्बा जी, मैं कहा हां जी पुत्र जी, कहंदा जी मौला जट दा गडासा तुसी अज पुट लवो। मैं कहा पुट लो ओए मुकाबले हो गए जवे।
0: चलो जबरदस्त जबरदस्त,
2: बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे। तो ओ कहंदा ना तेरी बादी बादी गुमू, तेरा कोना कोना चूमू, तू मेरा दिल भर जा, तू मेरा पाकिस्तान, तू मेरा दिल भर जा,
0: पाकिस्तान जिंदाबाद,
2: पाकिस्तान जिंदाबाद,
0: जिंदाबाद जी। शहजाद साहब हमारे साथ हैं, अपने एक रवायती अंदाज से ही आते हैं प्रोग्राम में और जान डाल देते हैं। वैसे वाल जनाब 1111 हमारे रबते का नंबर है, 101 इंटरनेशनल पे आप लोगों की कॉल्स पूरे पाकिस्तान से मौसूल हो रही हैं और थैंक यू सो मच आप सबका हमारा साथ निभाने का। आज का शो स्पेशल हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मार्क हक मनियाल मरसूस, हमारे तमाम शहदा के नाम, तमाम गाजियों के नाम, पाकिस्तान आवाम के नाम, पाकिस्तान के एक एक सपाही के नाम, पाकिस्तान की आवाम के नाम। अच्छा जी, ये जो थोड़ा सा हमें ज़ाती तौर पे लगता है कि हमें अपनी आवाम को ये आगाह करते रहना चाहिए। वैसे मैं देख रहा था आज बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान भर में मार के हक़ के हवाले से इवेंट्स जो है ना उसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। लाहौर शहर में बेशुमार इवेंट्स हो रहे हैं, शहर शहर में इवेंट्स हो रहे हैं, यानी कि इस फतह को याद करने के लिए, उसकी मेमोरीज़ के लिए, उसको रिकॉल करने के लिए कि अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को इज़्ज़तों से नवाजा, जिस तरह पाकिस्तान की अफवाज ने दुश्मन को खाक में मिलाया, खाक आलूद किया, वो एक क्या खूबसूरत लम्हात, उन लम्हात को दोबारा से, और वो क्या जज्बे थे कि जब पूरी कौम एक सीसा पिलाई दीवार बन के अपने सिपा सलार के साथ खड़ी थी, अपनी फ़ौज के साथ खड़ी थी, अपने जवान के साथ खड़ी थी। और आपने देखा है कि जब भी पाकिस्तान पे कुछ ऐसा मुश्किल की घड़ी आती है तो पाकिस्तानी आवाम हमेशा एक पेज पे होते हैं, यक जहाँ यक कल्ब होते हैं। तो ये वो लम्हात थे कि जिसमें पूरी कौम ने मिल के दुश्मन का मुकाबला किया है, चाहे वो सफारती महाज हों, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो डिजिटल महाज हो, चाहे वो साइबर वॉर की जंग हो, चाहे वो फ़िज़ाइया की जंग हो, हर महाज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान साबित कदम रहा। पाकिस्तान ने सच और हिकमत के साथ कामयाबी की मिसालें कायम की, और हिंदुस्तान की जानिब से आप सब जानते हैं कई मरतबा ऐसे इकदाम देखने को मिले जब दुनिया ने फॉल्स ऑपरेशन के तौर पे देखा, पूरी दुनिया ने, और ऐसे वाक़ जिनका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डालकर पूरी दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अल्लाह का करम रहा, दाखली सियासत को मजबूत करने और ख़ते में जो कशीदगी बढ़ाने की कोशिश की गई, मगर पाकिस्तान ने हर बार आपने देखा कि तहम्मुल और सबूत और सफारती जो हिकमत अमली है ना, हमेशा बड़ा ही ज़बरदस्त उनका एक स्टांस रहा। और पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, हम हमेशा ये कहते रहे कि हम अमन चाहते हैं, हमें अमन से रहने दें, हम पुरअमन कौम हैं, और हमारी हमेशा से ये गुजारिश होती थी, हम मुज़ाकरात की बात करते थे, हम एक ज़िम्मेदाराना रवैया हमारा होता था, लेकिन हिंदुस्तान को एक जंगी जुनून सवार था। आपने देखा कि झूठी खबरें, जाली वीडियोज़, मनगढ़ंत दावे, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया को आपने देखा क्या कमाल रोल था पाकिस्तानी मीडिया का, सोशल मीडिया का, नौजवानों का, कौमी अदारों का, हर जगह हमें जो है ना वो पूरी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया गया और हकायक पूरी दुनिया के सामने रखे और पूरी दुनिया ने इसको देखा, आलमी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। अब मज़े की बात है, ये जो मार का हक था ना, ये सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ा गया, ये जंग टीवी स्क्रीनों पर भी थी, मोबाइल फ़ोन्स पर भी थी, सोशल मीडिया पर भी थी, आवाम की हौसलों में भी आप लोगों ने देखी। और पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन तरबियत तो है ही है, उसके साथ साइबर सलाहियतों और गैर मामूली जो हिकमत अमली हमने देखी इस पूरी जंग में, और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के शाहीनों ने जो अपनी महारत से दुनिया को हैरान कर दिया, हमेशा से करती आई, और जिसका बड़ा मान था हिंदुस्तान को अपने राफेल्स, उसकी इंटरनेशनल मार्केट ही गिरा दी, हर महाज पे पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तान की आवाम ने कमाल कर दिखाया। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। सर कौन है हमारे साथ?
2: मैं, आई एम शमीम फ्रॉम कराची।
0: जी शमीम साहब, कैसे हैं आप?
2: अगर ये फोन आप नहीं उठाते तो आपके ऑडियंस बहुत अच्छी पोइट्री से महरूम हो जाते।
0: क्या बात है, जबरदस्त।
2: जो मैंने दिल से लिखी है, अभी सिर्फ 3 बंद लिखे हैं।
0: जी जी जरूर सर।
2: इंडिया के सारे मंदिरों में वो जो चलता है ना अश्लोक भजन।
0: अच्छा मैं इधर ना थोड़ा सा। जी जी जी जरूर जरूर।
2: हाँ तो भजन है, ओम जय जगदीश हरे, पाकिस्तान से रहना पड़े। ये वहाँ के मंदिरों में पंडित बकायदा गा रहे हैं कि ओम जय जगदीश हरे, पाकिस्तान से रहना पड़े। ये जो मूजी है बड़ा मूजी, हिंदुओं को दिखाए बाघ हरे।
0: अच्छा,
2: और अच्छा इनके अंदर जो अकल की बात करते हैं ना, उनको कहते हैं ज्ञान चंद। तो बातें सुनो ज्ञान चंद की, बहुत ध्यान से। फिर पाकिस्तान से हिंदू क्यों ना डरे। तो अभी तीन बनते हैं, मैंने कहा अभी इसकी पढ़ाई है, आपको सुना दूंगा।
0: जी जी जी,
2: तैयार कर रहा हूँ।
0: अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जनाब इस वक्त रहमान अजीज खान साहब हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच रहमान भी फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड लव। डोरीवा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड एज आई ऑलवेज सेड, थैंक यू सो मच एंड फॉर योर काइंड सपोर्ट। मार्का है बुनियादुल महसूस के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जो कि लाहौर में जिसको तशकील दिया जा रहा है पिलाक के अंदर गजाफी स्टेडियम के पास, जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशल्स, मिनिस्टर्स और डिफरेंट जो हमारे पाक फ़ौज के ऑफिसर्स हैं वो भी वहाँ पे आएंगे और आवाम की भी कसी तादाद वहाँ पे भी होगी। और रहमान खान साहब थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग दिस इवेंट, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका भी एंड एवरीवन। एक कॉलर हमारे साथ हैं, लेट्स सी हु इज़ विद अस, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम,
3: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम, हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम
0: जी, कौन है हमारे साथ?
3: मैं निगत बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से।
0: जी निगत, इस्लामाबाद से बात कर रही हैं, इस्लामाबाद का मौसम कैसा है?
3: इस्लामाबाद का मौसम बहुत प्यारा, हवा चल रही है।
0: अरे वाह क्या बात है, प्यारा मौसम है और हवा चल रही है।
3: भाई आपको मैं आज
0: चलें, बहुत बहुत शुक्रिया निगत, सलामत रहें आपका, आपने पहली बार सुना और पहली बार ही आपने कॉल करी, तो निगत क्या कहेंगे आप?
3: हेलो,
0: जी जी जी फरमाइए, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे,
3: आवाज़ आ रही है
0: जी
3: आपको?
0: बिल्कुल मुझे आपकी आवाज़ आ रही है
3: तो हो रही थी।
0: जी जी जी निगत
3: जी, तो सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला ने हमें फतह नसीब की
0: बेशक,
3: और हमेशा इसी तरह दुश्मन को मुंह की खाना पड़ेगी, आइंदा भी दुश्मन कोई हरकत करेगा तो इंशाल्लाह उनको शिकस्त ही होगी
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें बहुत शुक्रिया निकित कॉल करने का, प्रोग्राम में शामिल होने का, और क्या कहना चाह रही हैं आप? जी मेरा प्रोग्राम जो होता है ना जुमे को रात 10 से 12 और ट्यूसडे 8 से 10। देख लें फिर, आज आपकी कॉल लग गई है ना। चलें थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वेल जनाब तमाम सुनने वालों को बताते चलें जो इस वक्त अपनी गाड़ियों में बैठे हमें सुन रहे हैं, तो अगेन एक पब्लिक मैसेज है, प्लीज़ ड्राइव केयरफुली, एहतियात से चलाइए, आराम से चलाइए, एक दूसरे का ख्याल करते हुए गाड़ी चलाएं। शहर से बाहर अगर आप ट्रैवल करें यानी कि लॉन्ग ड्राइव में हैं तो अपनी गाड़ी लाजमी चेक कर लीजिए, अब गाड़ी के टायर्स, पानी वगैरह, ऑयल वगैरह चेक करके निकला करें। कभी कभी ये होता है ना कि आप जब ट्रैवल में होते हैं ना आपको नहीं अंदाज़ा होता, आप यकीन जाने अगर आधी रात को आप किसी सुनसान सड़क पर जा रहे हों और अचानक से आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए और आपको ये अंदाज़ा हो, ये पता हो कि यार मैं, और थोड़ा सा डाउट होता है ना जब आप गाड़ी चलाने वाले होते हैं उनको पता होता है कि गाड़ी में ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई इशू है, ये हर बंदे को पता होता है, जो बंदा 2-4 साल गाड़ी चला लेता है ना उसको अंदाज़ा हो जाता है कि यार गाड़ी में ये इशू है। अगर आपको ऐसा कोई इशू फील हो ना तो आप कभी भी लंबे सफ़र पर मत जाएँ, आप कोशिश करें पहले अपना वो गाड़ी जो है ना उसको ठीक करवा लें, उस इशू को ठीक कर लें। फिर क्या होता है कि आप जब सफ़र भी कर रहे होते हैं ना तो आपके लाशऊर में खौफ एक डर होता है कि यार गाड़ी में ये इशू है, कहीं मसला ना हो जाए। अब स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ हो, आप इमेजिन करें फैमिली साथ हो और गाड़ी ख़राब हो जाए रोड के ऊपर, कितनी मुश्किल बन जाती है। अच्छा एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है जब लॉन्ग रूट पर आप जा रहे हो ना, अक्सर ये होता है कि हम पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में और बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम एस्टिमेट नहीं कर पाते और हम कहते हैं कि अच्छा चलो यार आगे जाके थोड़ा सा पेट्रोल करवा लेंगे, अभी है काफ़ी ज़्यादा है। तो जब नए रास्ते पे जा रहे होते हैं ना, जब नया कोई रूट होता है, नई जगह जा रहे होते हैं या नया ट्रैवल होता है, उस जगह तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, उस जगह तो आपको पहले से अपनी जो गाड़ी है ना उसकी फिलिंग करवा लेनी चाहिए, रिस्क ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। लेट्स सपोज आप मोटरवे पर जा रहे हैं, اسلام آباد جا رہے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہے کہ اسلام آباد راستے میں آپ کو پیٹرول پمپ مل جائیں گے، اتنے فاصلے پہ ٹیک ویز ہیں، وہ پیٹرول پمپس ہیں، وہاں پہ رک سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ سپوز آپ اسلام آباد سے سوات کی طرف جا رہے ہیں یا آپ گلگت کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ایریاز اس طرح کے کہ جہاں پہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، آپ کا نئے روٹ آپ کے لیے وہ سب نئے ہیں، تو ایسے روٹوں پہ جانے کے لیے نا اپنی گاڑی کا پیٹرول جو ہے نا اس کو ذرا پہلے سے فل کروا لیں، گاڑی جو ہے نا وہ لازمی چیک کیا کریں کہ کوئی ایشو نہ ہو، اور فیملی کے ساتھ ہوں تو پھر تو بالکل بھی رسک نہیں لینا چاہیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ موٹر ویز پہ انٹر ہوتے ہیں تو بڑے بڑے بورڈز لگے ہوتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اپنی گاڑی جو ہے نا اس کے ٹائر آپ چیک کر کے آئیں، اگر ٹائر نہیں ٹھیک تو وہ ٹھیک نہیں ہے نا، آف کورس وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا. السلام علیکم.
4: ہیلو، السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
4: جی بھیا جی، کیا حال ہے آپ کے؟
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون ہے ہمارے ساتھ؟
4: آپ پہچانے مجھے، میں کون بات کر رہی ہوں؟ آپ بادام نہیں کھاتے؟
0: بادام نہیں کھاتا میں، بڑے مہنگے ہیں، کیا کروں.
4: پھر بھی نام کا تو پتا ہوگا نا، دیکھ لیے میں نے، پھر اتنا تو میں نے آپ کو شورٹ وہ بتا بھی دیا ہے کہ میں کون بادام والی بات کر رہی ہوں.
0: اور آپ بات کر رہی ہیں لاہور سے ہے نا؟ آپ لاہور سے بات کر رہی ہیں نا؟ میں قریب قریب پہنچ گیا ہوں. ہیلو، چلو اچھا ہو گیا، بچت ہو گئی میری، ورنہ میرا امتحان شروع ہو گیا تھا. اچھا ویسے یہ بھولنے والا جو کام ہے نا، یہ ناموں کو بھول جانا، ویسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ یاد رکھتے رکھتے خود کو بھی بھول جاتا ہے، اور کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں کہ انسان خود کو یاد رکھتے ہوئے انہیں بھول نہیں پاتا. السلام علیکم. سوری، سو ریئلی سوری، میں آپ کو بھول گیا، آپ کا نام بھول گیا. لیکن بھول جانا جو ہے نا، یہ دیکھیں ایک ہے تو ویسے چھوٹا سا لفظ ہے، مگر اس کی جو جذبات ہیں نا، اس میں پوری دنیا چھپی ہوتی ہے. اب میں اس کو سمجھاتا ہوں تھوڑا سا آپ کو، بھولنا کیوں اچھا. ویسے ہم وی آر ویری بلیسڈ کہ ہم بھول جاتے ہیں. اگر ہم یاد رکھیں نا، یقین جانے، اگر ہماری میموری اور کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ایسی رونما ہوتی ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں، یا ایسی تلخ یادیں ہوتی ہیں، یا ایسے تلخ لمحات ہوتے ہیں، یا ایسی ہماری زندگی کے لوگ جو ہم سے دور چلے جاتے ہیں، اگر ہم ان کو بھولیں نہ، اب یقین جانے ہمارے لیے زندہ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا، کسی بات کو بھول جانا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے، بعض دفعہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کسی بات، ایسی بات کو بھول جانا جو آپ کے لیے مشکل پیدا کرے، آپ کو کرب میں مبتلا کرے، آپ کو اذیت میں لے کے جائے، آئی تھنک اس کو بھول جانا بہتر ہوتا ہے. تو اسی لیے بھول جانا جو ہے نا بلیسنگ بھی ہے. اور ایک کالر ہے. السلام علیکم.
5: میں ہوں پاکستانی.
0: ارے واہ.
5: ہماری فوج ہے سب سے پیاری.
0: بے شک.
5: میں ہوں پاکستانی، ہماری فوج ہے سب سے پیاری. حیدرآباد سے کال کرتے ہیں آپ کو شاہد انصاری.
0: تالیاں. بہت خوب شاہد بھائی، کیسے ہیں
5: یار؟ جانے دیکھو ہماری محبت، دیکھو کہ ہمارے یہاں نشریات نہیں آ رہی آپ کی.
0: آپ کی محبت زندہ باد.
5: پھر بھی ہم 10 بجے ہوئے ٹرائی کر رہے ہیں.
0: آپ کی محبت زندہ باد شاہد بھائی، محبت زندہ باد.
5: اچھا ملک اشتیاق صاحب کے کال اگر آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بےچارے بھی ٹرائی کر رہے ہیں گجر خان سے.
0: میں کہتا ہوں ان کی کال آئے یا نہ آئے، ملک اشتیاق صاحب بھی زندہ باد.
5: چلیں. اچھا اب آپ ایک شعر سن لیں پہلے،
0: جی
5: اس کے بعد مجھے ایک ملی نقبے کا موقع دیجیے گا.
0: جی جی جی ضرور.
5: ٹھیک ہے. ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی.
0: اچھا.
5: تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے.
0: واہ واہ واہ.
5: ملے نغمہ. ساتھیو مجاہدو، جاگو تھا سارا وطن، ساتھیو مجاہدو، جاگو تھا سارا وطن، ساتھیو مجاہدو.
0: بہت اچھے جی، بہت اچھے، زبردست. شاید بھائی آپ کے جذبوں کو سلام.
5: آج مظلوم ظالم سے ٹکرائیں گے، اپنی طاقت زمانے سے

0: जिंदाबाद।
1: शायद साहब आते हैं और आके छा जाते हैं और बड़े ही मोहब्बत और जज्बाती अंदाज में अपने एंट्री डालते हैं। वेल जनाब, एक ट्रैक सुनाऊंगा, उसके बाद लॉन्च किया आएंगे हमारे साथ। रे दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक। अभी मोहसिन हमारे साथ बैठे हुए थे यहाँ पे, कहते हैं कि मैंने आपके शो में, मोहसिन हमारे आरजे हैं, तो कहते हैं मैंने आपके शो में इस ट्रैक को सुना और फिर उसके बाद मेरे दिमाग के ऊपर ये ट्रैक छा गया और मैं ट्रेवल कर रहा था कहीं पर, मैंने कोई 30-40 दफ़ा इस गाने को सुना। तो चले, मैंने कहा आज मैं भी चलाता हूँ दोबारा से 40 दफ़ा जो ट्रैक हमारे आज मोहसिन ने सुना है, तो आज आप भी सुने और इंजॉय करें। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा वैसे ये ट्रैक। दिस इज़ कॉल्ड हाले दिल। सो दिस इज़ फॉर ऑल द ब्यूटीफुल लवली एंड लाइवली लिसनर्स। मुझे कहते हैं फरहान खान, आप सुने हैं 101 इंटरनेशनल।

0: हाय मिलने की तमन्ना है दिल से आवाज आ गई है। Alright, जनाब एक कॉलर है हमारे साथ, let's see who is with us. अस्सलाम वालेकुम।
1: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही हैदराबाद में।
0: आपकी आवाज हैदराबाद में नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही?
1: जी अच्छा, एफएम की आवाज नहीं आ रही।
0: अच्छा, अब मुझे बताएं कौन है हमारे साथ, आपकी कॉल मिल गई।
1: बिलाल बात कर रहा हूं।
0: बिलाल बात, बिलाल क्या करते हैं आप?
1: हिफ्ज़ करता हूं।
0: क्या करते हैं?
1: हिफ्ज़।
0: ईज
1: कुरान का हिफ्ज़ करते हैं।
0: अच्छा माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। बिलाल कौन से पारे पे हैं?
1: मैं किसी पारे हिफ्ज़
0: हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके इसमें बरकतें अता फरमाए और हमें दुआओं में याद रखें। और आप जब हिफ्ज़ करते हैं ना जब भी, तो आप कुरान पाक पढ़ने से पहले, कुरान पाक पढ़ने के बाद पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ किया करें, इस वतन की सलामती के लिए, इस वतन की बका के लिए।
1: जी आपको इम्मार का हक है, इस साल होने पे बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से सबको।
0: बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो जी, ये पूरे पाकिस्तान की फतह है। बहुत शुक्रिया।
1: पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
0: पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मोहब्बत रोग है जाना, अजब संजोग है जाना। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, क्या हाल? अल्लाह का शुक्र। कौन है हमारे साथ?
2: मैं दिलीप बात कर रहा हूँ, लाहौर सफदरगंज।
0: सर क्या कहेंगे?
2: हाँ जी मैं ये कहूँगा, जब उनकी सर पेट हुई है ना इंडिया वालों की, तो फिर उनकी एक मीटिंग बैठी, तो उसमें उन्होंने अपने उनके जो जनरल, उन्होंने पता क्या कहा? वो कहते थे कुछ उंज भी रावा अखिया सन, कुछ साडी बड़ा जरूर थी, ते कुछ पाकिस्तान दे जवान भी बड़े दलेर शेर सन, ते सानू मरन दा भी शौक सी। ते देखो जदो तुसीं दीवार च टक्कर मारोगे ना, ते तुहाडा फिर मुंह पट मत्था भज्जे आदे ही भज्जेगा। दिमाग टकरावांगे आप ही मरना, अपना ही नुकसान करना।
0: बिलकुल ठीक, बिलकुल ठीक।
2: जब तक साडे ईमान दा ते इस्लाम दा जज्बा कायम है ना, उदों तक दुनिया की कोई ताकत भी पाकिस्तान नो, मुसलमान नो, किसी जगह से भी शिकस्त नहीं दे सकती।
0: बेशक इसमें कोई शक नहीं है।
2: ते अल्लाह पाक पाक फौज नो मजीद तरक्की दवे,
0: आमीन,
2: ते मजीद हिम्मत दवे, साडे मुल्क नो भी मजीद
0: जो मोहब्बत है ना, ये सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि इंसान की पहचान, गैरत और ईमान का हिस्सा होती है। जिस जमीन पे इंसान पैदा होता है ना, जहाँ की मट्टी में उसके बचपन की खुशबू, जहाँ उसके अपने रहते हैं, उस वतन से जो मोहब्बत है ना, वो उसका एक फितरी अमल है। यानी कि आपको फितरी तौर पे अपने वतन से मोहब्बत होती है, वो वतन इंसान की शनाख्त जो उसको देता है, जो और फिर उसके साथ साथ जो उसको तहफ़ुज़ देता है, आज़ादी देता है। और हम इतने ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ताला का करम इतना है कि हम एक आज़ाद ममलिकत में रह रहे हैं। और अल्लाह का करम है कि इस मुल्क में जब भी किसी ने, आप देख लें हर महाज के ऊपर जब भी बुरा वक्त आया, पूरे वतन ने एक हो के दिखाया। अच्छा फिर मज़े की बात यह है कि जितने भी हमारे छोटे मोटे इख्तलाफात हों, हमारी नाराज़ियाँ हों, हमारी लड़ाइयाँ झगड़े आपस के कुछ भी हों, ऐसे कॉज के ऊपर जब वतन की बात है, जब पाकिस्तान की बात है, जब पाकिस्तान की सालमियत की बात हो, या पाकिस्तान की बका की बात हो, उस वक्त ये सारी कौमें बन जाती है। और ये आपने मार के हक में देखा, हमने हम सब ने देखा और हम सब एक पाकिस्तानी थे और ऐसे लग रहा था कि हर बंदा अपने महाज़ के ऊपर जंग लड़ रहा है और हर बंदे का जो जज्बा था और जज्बा ईमानी जो था ना वो एक मतलब सिर्फ सरहद पे खड़ा हमारा जो जवान है जो शहादत के लिए खड़ा है वो नहीं, पीछे जो 26 करोड़ आवाम है ना वो भी शहादत के लिए तैयार है। तो ये जो जज्बे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का ख़ास करम होता है और ये हमारी कौम को हमारे पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास ये अता है। अस्सलामुअलैकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल ठीक ठाक मैडम, आप कैसी हैं? कराची कैसा है?
3: मैं तो ठीक हूँ।
0: कराची में हवा चल रही है आज?
3: अरे जनाब अली इतनी गर्मी है
0: ना करें ऐसे ऐसे ना कि अभी एक कॉलर आया तो बताया बड़ी मजे की हवा चल रही है।
3: अरे कोई भी नहीं सच में,
0: अरे आप तो जब भी आती है ना कंप्लेन ही कर देती हैं, ऐसे ना करें ना दिल तोड़ देती हैं। अब हम कराची आना चाहते, आप घर बदल लेना, आपको देख के पीछे हो जाती है।
3: तो
0: जब भी आओ आप कहती हैं, आप अभी कह रही मेरे घर हवा नहीं आती, तो अब आपके घर का मसाला है ना, हवा तो आती है ना,
3: मेरे घर से जल गई हवा।
0: पता नहीं आपने कौन से ऐसे चिराग जलाए हुए जो हवा को अंदर ही नहीं आने देते।
3: नहीं भी वो शेर आपने सुना है ना, हवा के दोष पे रखे हुए चराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसे, हवा तो बहुत आती है हमें नहीं लगती तो हम क्या करें।
0: अच्छा आपको नहीं लगती ना?
3: हाँ जी।
0: अच्छा अच्छी बात है, हवा नहीं लगे अच्छा है, वो कहते ना यार हवा नहीं लगे तो अच्छा है।
3: अब इस उम्र में बड़ा चुपता वाला माँ,
0: अब इस उम्र में हवा क्या लगानी है, हवा के लिए उम्र होती ना।
3: मोहसिन
0: यहाँ पे बैठे हुए थे, बताए कहते जी मैंने कोई 35 दफा 40 दफा ये गाना सुना।
3: मैंने
0: कहा मोहसिन यार अपना इलाज कराओ यार, इतनी दफा तुमने सुन लिया।
3: नहीं नहीं बड़ा हसीन सॉन्ग है वो, नीचे से एकदम ऊपर जाती है ना सुर लेके, ओए होए होए गजब, दिल से सदा आ रही है तुझसे मिलने का।
0: क्या बात है, ये बड़े बड़े
3: तो सदाएं आ रही,
0: बड़े बड़े सुर की पहचान है आपको, नीचे से ऊपर सुर, ऊपर से नीचे।
3: क्या बात है सच, अरे भाई बहुत लाजवाब, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। मुझे पता
0: अच्छा ये हवा का क्या मसला है मुझे बताएं, मैंने कराची आके इस मसले को ठीक करना है आपके, जो ये है ना
3: जरूर आ जाए, अगर आप ठीक कर सकते हैं तो आ जाइए।
0: हवा के दोष पे रखे हुए चराग थे हम हैं।
3: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हवा के दोष पे रखे हुए चराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। नासिर ज़ैदी साहब और मेरा बड़ा पसंदीदा है कि होता यही है ना, वो क्या है कि नदीम तेरे मेरे घर की दीवारों पे तनहाई बाल खुले सो रही है, ऐसा भी है लोग दीवारों पे सो जाते
0: हैं। वो था ना एक, वो भी ना प्रवीण शाकिर साहब हो गया, कुछ तो हवा भी सर थे कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी है।
3: उनका एक शेर बहुत प्यारा है, एक जरा दुखी सा है, वो पहले मैं आपको सुनाती हूँ।
0: पहले दुखी सुनाएंगी कि पहले प्यारा सुनाएंगी?
3: दोनों ही प्यारे हैं। एक जरा
0: दुखी कौन सा, पहले वाला के दूसरे वाला?
3: दोनों प्यारे हैं,
0: जो सुनाएंगे वो दुखी है जो सुनाने जा।
3: नहीं नहीं ऐसा दुखी नहीं, लेकिन थोड़ा सा दुख है।
0: अच्छा दुख।
3: रेल की सीटी पे, आप ये देखिए शायर ने बांधा क्या खूब है, रेल की सीटी पे कैसे हिजर की तमीज थी, रेल की सीटी में कैसे हिजर की तमीज थी, उसको रुख्सत करके घर लौटे तो अंदाजा।
0: अरे वाह, अरे वाह,
3: परवीन शाकिर साहब हैं, कमाल किया है। और एक बड़ा प्यारा शेर कहती है कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी, सीधी सी बात। क्या परवीन शाकिर ने भी कमाल किया जनाब,
0: छेड़ के जैसे गुजर जाती है दोशीजा हवा, देर से खामोश है गहरा समुन्दर और मैं,
3: ये और उसने तपती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की।
0: फलक पे उड़ते जाते बादलों को देखता हूँ मैं, हवा कहती है मुझसे ये तमाशा कैसा लगता है।
3: क्या बात,
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हवा का कुछ इलाज करना पड़ेगा, इतनी हवा को हमने याद कर ली, अब तो आपके फ्लैट में हवा आ जानी चाहिए ना।
3: नहीं मेरा फ्लैट नहीं है ना, मैं इसमें हूँ, घर में हूँ, नीचे हूँ।
0: अच्छा, घर
3: मेरे घर के सामने बहुत बड़े बड़े दरख्त लगे हुए, हमने खुद ही लगाए क्योंकि खाली जगह बहुत सारी मिल गई थी, चार पाँच घरों में।
0: तो अच्छा ना, दरख्त की रोशनी में रहते हैं, साए में रहते हैं आप?
3: हाँ लेकिन वो वाकई आपने सही कहा, हवा तो बहुत चल रही है, पूरे दरख्त बहुत झूम रहे हैं, लेकिन गर्मी अपनी जगह वैसी की वैसी है।
0: अच्छा, देखें ये भी गर्मियों में गर्मी नहीं होगी तो सर्दी होगी।
3: हाँ ना, तो यही तो कुछ लोग कहते हैं ना कि गर्मी हो तो गर्मी ही होगी। भाई हमने कहा जी बिल्कुल सही, हम कब कह रहे हैं सर्दी हो
0: जाए।
3: आपको ये ये मेरा इशारा जिधर है आप समझ जाइएगा।
0: जी जी जी जरूर।
3: फना की सिमत है रुख जिंदगी के धारे का, मेरी नजर को नहीं हौसला नजारे का।
0: अरे वाह,
3: अभी कुछ और भी असनाम ढाए जाएंगे, ये आदमी अभी मोहताज है सहारे का। फजाए असरे उम्र उम्र रवा, फजाए असरे रवा में रची हवा में रची है दम जदगी। ये बड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, दम जदगी। गजाल भूल गए हैं चलन तरारे का, गजाल भूल गए हैं चलन तरारे का। ऐसा ये देखिएगा कि हयात बर्फ के कोसार खोदने में कटी, हयात बर्फ के कोसार खोदने में कटी, मुझे घुमासा हुआ यहाँ शरारे का।
0: अरे वाह,
3: मैं अश्क पोंछ तो लूँ शब गजीदगी का आँखों से, मैं अश्क पोंछ तो लूँ शब गजीदा का आँखों से, मैं मुंतजिर हूँ तेरी सुब के इशारे।
0: अरे वाह,
3: आमीन आमीन। हमारी सरहदों पे जो हमारे फौजी भाई हिफाजत में लगे हैं फरहान, मेरी दिल की हर हर धड़कन से दुआ है उनके लिए, सलामत रहें और मुल्क की हिफाजत करते रहें, इसी में उनके लिए सब कुछ है और वो हमारे लिए सब कुछ है। वो जागते हैं तो हमारा, हम रात को सोते हैं। लाखों करोड़ों दुआएं इस प्यारे वतन के लिए, अल्लाह ताला से आबाद रखे, शाद रखे, इसमें रहने वाले खुशबाश रहें, आप जैसे प्यारे प्यारे इंसान, जितने भी हमारे प्यारे आर्टिस्ट हैं सबको मेरा शुक्र। आपके प्रोग्राम को तो बड़ा इंतजार रहता है मुझे बाखुदा।
0: चलिए बहुत शुक्रिया।
3: नहीं मुझे बहुत गुफ्तगू भी आप इतनी आला करते हैं ना और लेके चलते हैं सब, क्या कहने
0: जाते जाते हैं।
3: चूँकि
0: हवा और मौसम की बात चली तो मौसम हो दिल में है तुम्हारी याद का मौसम, के बदला ही नहीं जाना तुम्हारे बात का मौसम।
3: बात का मौसम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: अच्छा देखिए, आपने हम जैसे आपको छेड़ा तो मैं आपको
0: मैं तो किसी को भी छेड़ूंगा, आप शुरू हो जाएंगे। माशाल्लाह आपके पास तो पूरा दीवान है।
3: नहीं नहीं, मैं एक आपको जी जी सुनाती हूं जो मुझे बेहद पसंद है, कि तेरे बख्श में जो नहीं भाई इसका शुरू का क्या है मिसरा आप देखें, जो नहीं अच्छा बीच का सुनाती हूं कि जो नहीं मिला उसे भूल जा, जो मिल गया उसे याद रख, वो तेरे नसीब की बारिश किसी है, और छत पे बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। बड़ी खूबसूरत है, मैं किसी वक्त आपको सुनाऊंगी। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, सबको मेरा सलाम, अल्लाह हाफिज़।

0: अरे वाह, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। और लेकिन कैसे भूलें, बड़ा मुश्किल है भूलना। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। कौन है, कौन साहब है?
1: सर मैं लाहौर से आज बात कर रहा हूं।
0: जी नवीद भाई, कैसे हैं आप?
1: जी दम खुश, हर दम खुश।
0: जिंदा अल्लाह का शुक्र, मज़े में, बेहतरीन। वो हमारे जियान जिम कहते हैं ना, आला आला चिड़िया तोते हैं।
1: हाँ जी जी, वो अभी तो ये भी कहते हैं ना कि कैसे कर लेते हैं आप,
0: कैसे कर लेते हैं। ये भी कहते हैं भाई, कैसे कर हैं? वैसे कैसे कर लेते हैं आप ये बताएं।
1: तो आपको तो पता ही है सर।
0: चले जबरदस्त है। अच्छा जी सर, क्या कहेंगे?
1: सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वो बड़ों की मिसाल सुनी हुई है ना कि जब खुले मैदान में जो मुर्गा साहब होते हैं ना, वो जब जमीन के ऊपर पाँव मारते हैं ना, तो वो जो ऊपर से नीचे से जो कुछ भी निकलता है, कट्टा मिट्टी जो कुछ भी निकलता है, वो उसके अपने सिर में पड़ता है। सही है ना?
0: सही है।
1: तो बस वो मोदी साहब ने हमें इस बूढ़ी सी उम्र में छेड़ा, तो उसको ये नहीं ना पता कि इस उम्र में हड्डियां दोबारा जुड़ती भी नहीं है।
0: बिल्कुल ऐसे ही।
1: हाँ वो बस सिर्फ ना, वो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि पाते करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, ये उनके ऊपर सही मिसाल बनी हुई है।
0: बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे।
1: हाँ बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सर आगे से जरा ख्याल करें।
0: करेंगे ख्याल सर, ख्याल करेंगे बेचारे। पहले ये तो क्या
1: फरहान भाई, वो यही सोच के आए थे ना कि रात को 3-4 बजे का टाइम है, ये तो सब लोग सोए होंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी, वो तो निकल गई।
0: निकल गई, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त सर।
1: देखे ना, उन्होंने हमें रात की तारीखी में छेड़ा, हमने दिन सूरज जब निकला फजर की नमाज के बाद, हमने कहा चलो फिर हम भी आ रहे हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसका करम नवाजी है, उसका नबी पाक का हम पे करम है। जब तक वो उनका अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हम पे करम है ना, इस मुल्क को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज
0: जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। एक ट्रैक से जानी पड़ेंगे, उसके बाद लॉन्च करते हैं हमारे साथ।

वेल जनाब, मुझे जानिए इजाज़त, और मुझे ये थैला चेक करना है क्योंकि मुझे बड़ी तशवीश है इस थैले में क्या है, इसमें क्या है, कुछ तो है जो जिम के पास है और एक अदद अकेले अकेले कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। इनको इतनी नहीं तौफीक हुई कि एक बंदा साथ ले आता है, किसी के लिए बंदा कब से इधर बैठा हुआ। चलें कोई नहीं, ऑनर मैं कुछ भी कह सकता हूँ। है दवाई है कहते ना, दवाई पी रहे हैं मैं ऑनर हूँ, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। वेल जनाब, मैंने चाहनी आपसे इजाज़त इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा पाकिस्तान को, ये प्यारा वतन हमारा वतन पाकिस्तान, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, इसकी सरहदों की हिफाजत रखे। और तमाम पाकिस्तानियों के नाम आज का शो था, उन जवानों के नाम, उन माओं के नाम, उन गाजियों के नाम, उन शहदा के नाम, उन तमाम पाकिस्तानियों के नाम जिन्होंने पाकिस्तान की सरबुलंदी में, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के इस्तकाम के लिए, पाकिस्तान के लिए हर महाज पे एक पाकिस्तानी बन के रहे। सो मुझे दीजिएगा इजाज़त, ज़िंदगी ने इतबा की, सांसों ने वफा की। आपसे मुलाकात होगी कमिंग ट्यूसडे, टिल देन अल्लाह निगेबान। ज़िया अंजुम आपको ज्वाइन करेंगे जो कि छोटे काकों की तरह चेयर में घूम रहे वल जनाब, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: सुनते रहिए हर रात 12 से 2 मंगल और जुमा ओनली ऑन FM 101।
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
2: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
3: आप सुन रहे हैं FM 101. सुनते रहिए FM 101. 101.

100 सलीबें थी हर एक हरफे जुनून से पहले, क्या कहूं अब मैं, कहूं या न कहूं से पहले। उलझना मुझे कहते हैं ज़िया अंजुम, आर जे ज़िया अंजुम, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हरफे जुनून। आपका और मेरा साथ रहने वाला है शब के 2 बजे तक। उम्मीद है कि ये साथ अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। साथ साथ की बात होती है, कभी कभी कुछ लोगों के साथ की हम कितनी दुआएं मांगते हैं, और कभी कभी वही जिनके लिए हमने बड़ी दुआएं की होती हैं, जिनका बड़ा साथ मांगा होता है, उनसे भी हम बेजार हो जाते हैं। वो फराज साहब कहते हैं ना कि यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए, अब यही तर के ताल्लुक के बहाने मांगे। दिल किसी हाल पे काने ही नहीं जाने फराज, मिल गए तुम भी तो क्या और ना जाने मांगे।

होता है, चलता है, दुनिया है। सुनाइए कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, मिजाज कैसे हैं, हालात कैसे हैं, सिलसिले कैसे हैं, मौसमों की सुनाएं, अंदर के मौसम और बाहर के मौसम, क्या चल रहा है, सब ठीक है ना, सब सही है ना, कि कुछ है जो अभी तक बाकी है, कुछ है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, कुछ है जो अभी तक मिसिंग है, कुछ है कि मजा नहीं आ रहा, क्या है बताइएगा, आइएगा बात करते हैं, बात करेंगे तो बात बनेगी, अगर बात ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। तो बातों के सिलसिले शुरू करते हैं, दिल की बातों के सिलसिले शुरू करते हैं, हर्फ हर्फ जुनू की बात करते हैं, हर्फ जुनू की बात करते हैं। अब वही हर्फ जुनू सबकी जुबान ठहरी है, जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है।

0: आप मैसेजेस कर सकते हैं, आप कॉल्स कर सकते हैं, आप फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम रابطے के ज़राए आपको पहले से मालूम हैं, लेकिन फिर एक दफ़ा बताए देता हूँ। कॉल करने के लिए आप डायल करेंगे 042-111-000-101। फेसबुक पे मैसेज करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल फ़ैन पेज पे आएंगे, सर्च करेंगे FM 101 लाहौर, हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज जहाँ पे मेरे प्रोग्राम की पोस्ट पे आप कमेंट करेंगे उसको शामिल करेंगे। इसके साथ साथ 4471 पे जो आपके SMS आ रहे होते हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। SMS करने के लिए आपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन से टाइप करना है 101, स्पेस दे के अपना नाम लिखिएगा, मैसेज लिखिएगा और भेज दीजिएगा 4471 पे। ये हमारे रابطے के ज़राए हैं। मैं चाहूँगा कि रब्त बहाल रहे, रابطے बाकी रहें। ये ना हो कि सलाम दुआ से भी जाएं। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो कितने ऐसे दोस्त यार, कितने ऐसे लोग, कितने ऐसे चेहरे जो बड़े दिल के करीब हुआ करते थे, जो बड़ी जान हुआ करते थे, जिनके साथ वक्त गुजरा करता था, ज़माने गुजरा करते थे। ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा या एक ख़ास हिस्सा हमने उन लोगों के साथ वक्फ कर दिया, लेकिन फिर यूं हुआ कि रابطے आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए, मसरूफियात बदल गईं, तरजीहात बदल गईं। वो जो रोज़ मिलते थे, जो तसलसल के साथ मिलते थे, वो तसलसल टूट गया, वो रोज़ का मिलना बात करना टूट गया। फिर कभी कभी पे बात आई और अब यूं है कि कभी कभी भी बात नहीं होती, लेकिन वो चेहरे, वो लोग, वो रूहें याद आती हैं। पर अब चाह के भी उनसे बात करते हुए हिचकिचाहट सी महसूस होती है, क्योंकि रब्त बाकी ना रहा, क्योंकि अब वो सिलसिला नहीं रहा, अब वो बात नहीं रही। होता है ना ऐसे? बिल्कुल होता है, हो ही जाता है, दस्तूरे ज़िंदगी है, यही सब कुछ तो होता है। बहरहाल कभी कभी होने ना होने में भी बदल दिए जाते हैं, और कभी कभी ना होने होने में बदल दिए जाते हैं। ज़िंदगी का क्या एतबार है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तुम तो जानते हो, तुम्हें तो पता है, तुम तो इस बात का एक्सपीरियंस रखते हो, अब तुम्हें समझाने की क्या ज़रूरत है भला। चल फिर एक काम करते हैं, एक गाना सुनते हैं, दोनों मिलके एक गाना सुनते हैं। ये वाला गाना याद है ना, तेरा भी और मेरा भी फेवरेट हुआ करता था। मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी हूं,
1: मैं जहां
0: तेरी याद साथ है,
1: मैं कहीं
0: सुनते हैं, मिलते हैं इस गाने के बाद।
1: तेरी याद,
0: आज दोबारा से इस गाने को गौर से सुन, मजा आएगा। मिलते हैं इसके बाद। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

मेरी आंखें मुझे ला दो, मेरी आंखें मुझे ला दो, मैं उनसे छू के देखूंगा जहां के सारे रंगों को। मेरी आंखें मुझे ला दो, मैं उनसे छू के देखूंगा जहां के सारे रंगों को। फलक से कहकशां नजरों ही नजरों में उतारूंगा, गुलाबों से चुरा के रंग चेहरे को निखारूंगा। मैं देखूंगा बिछोड़ा किस तरह माथे पे लिखता है लकीरों को। मोहब्बत बादशाह करती है किस तरह फकीरों को। मिलन किस तरह आंखों में सितारे आन भरता है। मैं देखूंगा कोई रोता है तो पलकों से कैसे मोती गिरते हैं। कोई बेसाख्ता हंस दे तो होंठों पर किसी के किस तरह पल में गुलाबी फूल खिलते हैं। मैं देखूंगा कि क्यों है रात की रानी को सांपों से शिकायत सी। भला भवरे से कलियां किस तरह दामन छुड़ाती हैं। भला फूलों से मिलके तितलियां क्यों खो सी जाती हैं। ये सारे भेद किसने लिख दिए धरती के सीने पर। मेरी ख्वाहिश है सारे मौसमों को अपनी पलकों से चुनू जाना। चलो ताबीर तुम रख लो, मुझे जुगनू सा कोई लरसता ख्वाब दिखला दो। मेरी आंखें मुझे ला दो, मेरी आंखें मुझे ला दो, मैं उनसे छू के देखूंगा जहां के सारे रंगों को। फलक से कहकशां नजरों ही नजरों में उतारूंगा, गुलाबों से चुरा कर रंग चेहरे को निखारूंगा। मेरी आंखें मुझे ला दो।

ये आंखें भी कितनी बड़ी नेमत है ना, कितना कुछ देख सकते हैं हम इनसे। और फिर एक दिल की आंख होती है जिस शख्स की दिल की आंख खुल जाए उसकी तो क्या ही बात है, उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। दिल की आंखों से जो कुछ नजर आता है, जहां जहां तक नजर आता है, जिन जिन अंधेरों में भी नजर आता है, वो क्या था ना कि कमलिया हाल पुछीदा नहीं है, वेखीदा है। और जिहड़ी वेखण वाली अख होंदी है ना, वो किसे किसे दे कोल होंदी है, हर किसे दे वस दी गल थोड़ी होंदी है। बहरहाल जी, तुहाडे मैसेज शामिल करने हैं। कौन कौन है आज की महफिल में हमारे साथ? अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है तो बताऊं कि मेरा नाम ज़िया अंजुम है। आपका शुक्रिया कि आपने ट्यून इन किया, आप मेरे साथ हैं, मोहब्बत है आपकी। चौधरी एहसन सरवर सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। फैसल अब्बास कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, वेलकम टू द शो फ्रॉम लाहौर। थैंक यू, आपको भी वेलकम। वैसे वेलकम मुझे करना चाहिए क्योंकि शो तो मेरा है, प्रोग्राम तो मेरा है, आप इसमें मेहमान हैं, मैं तो मेज़बान हूँ, मैं तो होस्ट हूँ। जुगनू सीनियर कहते हैं कि तमाम सुनने वालों, तमाम सुनने और देखने वालों को सलाम। जी हाँ, कुछ लोग होते हैं जो देख रहे होते हैं, जो बंद आंखों से भी देख रहे होते हैं, उन तमाम देखने वालों को भी सलाम। डीप थिंकर आई हैं, कहती हैं नाइस वॉइस, शुक्रिया। अस्मा कौसर सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। जुमे का प्रोग्राम हमारा दोबारा से रिज्यूम हो चुका है। लास्ट मंथ हम जुमे का प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब से इंशाल्लाह मंगल और जुमे के दोनों प्रोग्राम्स कंटिन्यू हुआ करेंगे। रात 12 से 2 मंगल और जुमे को प्रोग्राम हरफे जुनू मेरे साथ, यानी कि ज़िया अंजुम के साथ। ख़त्म हो गया पुराने वाला बीजीएम, ख़त्म हो गया। ओके, चलें इसी पे ही आ जाते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि हमने ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के लिए बड़ी कोशिश की हो, बड़ी तगो दो की हो? मैं समझता हूँ कि इंसान हर वक्त किसी ना किसी ख्वाहिश के ज़ेरे असर होता है। कुछ ख्वाहिशें बड़ी शदीद तर होती हैं, कुछ आम आम सी भी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन यकीनन कोई ना कोई हर वक्त ज़िंदगी में या ज़िंदगी के किसी मरहले में, ज़िंदगी के किसी दौर में कोई ना कोई एक ऐसी ख्वाहिश तो ज़रूर होती है कि जिसके पीछे हमने अपनी नींदें हराम की होती हैं। हम मुसलसल उस मरहले में, ज़िंदगी के किसी दौर में कोई ना कोई एक ऐसी ख्वाहिश तो ज़रूर होती है कि जिसके पीछे

0: वाह
1: वाह वाह, क्या बात है। भांजी तो छुपी
0: जी
1: रुस्तम निकली।
0: जी सर, अगली बार कुछ सोच कर आपको सुनाएंगे, इस बार थोड़ा सा और हो सके तो आप लगा देना। ठीक है सर, थैंक यू, माशाल्लाह आपका।
1: चले तो मैं शायद ये गाना तो ना प्ले कर सकूं, लेकिन नेक्स्ट जो भी गाना होगा वो हम अनिला आप ही को जरूर डेडिकेट करेंगे। और अनिला आप ही ने फिर रात को एंड पे आके ना, सबसे एंड में आके उन्होंने फिर वो अपना हिसाब भी बराबर करना होता है मेरे साथ।
0: जी, जी, सर, और सर एक बात और सर,
1: जी जी
0: आप बैक टू बैक कॉल लीजिए प्लीज।
1: चले ठीक है, ये देखो ये लड़की ना पहले मामू से सर सर पे आ गई है, ऐसे करना होता ना तो पहले बता दिया करो।
0: सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि आपको ऐसा ना लगे ना सर, सर आज आप मेरे मामू हैं, इससे वैसे आपको पता भी चल रहा था, मुझे नाम नहीं बताना पड़ेगा।
1: बस ठीक हो गया, ठीक हो गया, नाम फिर भी आपको बताना पड़ेगा क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा इरम ने एक बड़ी खूबसूरत सी बात की कि बाज़ुका जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं फिर लोग उनकी कदर भी नहीं करते। मुझे याद आया मेरे जहन में कुछ ऐसे लोग आए, कुछ लोग ना अपनी जॉब्स, अपनी जो नौकरी होती है उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होते। हम वो लोग जो कि नौकरी पेशा अफराद होते हैं वो शायद मेरी इन बातों से रिलेट कर सकें कि हम ना हमेशा आइडियल जॉब के पीछे भाग रहे होते हैं कि यार हमें जो है ना हमारी पसंद की, हमारी मर्जी की आइडियल जॉब मिले। लेकिन जब हम उस इदारे में जाते हैं, वो डेजिग्नेशन, वो जॉब, वो टाइटल पा लेते हैं तो फिर एहसास होता है कि नहीं यार वो मज़ा नहीं आ रहा, ये तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो वो माहौल नहीं है, ये तो वो ड्रीम जॉब नहीं है जिसके लिए मैंने सोचा था। दूर से ऐसा लगता था कि इस कंपनी में आऊँगा, इस इदारे में आऊँगा, यहाँ पे आके जॉब करूँगा तो बहुत लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो ये मसले हैं, ये इश्यूज़ हैं, ऐसा है वैसा है। हालांकि उस कंपनी में, उस इदारे में, उस जगह पे जाने के लिए आपने बड़ी मेहनत की होती है, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी का ख्वाब हो, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आपको एहसास होता है कि नहीं यार ये तो वो जगह नहीं है, ये वो चीज़ नहीं है। और इसी चीज़ को देखते हुए कुछ लोग अपनी जॉब्स को स्विच बहुत ज़्यादा करते हैं। वो एक नौकरी करते हैं, कुछ महीने बाद उस नौकरी को स्विच कर लेते हैं और किसी दूसरे जगह पे जाके एक और जॉब स्टार्ट कर लेते हैं। रहते वो सेम प्रोफेशन में हैं, रहते वो सेम कैटेगरी में हैं, लेकिन अपनी जॉब्स की स्विचिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोगों का भी एतबार मार्केट में थोड़ा सा कम किया जाता है कि यार ये बंदा जो है ना किसी जगह पे टिक के काम नहीं करता। खास तौर पे मेरी कुछ एचआर के लोगों से जब बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, तो वो जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रखते हैं किसी भी नए कैंडिडेट के लिए, जब वो देखते हैं कि हम इस शख्स को अपनी कंपनी के लिए रखें या ना रखें, तो वो ये ज़रूर देखते हैं कि इस बंदे ने इससे पहले कितनी जॉब्स की हुई हैं और उन जॉब्स का ड्यूरेशन, टाइम पीरियड कितना है। क्योंकि जब भी आप किसी नई नौकरी पर जाते हैं, किसी नई जगह पर जाते हैं, तो आपको कुछ वक्त तो उस जगह को समझने के लिए, उस काम को समझने के लिए, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को समझने के लिए और वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेटल होने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। क्योंकि आप किसी और जगह से आ रहे होते हैं, वहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहाँ के लोगों का मिजाज थोड़ा डिफरेंट होता है, वहाँ पे चीज़ों को करने के अंदाज थोड़े डिफरेंट होते हैं। जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं, बेशक आपकी सेम पोस्ट हो, सेम कैटेगरी हो, लेकिन नई जगह पे जाके एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। कंपनी को भी टाइम लगता है और एम्प्लॉई को भी टाइम लगता है, लेकिन जब वो चीज़ें बैठती हैं, जब चीज़ें वर्क करने लगती हैं, जब आप रवां होते हो, उस वक्त अगर आप जॉब स्विच कर देते हो, तो पीछे कंपनी का भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। क्योंकि उन्होंने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगा के एक बंदा ट्रेन किया होता है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो जब वो बिल्कुल तैयार हो जाता है तो वो बंदा छोड़ के चला जाता है। तो एचआर वाले ये चीज़ भी बड़े गौर से देखते हैं कि कोई बंदा अगर हमारे पास आता है तो कम से कम वो 2-3 साल या कम से कम 2 साल तो ये हमारे पास बैठ के काम करेगा। ये ना हो कि हम यहाँ पे आए, हम इसको ट्रेन करें, एनर्जी सर्व करें और उसके बाद जैसे ये ट्रेंड हो, ठीक हो, सीख जाए, उसके बाद ये छोड़ के चला जाए। तो कहीं ना कहीं मार्केट में भी, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में भी ऐसे लोगों को कोई इतना अच्छे अंदाज में नहीं देखा जाता, इतने अच्छे लफ्ज़ों में उसको नहीं पुकारा जाता कि यार ये तो बहुत ज़्यादा जॉब स्विच करता है। और फिर ऐसे लोगों के बाज़ूकात बिहेवियर इश्यूज़ भी होते हैं, क्योंकि वो जब किसी नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे उनके लोगों के साथ बनती नहीं है, बैठती नहीं है, उनका कोई ना कोई फड्डा हो जाता है, कोई ना कोई उनका इशू हो जाता है, जिस वजह से वो या तो वो इदारा ही उस बंदे को निकाल देता है या फिर वो खुद रिज़ाइन करके किसी अगली जगह पे चला जाता है। लेकिन बहरहाल वो शख्स जो बार बार स्विचिंग कर रहा होता है, वो भी किसी आइडियल चीज़ की तलाश में निकला होता है जो उसको मिल नहीं रही होती। एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपकी?
1: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहचाने आपने मुझे?
1: नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं पहचाना आपको।
0: गुड्डू देख ले फिर, आप मुझे पहचानते भी नहीं है, आपकी रेगुलर कॉलों को भी आप नहीं पहचानते।
1: बस देख लो, फिर भी नहीं पहचाना मैंने।
0: अभी भी नहीं पहचाना? मैं लाहौर से रिमशा बात कर रही हूँ।
1: क्या हाल है रिमशा?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आपकी दुआ से। आप बताएं आप ठीक हैं?
1: मैं अभी तक तो ठीक हूँ
0: जी। आपकी आवाज़ में माशाल्लाह पहले जैसा जादू है, ठीक है आप? फिर भी इंसान को पूछना चाहिए ना।
1: नहीं नहीं, मैं तो बुड्ढा हो गया ना हूँ, पहले जो मेरे जादू रहा ही नहीं।
0: नहीं आप जवान है।
1: हाँ जी, 72 साल बाद आपने ट्यून इन किया है ना, इस वजह से पहले जैसा जादू अभी तक बाकी है 72 साल बाद।
0: नहीं,
1: भी
0: जादू अभी भी है आपके अंदर। वो कहते हैं कि इंसान अगर बूढ़ा भी हो जाए तो दिल तो जवान होना चाहिए ना।
1: सही है सही है, कह सकते हो तुसी। कर दे बुड्ढा मेनू
0: भाई,
1: मतलब ये क्या बात थी कि अभी भी आपकी आवाज वैसी है?
0: मेरी
1: नहीं, मैं मुझे जो आपने कहा कि अभी भी आपकी आवाज में वही जादू है,
0: मतलब जादू मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि जो आपका बोलने का अंदाज है ना भाई, अलग होता है सबसे। मगर मैं ना कभी कभार सोचती हूँ, जब ज्ञानजुम भाई आप वो आज डॉक्स भैया के साथ शो करते हैं, तो मैं कहती हूँ वही आदमी है जो शो करते हैं बड़ी सरगोशियों में, कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं। मैंने कहा लगता नहीं है, मैं कहीं दो ज़ियाजम तो नहीं है।
1: अच्छा ऐसा लगता है?
0: जो एक ऐसी बात करते हैं कि इंसान घूम जाता है, उनकी बातों में खो जाता है, और एक ऐसे जो इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट बखेर देते हैं आप, पता ही नहीं चलता। मैं ये हैरान हो जाती हूँ कि ज़ियाजम के लगते हैं दो ज़ियाजम है, एक फनी ज़ियाजम भाई है और एक सीरियस।
1: अच्छा,
0: क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है आप इतने सीरियस हो जाते हैं, बंदा हैरान हो जाता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि अब बंदा क्या बात करे।
1: ये क्यों सुन रहे हो? ये देखो, ये भी वही बात कर रही है, सुन रहे हो?
0: लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि आप अच्छा शो नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा शो करते हैं।
1: वाह
0: अच्छा शो करते हैं, तो आपको सभी सुनते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, दिल से करते हैं।
1: रिमशा थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मौजू पे आओ अब जरा।
0: और मौजू पे आऊँ तो भाई, मैं मौजू पे तो यही कहूँगी कि अब देखें, इंसान है किसी की दिल में इज्जत बनाता है, जगह बनाता है, वो भी बनाना इतने आसान बात नहीं होती। हम कहते हैं कि हमने
1: रिमशा मोहब्बत पे बात करते हैं। रिमशा से तो मोहब्बत पे ही फिर बात हो सकती है ना, इश्क मोहब्बत पे, लव पे। हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं, हम किसी को चाहते हैं, हम किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं।
0: आज आपसे एक सवाल पूछूं, काफी दिनों से मेरे दिल में ये सवाल है, क्या आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं?
1: अच्छा, उल्टा मुझसे सवाल।
0: चलिए अब एक मिसाल आपसे मैं पूछती हूँ कि दो सहेलियां हैं, ठीक है, आपस में बड़ी मोहब्बत है उनमें, और एक सहेली को कि मतलब बाहर वाले लोग कहते हैं कि ये जो तुम्हारी सहेली है ये ठीक नहीं है, इसमें खराबी है, और उस सहेली को उसके घर वाले भी कहें कि ये सहेली ठीक नहीं है, हमसे बहुत तंग है। और जब हम उस सहेली से पूछें कि तुम्हारे में वाकई ही नहीं ये आदतें हैं, तो वो कहें कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, मुझ में ऐसी कोई आदत नहीं। और वो कुरान की भी कसम खाए, अल्लाह की भी कसम खाए, तो इस सूरत हाल में इंसान को क्या करना चाहिए? उसकी माननी चाहिए जो पक्की सहेली है जिसे हम मोहब्बत करते हैं, या उसकी माननी चाहिए जो लोग उनके बारे में बातें करते हैं?
1: आपके मुतल्लिक कौन ऐसे कहता है आपको?
0: नहीं, फिर भी आप जवाब तो सही दें ना जरा।
1: कौन कहता है आपको ऐसे?
0: अगर आपने मोहब्बत की बात छेड़ी है तो फिर इस ये दोस्त
1: नहीं, मैं दोस्तों वाली मोहब्बत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना। रिमशा से अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों वाली मोहब्बत वाली बात थोड़ी करूंगा।
0: तो नहीं, मैं भी मोहब्बत की बात कर रही हूँ, दोस्तों से मोहब्बत नहीं होती क्या?
1: नहीं, मैं दोस्तों वाली मोहब्बत की नहीं बात कर रहा ना।
0: नहीं देखे भाई, अब बहन भाई में मोहब्बत होती है,
1: मैं बहन भाइयों वाली, दोस्तों वाली, माँ बाप वाली मोहब्बत की बात ही नहीं कर रहा।
0: एक मोहब्बत होती है जो अल्लाह से की जाती है, कुरान मजीद से की जाती है,
1: हकीकी की भी बात नहीं कर रहा।
0: तो फिर किस पे कर रहे हैं बताएं?
1: मैं उस वाली मोहब्बत की बात कर रहा हूँ कि वो जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मार चुटिया, वो वाली मोहब्बत की बात कर रहा हूँ मैं।
0: तो मैं उसी हवाले से आपसे पूछ रही हूँ ना कि अगर इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो अगर उसके बारे में कोई किसी,
1: चलें इसके ऊपर भी बात करते हैं,
0: तो क्या इस
1: केस सिनेरियो पे भी बात करते हैं? बिल्कुल बात करते हैं इस पे, ठीक है?
0: तो भाई मैं इस बात से बड़ी कंफ्यूज हूँ, तो प्लीज मुझे इसका जवाब आपने जरूर देना है।
1: चलें इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, गुफ्तगू।
0: ये समझे कि मैं आपसे मशवरा ले रही हूँ, आपकी बहन आपसे मशवरा ले रही है, तो आपने अच्छा सा मुझे बताना है।
1: ठीक है, ठीक है, डन हो गया, डन हो गया।
0: इंतजार करूंगी आपके जवाब का।
1: थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह
0: हाफिज़।
1: एक बज के 13 मिनट हो चुके हैं और कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। रिमशा ने तो आज उल्टा हमसे एक सवाल कर लिया, चलें इस सवाल को भी हम टैकल करेंगे, इस पे भी हम गुफ्तगू यकीनन करेंगे। लेकिन अभी मैं एक ट्रैक की तरफ बढ़ रहा हूँ, वापस आके फिर कुछ मज़ीद बातचीत के सिलसिलों को यहीं से बढ़ाएंगे। क्या ख्याल है? आप सुन रहे हैं FM 101 लाहौर, प्रोग्राम हरफे जुनू, और मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं।

पूर्णम आ गए वो मेरे घर, पूर्णम आ गए वो मेरे घर। वेल जी, कुछ आपकी मजीद कॉल्स और मैसेजेस को देखते हैं। कितने लोग यहाँ पे हैं, कौन कौन है यहाँ पे। पूर्णम आ गए वो मेरे घर।

0: नवाल का मैसेज आया, कहती हैं कि वो जा चुका है मगर जुदाई से कबल का एक नरम लम्हा ठहर गया है मेरी हथेली की पुश्त पे, जिंदगी में पहली का चांद बनकर। अच्छा है। अब्दुल नूर हाशमी साहब रिवाज गार्डन से आदाब कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आप हमारे साथ हैं। हलीमा कहती हैं कि ऐसा तब होता है जब एक चीज़ के बारे में बहुत लंबी लंबी सुनी होती हैं, लेकिन हासिल होने के बाद वो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ उसमें ना पाई गई हों। ये भी सही है, आज कोई बात हो गई, वो ना आए रात हो गई। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम अंजुम भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक हो?
0: अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं हफीज बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। आप सुनाए किस तरह से आता हूँ।
0: हफीज साहब, आप हमें नेट के थ्रू सुन रहे हैं, स्ट्रीमिंग पे?
1: जी सर, यहाँ पे हैदराबाद में जो है ना, क्या नाम है, चैनल बिल्कुल बंद हो जाते हैं, बस क्या करें, आप लोगों की मोहब्बत है जो हमें खींच लाती है।
0: वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छे।
1: कहीं ना कहीं से जो है ना, हम आपको ढूंढ ही सकते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे। ढूंढने से तो बड़ा कुछ मिल जाता है, हम तो यहीं पे होते हैं।
1: बस वो कहते हैं ना, कहते हैं जिसने इजहार किया वो भी खसारे में, जिसने जो चुप रहा वो भी खसारे में।
0: क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे हफीज भाई?
1: मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक और जोक से सुन रहा था, तो बड़ा उसमें लुत्फ आ रहा था जब आप एक हमारी अभी एक गुड़िया बात कर रही थी
0: जी।
1: मैं उसके सवाल के तनाजुर में एक बात कहना चाहता हूँ, पता नहीं अभी मैं आपको कॉल मिलाते हुए और कॉलर आए होंगे लेकिन उनकी मैंने बात नहीं सुनी, मगर जैसे आप रिंशा से बात कर रहे थे ना
0: जी जी,
1: तो उन्होंने आपसे एक सवाल किया
0: जी।
1: उनसे मैं जितना मेरा मुशाहिदा है ना, उन्हें कहो कि उन लोगों को छोड़ दो जो वो उस नजर से उसे देख रहे हैं, ठीक है ना, आप अपनी नजर को देखो।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: खुद जो है ना उसको किस नजर से देखते हो, ख्वाह वो कोई भी हो, मसलन किसी भी रिश्ते से ताल्लुक हो, ठीक है ना, मोहब्बत तो मोहब्बत है यार, इसकी तो ना सरहद है ना जात है ना कोई जो है ना कोई चीज भी नहीं है। लेकिन बात ये अंजुम भाई, एक सीधी सी बात बताऊं, जो चीज जब तक आपके पास है ना तो वो बहुत खूबसूरत है, और जब आपसे चली जाए तो लोग उसे बदसूरत क्यों कहते हैं, लोग उसे जो है ना ऐसे जुमलों से पुकारते हैं कि तौबा अस्तगफार। जब तक वो तेरी नजर में है तो ठीक है, और जब आपकी नजर से आपके नजर से ओझल हुआ तो यूं समझ लो कि वो उसकी जो है ना बकाया जो लाइफ है वो सारी जो है ना डिस्टर्ब हो गई। ऐसा मेरी नजर में मैं कहता हूँ, ऐसे लोग बहुत सेल्फिश होते हैं जो दूसरे के बारे में जो है ना गलत राय कायम करते हैं।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो, अगर मैं कुछ गलत हूँ तो आप इसकी तशरीह कर दें।
0: आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एक लिहाज से, और सही बात कर रहे हैं। देखिए राय जो होती है ना वो बन जाती होती है। हम जब भी हम किसी से मिलते हैं, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं और मैंने अभी आपकी कॉल सुनी है, तो जब भी हम किसी से मिलते हैं किसी से बात करते हैं तो हम चाहते या ना चाहते हुए किसी के मुतल्लिक कोई ना कोई राय ज़रूर बना लेते हैं। अब आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे सुनते हुए यकीनन आपके जहन में भी और बाकी तमाम सुनने वालों के जहन में भी कोई ना कोई मेरे मुतल्लिक राय अच्छी या बुरी ज़रूर बनी होगी कि यार ये शख्स अगर यहाँ पर आके इस किस्म की बातें कर रहा है। कुछ लोगों के जहन में मैं भी इस किस्म की राय बनी हूँ कि यार ये शख्स बहुत बनावटी है, ये शख्स बहुत बना बना के अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश कर रहा है, और ये लोग जो है ना जो यहाँ पे आते हैं रेडियो पे माइक पे, ये बड़े जाली होते हैं, ये बड़े फेक होते हैं, ये बड़े ना बन बना के मेकअप करके यहाँ पे ना चीज़ों को फिल्टर कर करा के यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। एक राय ये भी हो सकती है किसी सुनने वाले की, और उस वो भी कहीं ना कहीं ठीक होता है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे देखे होते हैं, उसने कुछ चीज़ों को ऐसा उसने अपनी ज़िंदगी से गुजरा होता है कि उसको कहीं ना कहीं उस इस किस्म की राय बन जाती है। और एक राय में भी ये भी हो कि यार ये बस नॉर्मल है, ना अच्छा है ना बुरा है, कुछ लोगों की राय इस किस्म की भी बनेगी और कुछ लोगों की राय ऐसे भी बन सकती है कि यार ये कितना ज़बरदस्त आदमी है, तो राय बन जाती होती है। और जब राय बन जाती होती है तो उसका लोग कहीं ना कहीं पर इजहार कर देते होते हैं, यही खूबसूरती है।
1: और यही तो खूबसूरती
0: और,
1: है।
0: और फिर एक एक और चीज़ होती है, कुछ लोग होते हैं उनके मुतल्लिक ना एक अमूमी राय होती है, कुछ लोगों के मुतल्लिक ना, कुछ लोगों के मुतल्लिक ज़्यादातर लोगों की राय कुछ एक तरह की होती है। मतलब अगर आप किसी बाज़ार में जाते हैं, किसी बाज़ार में किसी दुकानदार के मुतल्लिक बाकी बाज़ार वालों से उसकी राय पूछते हैं कि यार ये कैसा बंदा है, तो सारे बाज़ार वाले ना उस दुकानदार के मुतल्लिक कोई ना कोई गवाही देंगे, वो अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे देंगे कि यार ये बड़ा ना अच्छा बंदा है, ये लेन देन में बहुत कोलो फेल का बड़ा पक्का है, तो वो उनकी राय इस वजह से होगी क्योंकि उन्होंने उसको ऐसा करते हुए देखा होगा। और अगर अमूमी तौर पर लोगों की राय किसी के मुतल्लिक अच्छी है तो इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, और अगर लोगों की अमूमी राय किसी के मुतल्लिक अच्छी नहीं है तो फिर इस चीज़ को भी ज़रूर नोटिस करना चाहिए कि अगर कुछ लोग, ज़्यादातर लोग किसी के मुतल्लिक अच्छी राय नहीं रख रहे तो ये ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ख़ास तौर पे बड़ों की बातों के ऊपर, जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, तजर्बाकार लोग होते हैं, उनकी बातों को बिल्कुल ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, उनको ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें
1: सही है अंजुम भाई, अभी आपने कहा ना कि माइक के ऊपर, ठीक है ना, माइक के ऊपर अगर आप एक मिसाल के तौर पे या अच्छी बात करने की कोशिश करते हो, या आप वो चाहे वो से कोई फेक कहे या जो भी कहे, वो वैसी आप अगर सीरियसली भी अगर आप अपने अमली जिंदगी में भी, वो बंदे के लहजे से पता चल जाता है। ये तो चलो माइक तो आपकी ड्यूटी है, लेकिन वो लहजे से जो तजुर्बेकार बंदा होता है ना, वो उसके लहजे से उसको पहचान लेता है कि भाई इसकी ये अमली जिंदगी में भी जो है ना, इसकी गुफ्तगू ऐसे ही होगी, इसकी टोन जो है ना वो ऐसे ही बनी रही है जैसे ये अभी माइक के ऊपर बोल रहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि देखो एक चीज है, वो जब तक आपकी नजर में इसकी गुफ्तगू ऐसे ही होगी, इसकी टोन जो है ना वो ऐसे ही बनी रही है जैसे ये अभी माइक के ऊपर बोल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात

0: कि मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो बंदा अंजुम भाई जैसा होता है ना, वैसे ही जो ना वो दूसरे के बारे में सोच रखता है। लेकिन हाँ, ये आपकी बात भी सही है कि दुकानदार के साथ तो बंदा 5 मिनट के लिए एक उसकी मुलाकात हो जाती। अभी हम आप तो आप लोगों को तो बड़े अरसे से सुन रहे हैं, तकरीबन यू समझ लो कि मेरा ख्याल है 20-21 साल तो हो ही गए होंगे 1-1 को, तकरीबन मेरे हिसाब से। तो बड़ी एक रिश्तेदारी, एक जो है ना फैमिली, एक खास तौर पे इस्लामाबाद का जो चैनल है, क्योंकि अभी तो हैदराबाद वालों ने तो फोन कॉल लेना और ये वो बंद कर लिए सिर्फ SMS पे ही, और ज्यादातर वो चैनल बंद ही होता है। तो बस इस वजह से जो है ना मैंने सिर्फ जो है ना इस गुड़िया की वजह से।
1: चलें हफीज भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपकी बात हम तक पहुँच गई, बड़ी मेहरबानी,
0: आपकी मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया और मेरे तरफ से पूरे पाकिस्तान को और पूरे पाकिस्तान को और अफवाज पाकिस्तान को और हमने जो मारका है हक किया है उसके लिए जो ना मेरा एक ही नारा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद,
1: पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कभी कभी कितना कुछ होता है हमारे पास कहने के लिए, लेकिन वक्त कम होता है। उस कलील वक्त में हम सोचते हैं कि क्या बात करें और क्या ना बात करें। मेरा ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है लोगों के एतबार से, हर चीज के एतबार से। मेरा ये मानना है कि कभी कभी कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, कमाल के अच्छे होते हैं। एक जमाना एक लोगों की बड़ी तादाद उनके अच्छे होने की गवाही देती है कि यार ये बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं ना, जब आप उनके साथ कोई रब्त रखते हैं, जब आप उनके साथ कोई सिलसिला, कोई ताल्लुक रखते हैं, जब आप उनके साथ कोई लेन देन करते हैं, तो वो शख्स जो वाकयतन बहुत अच्छा होता है, वो शख्स जिसकी एक दुनिया गवाही देती है कि ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, बड़ा बाइखलाक है, बड़ा बाकिरदार है, अपने कोलो फेल का बड़ा सच्चा और पक्का आदमी है, जब आपके साथ उसका कोई सिलसिला होता है ना, तो हो सकता है कि वो शख्स आपको रास ना आए। एक शख्स जिसके मुतल्लिक हर कोई कहता है कि ये बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन जब हम उससे मिलते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा नहीं रहता, हमारा उसके साथ कोई तालमेल नहीं बैठ पाता, हमारी उसके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शख्स अच्छा नहीं है या हम अच्छे नहीं हैं। कभी कभी कुछ लोगों की कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ नहीं बैठती, ये चीज़ भी देखने वाली होती है, परखने वाली होती है। कभी कभी दो लोग एक दूसरे को रास नहीं आते, हो सकता है कि वो अपनी जगह बहुत अच्छा आदमी हो, दूसरी जगह दूसरा शख्स बहुत अच्छा इंसान हो, लेकिन अब वो एक दूसरे को अगर रास नहीं आ रहे, वो एक दूसरे के साथ उस तरह से कंपैटिबल नहीं हो पा रहे, उनको एक दूसरे की उस तरह से समझ नहीं आ पा रही, तो यकीनन फिर सिलसिला, फिर ताल्लुक आगे देर पा नहीं चल सकता। इसी तरीके से कभी कभी यूं भी होता है कि एक शख्स के मुतल्लिक एक दुनिया गवाही देती है कि ये अच्छा आदमी नहीं है, ये बड़ा बेईमान है, ये बड़ा दो नंबर इंसान है, ये पीठ पे छुरा घोंपने वाला इंसान है, ये वादा खिलाफ है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये झूठा है, फरेबी है, मक्कार है। लेकिन जब आप उसके साथ मिलते हैं तो आप दोनों एक दूसरे को रास आ जाते हैं। वो दुनिया के लिए चाहे जैसा मर्जी हो, लेकिन आपके साथ बड़ा सच्चा रहता है, आपके साथ बड़ा पक्का रहता है, आपके साथ बड़ा लॉयल रहता है। चाहे दुनिया उसको जो मर्जी कहती हो या दुनिया के लिए वो जैसा मर्जी हो, लेकिन उसकी तमाम वफाएं आपके ऊपर आके खत्म हो जाती हैं, क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में। और मेरे ख्याल से ऐसा हर इंसान के साथ होता है, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स उसकी ज़िंदगी में ज़रूर होता है जिसको लोग बुरा कहते हैं, लेकिन जब भी वो उसके साथ मिलता है तो वो उसको अच्छा

छा पाता है, उसको हर मौके पे, हर मोड़ पे उससे बेहतरीन शख्स और कोई नहीं लगता। तो मैं ये समझता हूं ये कंपैटिबिलिटीज होती हैं। सिर्फ दुनिया की आंख से ही चीज़ों को नहीं देखना होता, सिर्फ दुनिया की नज़रों से ही नहीं चीज़ों को देखना होता। हाँ, दुनिया की राय, दुनिया भी कौन होती है, हमारे अपने ही तो लोग होते हैं। कोई बाहर से, कोई जापान से, कोई कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से लोग आके तो हमें नहीं बताते ना कि इससे मिलो या ऐसे ना मिलो, हमारे अपने ही होते हैं आसपास के। कभी हमारे बड़े होते हैं, हमारे करीबी होते हैं, कुछ खूनी रिश्ते होते हैं, कुछ दिल के करीब होते हैं, वही हमें समझा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैंने अपनी ज़िंदगी में ये गुंजाइश ज़रूर रखी है उन लोगों के मुतल्लिक। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनकी अमूमी तौर पे बाकी ज़माने के साथ नहीं बनती, बाकी ज़माना उनको अच्छा नहीं समझता, लेकिन मैंने पिछले 10-12 सालों में उनसे बेहतरीन इंसान किसी को नहीं पाया। और कुछ ऐसे लोगों के साथ भी मेरा वाह पड़ा है जिनके मुतालिक पूरी दुनिया गवाही देती है कि इनसे बेहतरीन इंसान कोई नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ नहीं चल सका। होता है ना, कंपैटिबिलिटीज़ होती हैं। कुछ लोग आपको रास आ जाते हैं, कुछ लोग रास नहीं आते। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि बाज़ुकात कुछ लोग जो कारोबार कर रहे होते हैं, कारोबारी लोग होते हैं, सारी दुनिया एक जगह पे पैसा लगा रही होती है और उनको प्रॉफिट हो रहा होता है। एक शख्स आता है, वो उसी चीज़ में पैसा लगाता है, उसके पैसे डूब जाते हैं। होता है, कभी कभी उसकी वजह ये भी होती है कि वो कारोबार उसको रास नहीं आता। एक माठा सा आदमी आएगा जिसको ना कुछ समझ है, ना बूझ है, ना कुछ पता है, वो आएगा, वो उस चीज़ में हाथ डालेगा, उसकी चांदी हो जाएगी, उसका सोना हो जाएगा। एक समझदार तरीन शख्स सीख सिखा के बकायदा प्लानिंग के साथ एक काम करता है, डूब जाता है, क्या कहेंगे उसको। कुछ काम हमारे लिए नहीं होते, हमें रास नहीं आते। कुछ चीज़ें किताबों से, लोगों से पढ़ के नहीं समझ आती, कुछ के लिए तजुर्बा करना पड़ता है। ज़िंदगी ऐसी है, ज़िंदगी का फॉर्मूला सबके लिए एक जैसा है ही नहीं। हो सकता है कि मेरे लिए जो फॉर्मूला कारगर हो, आपके लिए बिल्कुल ज़ीरो हो। हो सकता है जिस चीज़ को आपने ज़ीरो समझ के छोड़ दिया हो, यूज़लेस समझ के छोड़ दिया हो, मैं उसको आज़माऊँ तो मेरी लॉटरी लग जाए, मेरा जैकपॉट लग जाए, मुझे रास आ जाए। रिमशा, ये तुम्हारे उस सवाल का जवाब भी है जो तुमने अपनी सहेली के मुतालिक, अपने दोस्त के मुतालिक पूछा था। कभी कभी मोहब्बतों में भी यूं ही होता है। सारा ज़माना कुछ कहता है, लेकिन हमें रास आ जाते हैं कुछ लोग। और कभी कभी सारे ज़माने को रास आए हुए लोग हमें रास नहीं आते। क्या अजीब है ना, होता है, चलता है, दुनिया है, क्या करें। एक मैसेज आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। इनका कहना है, अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, द प्रोग्राम यू आर करंटली होस्टिंग ऑन FM 101 इज रियली ग्रेट। आई वुड लाइक टू बिकम एन RJ2, एनी टिप ऑन हाउ टू इम्प्रूव माई वॉइस। अगर आप RJ बनना चाहते हैं और अपनी आवाज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए एक ही चीज़ है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें, बोलने की प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें, खुद सुनें, खुद उसको उसमें से करेक्शंस निकालें, उसकी तसही करें, उसको क्रिटिकली एनालिसिस करें, और बार बार प्रैक्टिस करके उसको सुनें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा बेहतरी आएगी। प्रैक्टिस नहीं होगी, दुनिया जहान के रेडियो प्रोग्राम सुन लें, दुनिया जहान की किताबें पढ़ लें, दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, शायद नॉलेज तो आ जाए आपके पास, इन्फॉर्मेशन तो आ जाए। प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सिंपल सा रूल है, इससे बढ़ के और कोई साइंस नहीं है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस।
کائنات اشرف ہیں، تھینک یو، بہت شکریہ کائنات آپ کا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو جو دوست ہمیں جہاں جہاں سے سن رہے ہیں، آپ سب کی محبتوں، چاہتوں، سماعتوں کا بہت شکریہ۔ 20 منٹ رہ گئے ہیں آپ کے اور ہمارے ساتھ میں، کچھ مزید میسیجز دیکھ لیتے ہیں۔ سید شاہد نقوی ہیں، سلام کرتے ہیں، وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، یقیناً آپ بھی ٹھیک ہی ہوں گے۔

उसे कहना मुकम्मल कुछ नहीं होता, उसे कहना मुकम्मल कुछ नहीं होता, मिलन भी नामुकम्मल है, जुदाई भी अधूरी है। उसे कहना मुकम्मल कुछ नहीं होता, मिलन भी नामुकम्मल है, जुदाई भी अधूरी है। यहाँ एक मौत पूरी है, यहाँ एक मौत पूरी है। उसे कहना मुकम्मल कुछ नहीं होता, मिलन भी नामुकम्मल है, जुदाई भी अधूरी है, यहाँ एक मौत पूरी है। उसे कहना उदासी जब रगों में खून की मानिंद उतरती है, बहुत नुकसान करती है। उसे कहना बिसाते इश्क पर जब मात होती है, दुखों के शहर में जब रात होती है, मुकम्मल बस खुदा की जात होती है, मुकम्मल बस खुदा की जात होती है। उसे कहना मुकम्मल कुछ नहीं होता, मिलन भी नामुकम्मल है, जुदाई भी अधूरी है, यहां एक मौत पूरी है। उसे कहना बिसाते इश्क पर जब मात होती है, दुखों के शहर में जब रात होती है, मुकम्मल बस खुदा की जात होती है। हम सारी जिंदगी आइडियल चीजों के पीछे भागते हैं, आइडियल वक्त के पीछे, आइडियल हालात के पीछे, आइडियल चीजों के पीछे, आइडियल नौकरी के पीछे, आइडियल लोगों के पीछे, आइडियल मोहब्बतों के पीछे, आइडियल जगह के पीछे। हम सारी जिंदगी फैंटसाइज करते हैं चीजों को, हम सारी जिंदगी तुक्के लगाते हैं, हम सारी जिंदगी उन परफेक्ट चीज़ों के पीछे भागने की कोशिश करते हैं जो असल में आइडियल और परफेक्ट नहीं होती। एक बड़े मज़े की बात बताऊं आपको, मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको चीज़ें तब तक आइडियल और परफेक्ट नज़र आती हैं जब तक वो दूर होती हैं। जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है, जब तक वो हमें मिली नहीं होती, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई चीज है, चाहे वो कोई रुतबा है, कोई डेजिग्नेशन है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो आपकी मोहब्बत ही क्यों ना है। हमें अपनी मोहब्बतें भी कितनी आइडियल लगती हैं ना, हमें अपना महबूब भी कितना परफेक्ट लगता है। हमें लगता है कि यार ये शख्स अगर मुझे मिल गया ना तो मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। मिलन भी नामुकम्मल है, जुदाई भी अधूरी है, यहाँ एक मौत पूरी है। हम सारी जिंदगी आइडियल चीजों के पीछे भागते हैं। यकीन जानिए ये सब कुछ आइडियल तब तक होता है जब तक दूर होता है, जब तक हमें मिला नहीं होता, जब तक हमारे पास नहीं होता, जब तक हम उसे हासिल नहीं कर लेते। हमें यही लगता है कि ये सबसे बेहतरीन है। लेकिन जो ही वो आइडियल हमें मिलता है, हमारे पास आता है, हमारे सारे भरम टूट जाते हैं। हमें पता चलता है कि हम जिस चीज की ख्वाहिश कर रहे थे, जिस चीज के पीछे भाग रहे थे, जिसको अपना आइडियल बनाया हुआ था, तो आइडियल था ही नहीं, क्योंकि यहां पे परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता सर, ना लोग परफेक्ट होते हैं, ना चीजें परफेक्ट होती हैं, ना वक्त परफेक्ट होता है, ना हालात परफेक्ट होते हैं, ना ही मोहब्बत परफेक्ट होती है।
अगर परफेक्ट होती है ना तो हमारी तवक्कुआत परफेक्ट होती हैं, एक्सपेक्टेशंस हम बड़ी परफेक्शन के साथ लगाते हैं, ये हो जाएगा ना तो कमाल हो जाएगा। हम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों को आइडियल मान के चल रहे होते हैं, हम बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ों को ये मान के चल रहे होते हैं कि जैसे ये आइडियल सिचुएशन आएगी, ये आइडियल वक्त आएगा, ये आइडियल सिलसिला होगा, तो फिर उसके बाद हम एक बड़ी पीसफुल ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर हमारी बेचैनियों को करार मिल जाएगा, फिर हमें सुकून मिल जाएगा, हमें इत्मीनान मिल जाएगा। मिलता भी है कभी कभी, लेकिन बड़ा आरजी सा, बड़ा वक्ती सा। ये हमारी सोच का कमाल होता है, हमारे जहन का कमाल होता है कि हमें बहुत सारी इम्परफेक्ट चीजों को ये जहन आइडियल और परफेक्ट करके दिखाता है। इसीलिए जब वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जब हम सारा पैसा लगा के बाहर किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, तो हमें वहाँ पे जाके भी चैन नहीं मिलता। हमें जब अपने पसंद का महबूब मिल जाता है, तो उसके मिलने के बाद भी हम सोचते हैं कि यार लाइफ तो उतनी परफेक्ट नहीं है जैसे हमने सोची थी, चीज़ें तो वैसे नहीं जा रही जैसी होनी चाहिए थी। हमें हमारे पसंद की चीज़ मिल जाती है, तो उसके चीज़ मिलने के बाद कुछ ही लम्हों बाद या कुछ ही अरसे बाद वो खुशी भी ज़ायल हो जाती है, हम मजीद दूसरी चीज़ों की तरफ देखने लग जाते हैं। ज़िंदगी का ये अलमिया है, ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा है, फ़िलॉसफ़ी है। ज़हन का भरम होता है कि हम कामिल चीज़ों की तलाश के पीछे भागते हैं, लेकिन मुकम्मल तो सिर्फ खुदा की ज़ात होती है, कामिल तो बस वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी सब भरम है, धोखा है, ड्रामेबाजी है। सुकून कहाँ मिलता है किसी भी चीज में? एक बेचैनी, बेकरारी, एक बेकली सी तो हमेशा से रहती ही है।

बस जिसने लम्हाए मौजूद की कदर कर ली, जिसने जो इस वक्त मुयस्सर है उस पर इक्तफा कर लिया, उस पर राजी हो गया, यकीनन वही कामयाब हुआ। हम हमेशा भागते रहते हैं, एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी चीज के पीछे भागते रहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमने खुद को अपग्रेड करना होता है, इसलिए नहीं कि हमें वो चीज़ हमारे मुताबिक नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि हम बस एक ला यानी और ना ख़त्म होने वाली एक दौड़ में भाग रहे होते हैं, चीज़ों को आइडियलाइज करके, अगर ये होगा, अगर वो होगा, अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए। यकीन जानिए ज़िंदगी में हमेशा अगर, मगर, इफ़ एंड बट्स ये तो मौजूद ही रहते हैं और ये तो मौजूद ही रहेंगे। ये कहना सीखें कि जो कुछ मौजूद है वो काफ़ी है, जो कुछ मौजूद है मैं उस पर राज़ी हूँ, जो मिल गया है उस पर शुक्र है, जो नहीं मिला उस पर सब्र है। आजकल हमारी जिंदगियों में इतनी बेचैनियां, इतनी एंजाइटियां इसीलिए तो हैं, दिल किसी हाल पे काने ही नहीं जाने फराज, मिल गए तुम भी तो क्या और ना जाने मांगे, यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए, अब यही तर के ताल्लुक के बहाने मांगे।

0: मिलिट्री ऑफिसर, एक जवान और एक सिविलियन, दोनों मिलके ड्रोन को निशाना बना रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये आप

अगर तुम अजीब बात सुननी चाहो तो काफिरों का ये कहना अजीब है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या असर नो पैदा होंगे। यही लोग हैं जो अपने परवरदिगार से मुनकिर हुए हैं और यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे और यही अहले दोजख हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे।

0: और वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी भारी बादल पैदा करता है।
1: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ